घोषणा भी मत करिए कि अच्छा है या बुरा, हमारे अनुकूल नहीं है, बस इतना पर्याप्त है। अच्छे और बुरे के प्रपंच में पढ़ना भी ठीक नहीं है, जो आपके लिए बुरा है वो किसी के लिए अच्छा होगा, होगा निश्चित रूप से होगा भाई, ऐसा ही रचा है रचने वाले ने संसार। जो आपके लिए बुरा है ना वो किसी के लिए अच्छा होगा, जो आपके लिए अच्छा है वो किसी के लिए अरुचिकर होगा। तो मैं कहता हूं अच्छे और बुरे के इस वाद में भी मत पड़िए, दूरम उपाय है, जो आपके अनुकूल ना हो बस मौन होकर वहां से दूर हो जाइए, वो आपके लिए नहीं है, बस वो आपके लिए उपयोगी नहीं है, अनुपयोगी है। और अनुपयोगी की निंदा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मौन रहकर उससे दूरी बना लेना ये बुद्धिमानी है। मौन हो जाइए, अपना रास्ता बदल लीजिए। बिन सजाती सुमिल बात ना चलावे, जब तक कोई अपने भाव के अनुकूल हृदय न मिले तब तक चर्चा ना की जाए, इस रस की तो कदापि न की जाए। सेवक जी महाराज कहते रसिकन सो प्रीतम कहे, रसिक हृदय के सन्मुख अपने हृदय की बात कहनी चाहिए। अनेक भांति भजन भक्ति के भेद तैसे ही भक्त हैं, जैसो जाको भाव है तैसी सिद्धि होए, ताते औरन सो प्रयोजन नाही। यही मैं आपको निवेदन कर रहा हूं भाई, जैसे जिसकी भावना है। कबीर सिखाते हैं आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला। राम झरोखे बैठ के

अरे करेगा सो भरेगा, तू क्यों होत उदास। कहते तहां बखानो है तोए बिगानी कापरी तू अपनी निबेर। अभी तो अपना ही कार्य नहीं हुआ। रामकृष्ण परमहंस कहते थे पहले आत्म कल्याण कर ले, पहले अपना कल्याण कर ले, तत्पश्चात ईश्वर की आज्ञा हो तो धर्म का उपदेश करें, उसको माया से लिप्त होने का भय नहीं होगा, नहीं तो निश्चित रूप से स्खलन होगा। हो ही जाता है भाई, यही भगवान की माया का प्राबल्य है। आपको अपने छोटे से अनुभव से कहूं, माया का प्राबल्य क्या है कि वो अनुचित को अनुचित लगने ही नहीं देती, यही तो माया है। जो है सो दीसत नहीं, जो दीसत सुनाई। आपको लगेगा कि उचित है वो अनुचित होगा, और आप उचित समझकर बस करते चले जाएंगे, यही भगवान की माया है। वो हित और अहित का, उचित और अनुचित का, सत और असत का जो भेद है वो आपकी दृष्टि के सामने प्रकट ही नहीं होने देती। और माया क्या है, यही तो है। संसार अपना लगता है, प्रभु दूसरे लगते, यही तो माया है और क्या है। बार बार साधु आपसे कहता है, संत आपसे कहता है, गुरुजन आपसे कहते हैं, कहां समझ में आती, यही भगवान की माया है। पाए रतन चीनो नहीं दीनों करते डार, ये माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार। तो कहते हैं आपको यो चाहिए औरन सो मत्सरता छाण अपनो रस लिए रहे, और याही रस के उपासकन सो अंतर खोल संग करे। और यहां मैं फिर कहूंगा, भगवान ने नवदा भक्ति के उपदेश में बल देकर ये बात कही है कि सुपने हूं नहीं देखाऊं पर दोषा। एक और बात मैं विनम्रता पूर्वक कहूं आपसे, साधक को जितनी हानि परदोष दर्शन से होती है उतनी और किसी भी वृत्ति से नहीं होती। परदोष दर्शन ही है जो साधक के मन चित्त को कलुषित कर देता है, भजन के अनुकूल नहीं रहने देता। इससे बचने का तो भाई भरसक प्रयास करना चाहिए, और प्रयास क्या, ऐसा तो करना ही है। यही बात अपने और अंतर में रखिए, ऐसा तो करना ही है। ये और भजन साथ साथ नहीं रह सकते, आप में दोष दृष्टि ना हो। सुपने हूं नहीं देखूं पर दोषा। श्री व्यास जी के वचन, व्यास विवेकी भगत सो दृढ़ कर की जय प्रीत, अविवेकी को संग तज यह भक्त की रीत। व्यास जी कह रहे बिना कुछ निंदा स्तुति के प्रपंच में पड़े, जो अनुकूल ना हो दूर हो जाइए, जो अनुकूल हो उसका संग करिए, यही विवेक है। तो विवेकी कहा, अब विवेक बताते हैं क्या है। विवेकी तासो कही है, जो भली गहे बुरी छाणे। अविवेकी बोले भली बरी कछु ना समझे, सब गहे सब छाणे। हम आज तो संसार में ही रमे हैं, हम जैसे किसी का प्रवचन सुन लिया, अगले दिन वृंदावन आ गए, बोले अब वृंदावन में ही रहेंगे। और इत व्यवहार ना उत परमारथ, और बीच ही बीच जन्म गमायो। इसीलिए मैं कई बार आपसे निवेदन कर देता हूं, भाई जहां हो वहीं से मार्ग बनाना आरंभ करो, अपने हृदय को पात्र बनाना आरंभ करो। विश्वास रखो जिस दिन आप पात्र हो जाओगे, प्रकृति एक क्षण भी आपको वस्तु से वंचित नहीं रखेगी, क्योंकि ये द्वार तो कभी बंद हुआ ही नहीं, खुला ही है। जीव विमुख है, ठाकुर जी तो सदा सन्मुख है, जीव विमुख है। अपने आप को पात्र बनाना आरंभ करिए। और जो कुछ देर पूर्व आज चर्चा हुई, जीवन इसीलिए रचा है रचनाकार ने, इस संसार इसीलिए रचा है, सीखिए समझिए। चोट भी लगती है तो वो आपको सुंदर बनाने के लिए, सुघड़ बनाने के लिए लगती है। बिना पिटे कोई पहलवान भी नहीं बनता है, चोट भी खानी पड़ती है, वो भी आवश्यक है। बस इसी प्रकार आगे बढ़िए। तो कह रहे अविवेकी भली बुरी कछु ना समझे, सब गहे सब छाणे। इसी को मैं कुछ देर पहले संतुलन कह रहा था। जैसे ही अनुपात बिगड़ेगा वैसे ही स्वाद बिगड़ेगा। आप दाल रोटी भी बनाते हो, दाल में भी नमक का अनुपात बिगड़ जाए स्वाद बिगड़ जाएगा कि नहीं। ऐसे ही जीवन है, इसमें प्रत्येक वस्तु का एक अनुपात है। अनुपात में रहेगी वस्तु तो आपको जीवन का स्वाद आएगा, जीवन में सुख मिलेगा, नहीं तो स्वाद बिगड़ जाएगा। अच्छा एक और बात, व्यर्थ यहां पर कुछ भी नहीं है, निरर्थक यहां पर कुछ नहीं है भाई, सबकी उपयोगिता है। इसीलिए मैंने कहा कब लेना है, क्या लेना है और कितना लेना है, ये सीख लीजिए। आपको कब लेना है, क्या आपके लिए है, आपके लिए नहीं है। सब अच्छी वस्तुएं भी आपके लिए नहीं होंगी भाई,
एक वस्तु किसी के लिए गुणकारी होती है, वही वस्तु किसी के शरीर को हानि पहुंचा देती है। अपनी अपनी प्रकृति है। और सबसे महत्वपूर्ण, आपको कितना लेना है। यहां पर आकर व्यक्ति अपने अंतर्मन को दूषित कर बैठता है, वो आवश्यकता से अधिक चाहता है। और आवश्यकता से अधिक तो भाई जल भी पी लो तो वह आपको रोगी कर देगा। एक तरफ कहते हैं जल ही जीवन है, पर आवश्यकता से अधिक तो जल भी पी लिया जाए तो आपको रोगी बना देगा, शरीर को हानि पहुंचाएगा। जीवन की आवश्यकता निर्धारित करनी चाहिए शास्त्र और गुरुजनों की आज्ञा में रहकर। फिर कहते हैं ताते सजाती सो मिल बात जुगल विहार की करे, बिचारे तिनकी जूठन खाए चरणोदक पीवे, बिजाती को परस सुना करे। जो अपने भाव के अनुकूल हैं, जो अपने भाव के साधक हैं, और जो आपके भाव के ही सिद्ध जन हैं, शुद्ध जन हैं, रूपदास जी कहने उनका संग करें, उनके संग बैठकर प्रियालाल की चर्चा करें, वार्ता करें, चिंतन करें, तिनकी जूठन खाए चरणोदक पीवे, बिजाती को परस होना करें। और जो अपने भाव से साम्य नहीं रखता, जिसके हृदय में आपके जैसा भाव नहीं है, बोले उसका तो संग त्याज्य ही है, भरसक प्रयास करना चाहिए ऐसे संग से दूर रहने का। और वृंदावन चंद एक प्रीति ही माने, कोटि भांति भावे अपरस रहो, भावे सपरस रहो, अनेक आचार करो, पर उनको एक प्रीत की सच्चाई सो काम है। हमारे प्रिया लाल को न तो किसी व्रत उपवास से कोई लेना देना है, ना अपरस सपरस से, वो तो एक प्रीति माने। ध्रुवदास जी कह रहे हैं कुछ भी करो, विविध भांति व्यंजन करो, पर लौन बिना सब फीक। प्रेम ही इष्ट है भाई, प्रेम ही आराध्य है, प्रेम ही प्राप्य तत्व है। अब जब ध्रुवदास जी ने यह कहा कि भाई चाहे अनेक आचार कर लो, तब एक ने कही कि आचार ना करें, अरे नहाने धोने की आवश्यकता ही नहीं है क्या? तो ध्रुवदास जी कह रहे हैं थोड़ो बहुत करें, सदाचार के लिए करें। देखो आपके मन में आग्रह ना हो जाए किसी भी बात को लेकर। एक संत थे, विरक्त थे, अब उनका नियम था कि वो पत्तल में ही पाते हैं भोजन। एक बार किसी के यहाँ जाना हुआ, उनका रात्रि के भोजन के लिए उन्होंने बुलाया था, गांव में वो लोग रहते थे। अब उनके मन में भाव कुछ और था, संत भगवान पधारे हैं, तो जो उत्तम से उत्तम व्यवस्था थी वो उन्होंने उनके लिए की। चांदी के बर्तनों में उन्होंने भोजन परोसा। अब वो संत जी कहने लगे, बोले हम तो भाई पत्तल में ही पाते हैं। अब पत्तल कहाँ से आए, पत्तल उस समय उपलब्ध नहीं हो रही। वो जो महात्मा है वो अपना आग्रह छोड़ नहीं रहे। तो ऐसा आग्रह मन में ना हो, किसी भी स्थिति को लेकर आग्रह मन में ना हो। महर्षि एक बार श्री उड़िया बाबा जी महाराज ने श्री अखंडानंद जी महाराज से पूछा, चर्चा हो रही थी कि एक दुशाला रखा है, एक फटा कंबल, एक विरक्त को क्या ग्रहण करना चाहिए। श्री अखंडानंद जी महाराज ने तत्काल उत्तर दे दिया, बोले निश्चित रूप से फटा कंबल उठाना चाहिए। उड़िया बाबा हंस दिए, बोले नहीं, बोले जिसके लिए फटा कंबल और दुशाला एक से है ना, वो विरक्त है, उसके हिस्से जो आ जाए वो विरक्त है। कहने वाला बड़ी सुंदर बात कहता है, बोले कि मर्जी हुई गर यार की तो घर छोड़कर बैठे, मर्जी हुई गर यार की घर छोड़कर बैठे, जिधर मोड़ दिया मुख वहीं मोड़ कर बैठे, गुदड़ी जो उड़ाई तो वही ओढ़ कर बैठे, अब दे दिया है शॉल तो फिर शॉल में खुश हैं, और पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं। बोले ये वो विरक्त है, इसके मन में आग्रह ना हो। आग्रह हृदय को कठोर करता है भाई, आग्रह से हृदय में ग्रंथि पड़ जाती है। प्रभु की इच्छा से, प्रभु के विधान से जो मिले। रांका बांका जी की कथा बड़ी प्रेरक है, बड़ा अद्भुत प्रसंग है। कहते हैं कि भक्ति उनकी ऐसी अद्भुत, और उनकी जो आर्थिक स्थिति थी बड़ी दयनीय है, भोजन की भी व्यवस्था नहीं। नामदेव जी तो इतने खींच गए और पंडरीनाथ से जाकर कहने लगे आपके भक्त हैं, आप लक्ष्मीपति हैं, बोले आपको जरा भी लज्जा संकोच नहीं है, आपके भक्तों के पास दो समय का भोजन नहीं है। ठाकुर जी कहने लगे, बोले हम देना चाहते हैं लेते ही नहीं है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, आप देना चाहें ये ले नहीं, चलिए हमारे साथ दीजिए। प्रभु गए, नामदेव जी वृक्ष की ओट में खड़े थे, बोले देखना। ठाकुर जी ने कहा, बोले हम आपसे विनती करते हैं। राका माका कहने लगे, अब तो सच में ही कलयुग आ गया। ले क्यों?
बोले मायापति भी अपने भक्तों को माया ही देने का प्रयास कर रहे हैं, माया में ही उलझाने की चेष्टा कर रहे हैं। बोले प्रभु यदि आप हमें ये देना चाहते हैं तो हमारी आपसे विनती है आप पुनः यहाँ आने का कष्ट ना करें। हम नामदेव जी को तब विश्वास हुआ कि जाही न चाही कबहू कछु, बस तुम संग सहज स्नेह। टाका बाका कहने लगे प्रभु आप हमें दरिद्र समझते हैं जो देने के लिए आए, हमारे हृदय में ये जो आपका प्रेम उच्छलित है हम स्वयं को सर्वश्रेष्ठ जानते हैं सर्वोपरि समझते हैं। तब नामदेव जी ने देखा, वही राका बांका एक दिन जंगल में लकड़ी बीन रहे थे, राका आगे आगे चल रहे थे, उनकी पत्नी बांका वो पीछे पीछे चल रही थी। आगे देखा मोहरों की एक थैली रखी है, राका फटाफट से उस पर मिट्टी डालने लगे, बांका पीछे से आई, उन्होंने देख लिया कि ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा क्या करते हैं आप? बोले नहीं नहीं कुछ नहीं। मुस्कुराते हुए कहा बताइए क्या कर रहे थे आप? बोले यहां ये स्वर्ण रखा था और मुझे लगा कि इसको देखकर तुम्हारे मन में कहीं कोई अन्यथा भाव न आ जाए तो मैं इस पर इससे पहले कुछ बोलते। बोले इसीलिए मिट्टी पर मिट्टी डालने का प्रयास कर रहे थे। अरे पराया धन है हमारे लिए तो वैसे भी मिट्टी है। तब राका ने कहा आप सच में बांका है, आपका भक्ति का भाव सच में बांका है, निराला है। मेरे लिए तो अभी स्वर्ण और मिट्टी में भेद है पर आपके लिए तो स्वर्ण और मिट्टी में भेद भी नहीं रहा। तो ध्यान रखना भाई, कभी कभी आचार के नाम पर हमारे हृदय में आग्रह हो जाता है और कभी कभी तो हम किसी का हृदय और दुखा बैठते हैं अपने आग्रह और दुराग्रह के कारण। ऐसा ना हो, ध्यान रखना अंतिम भावना जो प्रभु तक पहुंचेगी वो प्रेम ही है, वो आपके हृदय की विशुद्ध प्रीति ही है। अनंत अनंत भक्तों ने भगवान को भोग लगाया होगा, लगा रहे हैं और लगाते रहेंगे, पर याद किसको रखा जाता है? जूठे फल शबरी के खाए, बहुविध भोग लगाई और दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाए। स्मरण तो इन्हीं का किया जाता है। जब श्री जी की सेवा पाक करें तहां आचार करें, बोले जब श्री जी के लिए रसोई करें तो शुद्धता का ध्यान रखें, और फिर भी कह रहे हैं जैसो संभव है, जहां तक संभव हो सके। अब बहुत सारी माताएं कई बार लिखकर प्रश्न पूछती हैं कि भाई घर में हमारी रसोई में तो सब प्रकार की वस्तु बनती है, हम किस प्रकार ठाकुर जी की सेवा करें? आपके ठाकुर जी आपके हैं, आप आपके ठाकुर जी हैं, उनके बीच में न कोई आता है और न किसी को आने की कोई आवश्यकता है और ना ही आप अनावश्यक रूप से किसी को लाइए, जो आपसे संभव हो। बस प्रेम की कमी ना होने पाए, भाव की कमी ना होने पाए। प्रसाद ही कोटि, फिर कहते हैं अपने प्रसाद पाएवे को बहुत आचार न करें। प्रसाद ही कोटि आचार को स्वरूप है, भोग लागे पाछे बहुत आचार उचित नाही। शास्त्र हूं मैं कही है अति आचार अनाचार समान है, रांधे अन्न विषय कछु ना माने। जो भोग श्रीजू को लागे हो तो सब बराबर, कहा काचो कहा पाको। वैष्णव सदाचार के लिए आचार करें, मन में विश्वास न धरे कि यही ते कारज सिद्ध होएगो। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है

0: वृंदावन।
1: कह रहे रांधे अन्न विषय कछु ना माने, ठाकुर जी को भोग लगा उसके बाद बहुत अधिक विचार करने की आवश्यकता नहीं है, उसमें वस्तु बुद्धि भी ना करिए, कच्चा पक्का भी देखना नहीं चाहिए, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। बहुत लोग तो मैं देखता हूँ जाड़े के दिन होते हैं, ठाकुर जी को भोग लगाया फिर वही प्रसाद कुछ देर के बाद पाते हैं तो उसे फिर पुनः चढ़ा देते हैं चूल्हे पर, ऐसा करना अनुचित है। प्रसाद के साथ ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, प्रसाद को प्रसाद स्वरूप में ग्रहण करना चाहिए। प्रसाद ठंडा गर्म नहीं है, प्रसाद कच्चा पक्का नहीं है, प्रसाद ऐसा वैसा नहीं है, प्रसाद प्रसाद है। प्रसाद का जो परिणाम है ना, सब सुख एक सीथ के स्वाद, वो तो प्रसाद को प्रसाद रूप में पाने पर ही है। आप प्रसाद को वस्तु समझ कर पाओ तो उसका वो फल नहीं है, उसका वो प्रसाद नहीं है। प्रसाद का भी तो एक प्रसाद होता है ना, प्रसाद का प्रसाद है प्रभु के चरणों का अनुराग और दृढ़ होता चला जाए। अरे भक्त तो भगवान के प्रसाद के बल पर माया को विजय करने की बात करते हैं। उद्धव जी श्री ठाकुर जी से कहते हैं एकादश स्कंद में, ठाकुर जी ने कहा तुमको भी हमारी माया से डर लगता है? उद्धव जी ने कहा हम आपका प्रसाद पाते हैं, आपकी माया हमारी ओर दृष्टिपात भी नहीं कर सकती। ये प्रसाद की महिमा है, पर प्रसाद को प्रसाद जानकर पाया जाए। फिर कह रहे वैष्णव तो सदाचार के लिए आचार करे। हाँ, जब आप ये देखें कि आपका अनुसरण कोई और कर रहा है तो जहां तक संभव हो सके, और वैसे भी मुझे लगता है भाई शुद्धता स्वच्छता पवित्रता ये तो एक साधक के जीवन में होना ही चाहिए, पर ये मन में विश्वास नहीं रखना चाहिए कि यदि हम बहुत शुद्ध और स्वच्छ रहेंगे और कोई कम रहेगा तो हमारा कार्य पहले सिद्ध होगा, उसका नहीं। हो सकता है उसके हृदय की प्रीति हमसे अधिक गाढ़ी हो। अब कर्मा बाई तो जूठे दातुन से ही भोग हिलाकर जगन्नाथ जी को पवा देती है, शबरी चक चक कर फल देती है, लक्ष्मण जी नहीं खाते रघुनाथ जी प्रेम से आरोगते, श्री जी की टहल कोटि कोटि आचार को स्वरूप है। यहां ध्रुवदास जी कह रहे भाई सब साधनों की सिद्धि क्या है, भोर भये ते सांझ धरे तक सेवा कोही ने हमारा। प्रिया जी की जो टहल है जो सेवा है ये सब पुण्यों का फल है, सब साधनों की सिद्धि है, और मुझे लगता है यही परम प्रसाद है। श्री जी की सेवा प्रसाद है। बहुत आचार ते हियो अति कठोर होए जाई, यही मैं आपसे कह रहा था, बहुत आग्रह से हृदय कठोर हो जाता है, ऐसा ही करेंगे ऐसा नहीं करेंगे। अच्छा ठाकुर जी को ऐसा हृदय अच्छा भी नहीं लगता, ठाकुर जी को ऐसा हृदय अच्छा नहीं लगता जो पहले से ही सोच कर आए ऐसा करेंगे वैसा नहीं करेंगे। ठाकुर जी को कैसा हृदय अच्छा लगता है? बोले जैसा तुम चाहोगे वैसा करेंगे। तभी हमारी भोली सखी गाती है

ना हमें ऐसा होना है ना हमें वैसा होना है, जैसा आप चाहेंगे वैसा होना है, जैसा आप चाहें। जय विधि तोहे अति प्यारी लागो, इसे कहते हैं मन और बुद्धि का समर्पण। ये भजन अति कोमल है और कोमल कठोर एक संग न बने। इसीलिए मैंने आपको कहा था भाई प्रयास करो आपके मुख से कठोर वचन ना निकले, रूखी बात मत कहिए किसी से। रूखी बात का परिणाम प्रतिक्रिया प्रकृति क्या देगी, एक बात तो निश्चित है, सर्वविदित सिद्धांत है, आप जो देते हैं वही आपके पास लौट कर आता है। आप कठोरता का प्रसार करेंगे, कठोरता आपके पास लौट कर आएगी, हृदय कठोर हो जाएगा, ठाकुर जी के भजन के योग्य नहीं रहेगा। तभी संत बल देकर कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का

0: शीतल हूँ।
1: और मुझे लगता है मीठा बोल ये तो ऐसा दान है जो प्रत्येक व्यक्ति दे सकता है। सम्मान के दो शब्द तो प्रत्येक व्यक्ति दे सकता है। हमारे महाप्रभु जी का गुण है, हमारे महाप्रभु जी का ये गुण है, सबको मान देते, सभी मान प्रद आप अमानी। यही महापुरुषों का गौरव होता है भाई, सभी मान प्रद आप अमानी। अब साधारण मनुष्य जीवन भर इसी खींचा

में मर जाता, हमें सम्मान नहीं मिला, हमें प्रेम नहीं मिला, हमें सम्मान नहीं मिला। मैं कहता हूं प्रेम बांटिए, प्रकृति का कण कण आप पर प्रेम की वर्षा करेगा। आप जहां जाएंगे आपको प्रेम ही मिलेगा, प्रेम ही मिलेगा। प्रेम दीजिए, बांटिए, सम्मान दीजिए, प्रकृति आपको सम्मानित करेगी। और मैं एक और बात आपको निवेदन करूं, जिसको समय सम्मान देता है, वस्तुतः सम्मानित वही है, समय जिसका सम्मान करता है। और समय किसका सम्मान करता है? जो समय का सम्मान करता है। समय का सम्मान क्या है? सूत्र दे रहा हूं मैं आपको। समय का सम्मान क्या है? जीवन का आदर करना, यही समय का सम्मान करना है। और जीवन का आदर क्या है? कि जीवन का सदुपयोग करिए। जीवन का सदुपयोग क्या है? प्रसन्नता का प्रसार करिए, जिसके लिए प्रभु ने आपको मनुष्य बनाकर इस सृष्टि में भेजा है, इसीलिए आए हैं आप यहां पर। अपने जीवन के अर्थ को, मूल्य को पहचानिए। जो स्नेही भजनीक हैं तिनके घटबड़ क्रिया में मन न दे, आपको बड़ी हानि है, बड़ो अपराध है। अच्छा, एक और बात यहां मैं आपको कहूं, साधु संत जैसे भी भजन करें, बस उनकी जय हो, जय हो, जय हो। ध्रुवदास जी कह रहे हैं उनकी घटबड़ क्रिया में मन न दे। पता नहीं उनके हृदय की, उनके भाव की पहुंच कहां तक है। अभी एक दो दिन पहले मैंने आपको सुनाया, गंगा किनारे लेटे वो साधु, एक युवान साधु कहता है, अरे 10 बज गई अब तक सो रहे हो? अब खबर नहीं वो सो रहा है कि भाव समाधि में है। अब क्या जरूरी है कि ऐसे ही बैठकर ही भजन किया जाए? और मैं तो कहता हूं किसी की भी, साधु की क्या, मैं कहता हूं किसी की भी घटबड़ क्रिया में मन देना ही क्यों है? कौन भला करता है, बुरा करता है? मैं कहता हूं इसका विचार आपको मुझे करना ही क्यों है, इसकी आवश्यकता क्या है? न कहिए न सुनिए। और संत हो फिर तो, नानक कहते संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार। संत हो तो फिर तो बहुत सावधान रही, न कहिए न सुनिए। कहीं ऐसे स्थान पर कुछ ऐसा होता हो उठकर चल दीजिए, सम्मिलित मत होइए। मौन रहना भी सम्मिलित होना है, ऐसा मत करिए। दुर्दास जी कह रहे हैं आपको बड़ी हानि है, बड़ो अपराध है। कह रहे हैं कोटि कोटि आचार उनके एक निमेश के रस भजन पर वार डारी। अब देखने को तो रैदास जूता ही गांठ रहे थे, गोरखनाथ आए, प्रसाद का जल दिया, नहीं पिया, वो जल गया कहां, सिंध, कबीर जी की बेटी ने पिया, बड़े भाव से उसको ग्रहण किया, शिरोधार्य किया। गोरखनाथ जब मुल्तान पहुंचे तो कमारी ने एक क्षण में गोरखनाथ का वो खप्पर भर दिया जो बड़े बड़े सिद्ध नहीं भर पाते थे। तो गोरखनाथ ने पूछा ये कमाल किसका है? मैंने वो पानी जो आप छोड़ आए थे उसी पानी का कमाल है, वो जो आप छोड़ आए थे ये उसी पानी का कमाल है। तो दुर्दास जी यहां यही कह रहे हैं, अरे तिनके एक निमेश के रस भजन पर और सुख कोटि कल्पन के वार डारिए। ब्रह्मादिक सनकादिक या बात में भूले हैं और उनकी कौन चलावे। ब्रह्मा जी को भूल हो गई, ब्रज के ग्वाल वालों को साधारण समझ बैठे, साधारण समझ लिया। तो कह रहे ब्रह्मादिक सनकादिक या बात में भूले हैं और उनकी कौन चलावे। जो यह बात मन में न आवे कह रहे तिन सब अनाचार किए। बोले किसी संत में दोष देखा तो उसके कोटि कोटि आचार बोले धूल में मिलते हैं, वो सब अनाचार है। भक्त द्रोह को जतन नहीं होत वज्र की लीक। देखो भाई यहां पर केला की कौपीन धारण करने वाले ने भी भगवत प्राप्ति की है और चक्रवर्ती सम्राट के पद पर बैठे महाराजा अम्बरीश ऐसे भगवत प्राप्त महापुरुष है कि भगवान उनके लिए कहते अहम भक्त पराधीना। यहां उन्होंने भी भगवत प्राप्ति की है। इसलिए भाई जिस रंग में रहो, जिस ढंग में रहो, जिस संग में रहो, बड़ी बात है। निर्मल मन जन सो मुहि पावा, प्रभु का भजन होता रहे, हरि का स्मरण ना छूटे, प्रभु का स्मरण ना छूटे। जो स्नेही भक्त हैं तिनकी पदरज कोटि आचार है, साधन सिद्ध तीर्थ है। श्री गुसाई कृष्णदास जी को पद, साधु चरण रज सब सुख साधन यह मेरे मत काज सुधी को। और श्री व्यास जी को पद, साधु चरण रज मांझ व्यास से कोटिक पतित समाद। कल ही प्रसंग मैंने आपको निवेदन किया था श्री शबरी जी का, कि जो जप से नहीं हुआ, तप से नहीं हुआ, योग सिद्धियों से नहीं हुआ, पुण्यों से नहीं हुआ, ज्ञान ध्यान से नहीं हुआ, विद्या से नहीं हुआ, वो कार्य शबरी के चरण धूल से हुआ।
ये इसी के प्रतिष्ठा भगवान ने की कि साधु चरण रज माज व्यास से कोटिक पतित समाध। और श्री गोसाई कृष्णदास जी तो कहते हैं, बोले संतों की जो चरण धूल है ना, यही सब सुख का साधन है। और बोले मेरे जैसे कपटी का सुधार तो बस इन्हीं चरणों की धूल में लोटपोट होने से ही हो सकता है, और कोई साधन हमारे पास में नहीं है।

0: अनंत लीला अवतार अनेक तिनकी ऐश्वर्यता को पारावार नहीं, ऐसे ही नाना प्रकार के भक्त हैं। श्री कृष्ण लीला तीन प्रकार की, तिन्हों में भेद भक्त बहुत हैं। जहाँ जहाँ जाको मन लाग्यो ते सब नीके हैं घट को नाही। दुर्दास जी कहने भाई ठाकुर जी के अनेक अनेक रूप हैं, अनंत रूप रूप आए, हरि अनंत हरि कथा अनंता, ऐसी अनंत अनंत प्रकार के भक्त हैं।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: आज ना शुरुआत ही करते हैं मेरे माइंड के एक बहुत बड़े कंफ्यूजन से, और उस कंफ्यूजन को कंक्लूजन तक लेके जाने की मेरी आज कोशिश रहेगी। 89.6 रेडियो महारानी पर तुषार है आपके साथ, और इसका कंक्लूजन आज सिस्टर ज्योति और सिस्टर प्रिया ही मुझे दे सकते हैं, जो मेरे माइंड में कंफ्यूजन है। सिस्टर, मैंने बहुत बार बहुत सारे लोगों को नोटिस किया है कि जब उन्हें पानी ऑफर करते हैं ना, तो वो थोड़ी देर पानी अपने हाथ में लेते हैं और उसके बाद कुछ चैंट करके फिर उसे थोड़ी देर बाद पीते हैं। तो एक बार मैंने रैंडम किसी से पूछा था, तो उसने मुझे ये बोला कि हम पानी के एनर्जीज को चार्ज कर रहे हैं, बट मैं ब्लैंक हूं तब से लेके अभी तक, ये कैसे हो सकता है या क्या हो सकता है? तो ये पूरा प्रोसेस अगर आप एक्सप्लेन करेंगे, ये वाटर चार्ज या फूड चार्ज क्या होता है?
1: अगर मैं कहूं कि बहुत पहले भी ऋषि मुनियों ने इसके ऊपर बहुत काम किया हुआ है, जो हम योगास देखते हैं, अष्टांग योग, वो एक स्लीपिंग स्टेज का एक ऐसा योग है जिसमें वो अपनी बॉडी को चार्ज करते हैं। ब्रह्मा कुमारीज में भी अपनी बॉडी को चार्ज हम करते हैं। हम जब लेटते हैं या बैठते हैं या खा भी रहे हैं, उस दौरान भी आप अपनी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, जिसके लिए बहुत सारे लोगों ने और भी चीज़ें, कलर थेरेपी, रेकी, ये सब चीज़ें भी बनाई हैं कि आप रेज लेते हैं। तो हम इनका सबमिशन लेते हैं एक्चुअली, कि हम उस परमात्मा से जो यूनिवर्स से भी ऊपर है और यूनिवर्स को चलाने वाला, जो जिसको हम कॉस्मिक एनर्जी से भी ऊपर जो कहें सुप्रीम है, उनसे हम रेज लेते हैं। जो परम सत्ता है, परमात्मा शिव जिनको बोला जाता है, जो पॉइंट ऑफ लाइट, जो क्रिश्चियनिटी में, मुस्लिम्स में, हर जगह पूजे जाते हैं पॉइंट ऑफ लाइट। तो उस लाइट से, जैसे सूर्य से, फॉर एग्जांपल आप लेजी कर देते हो कि जैसे सूर्य के सामने आप बैठे हैं और उनसे रेज आप ले रहे हैं, तो इसी प्रकार की आपको रेज लेनी है। और उसके साथ साथ पैरेलल में आपको थॉट्स क्रिएट करने हैं। एक विजुअलाइजेशन क्रिएट हुआ कि रेज आ रहे हैं, साथ में आपके वर्ड्स भी रहेंगे, यानी अफर्मेशंस कि मुझे बहुत पावरफुल रेज आ रहे हैं। अब आपको अपनी बॉडी में कहां भी कोई, अगर जैसे एक तो है चार्ज, एक है हीलिंग, आपको कोई प्रॉब्लम है, जैसे आपके दाएं या बाएं हाथ में दर्द है, तो वहां आप विशेष वहां रेज डालें। और अगर मैं सेल्स एंड बोन्स के लिए कहूं, तो वहां रेड कलर की रेज डालें, कि परमात्मा, रेड कलर सिग्निफाई करता है एनर्जी का, पावर का। तो परमात्मा मेरे सारे जो सेल्स है उसको हील भी कर रहे हैं और चार्ज भी कर रहे हैं, और मेरा जहां पॉइंट है वो पेन का, वहां विशेष फोकस करें और वहां के सेल्स को कमांड करें, इट्स यू ओनली डूइंग दिस। भगवान तो हेल्प कर ही रहा है, वो तो है ही है, लेकिन आप ही हैं मास्टर ऑफ द माइंड, कि आप उससे बात कर रहे हैं और सेल्स को कमांड कर रहे हैं कि आपकी हीलिंग स्टार्ट हो चुकी है और आप धीरे धीरे धीरे धीरे बिल्कुल हील होते चले जाए। तो ये चीज वाकई में काम करती है और ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है।
0: ये काफी इंटरेस्टिंग चीज नहीं है कि हम जो हमारे सराउंड

0: ये सारी बातें सुनने के बाद ना मेरे को ऐसा लगता है मेरा नजरिया धीरे धीरे बदल रहा है। क्या आज से पहले आपको भी ये बात पता थी कि हमारे फोन की तरह हम अपनी बॉडी को भी चार्ज करते हैं। 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ, और मेरे साथ हैं सिस्टर ज्योति एंड सिस्टर प्रिया। तो सिस्टर, ये जो कॉन्सेप्ट है कि जैसे हम अपने फोन को चार्ज करते हैं वैसे हम अपनी बॉडी को भी चार्ज कर सकते हैं इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअल वे में, तो वो क्या है, हम कैसे उसे चार्ज कर सकते हैं?
1: अगर मैं कहूँ कि बहुत पहले भी ऋषि मुनियों ने इसके ऊपर बहुत काम किया हुआ है, जो हम योगास देखते हैं, अष्टांग योग, वो एक स्लीपिंग स्टेज का एक ऐसा योग है जिसमें वो अपनी बॉडी को चार्ज करते हैं। ब्रह्मा कुमारीज में भी अपनी बॉडी को चार्ज हम करते हैं। हम जब लेटते हैं या बैठते हैं या खा भी रहे हैं उस दौरान भी आप अपनी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, जिसके लिए बहुत सारे लोगों ने और भी चीज़ें, कलर थेरेपी, रेकी, ये सब चीज़ें भी बनाई हैं कि आप रेज लेते हैं। तो हम इनका सबमिशन लेते हैं एक्चुअली, कि हम उस परमात्मा से जो यूनिवर्स से भी ऊपर है और यूनिवर्स को चलाने वाला, जो जिसको हम कॉस्मिक एनर्जी से भी ऊपर जो कहें सुप्रीम है, उनसे हम रेज लेते हैं। जो परम सत्ता है, परमात्मा शिव जिनको बोला जाता है, जो पॉइंट ऑफ लाइट, जो क्रिश्चियनिटी में, मुस्लिम्स में हर जगह पूजे जाते हैं पॉइंट ऑफ लाइट, तो उस लाइट से, जैसे सूर्य से फॉर एग्जांपल आप लेजी कर देते हो कि जैसे सूर्य के सामने आप बैठे हैं और उनसे रेज आप ले रहे हैं, तो इसी प्रकार की आपको रेज लेनी है और उसके साथ साथ पैरल

0: माइंड में आपको थॉट्स क्रिएट करने हैं। एक विजुअलाइजेशन क्रिएट हुआ कि रेज आ रहे हैं, साथ में आपके वर्ड्स भी रहेंगे यानी अफर्मेशंस कि मुझे बहुत पावरफुल रेज आ रहे हैं। अब आपको अपनी बॉडी में कहाँ भी कोई, अगर जैसे एक तो है चार्ज, एक है हीलिंग, आपको कोई प्रॉब्लम है जैसे आपके दाएं या बाएं हाथ में दर्द है, तो वहां आप विशेष वहां रेज डालें। और अगर मैं सेल्स एंड बोन्स के लिए कहूं तो वहां रेड कलर की रेज डालें कि परमात्मा, रेड कलर सिग्निफाई करता है एनर्जी का, पावर का, तो परमात्मा मेरे सारे जो सेल्स है उसको हील भी कर रहे हैं और चार्ज भी कर रहे हैं, और मेरा जहां पॉइंट है वो पेन का, वहां विशेष फोकस करें और वहां के सेल्स को कमांड करें, इट्स यू ओनली डूइंग दिस। भगवान तो हेल्प कर ही रहा है, वो तो है ही है, लेकिन आप ही हैं मास्टर ऑफ द माइंड कि आप उससे बात कर रहे हैं और सेल्स को कमांड कर रहे हैं कि आपकी हीलिंग स्टार्ट हो चुकी है और आप धीरे धीरे धीरे धीरे बिल्कुल हील होते चले जाए। तो ये चीज वाकई में काम करती है और ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है।
1: मेरे को ऐसा लग रहा है कि ना सुबह के 10 मिनट 15 मिनट अगर हम अपनी बॉडी को दे देते हैं तो शायद हमारे जो पूरे दिन का रूटीन है, जो हमें आलस आता है, जो हमें नींद आती है, जो हमें मन नहीं लगता है चीजों में, वो सब नॉर्मलाइज हो सकता है। और ये चीजें हम लोग को कभी पता ही नहीं चलती थी, इसलिए शायद हम कर नहीं पा रहे हैं। और वो जो बोलते हैं ना दुनिया में 1% लोग हैं जो बहुत सक्सीड कर रहे हैं, और शायद वो लोग ये चीजें फॉलो कर रहे हो इसीलिए वो लाइफ में इतना सक्सीड कर रहे हैं। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

0: डॉक्टर कॉलिंग।
1: हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर रजनी बेनीवाल। आई एम अ डेंटिस्ट एंड अ न्यूट्रिशनल साइकोलॉजिस्ट। आई एम अ वुमेन हेल्थ कोच एंड अ टीन पेरेंटिंग एक्सपर्ट। मेनी टाइम्स पेरेंट्स कम्स टू मी एंड मेनी टाइम्स आई एम सीइंग टीनेजर्स, दे आर जस्ट नॉट नो अबाउट द न्यूट्रिशन, दे डू नॉट नो वॉट टू फॉलो वट नॉट टू फॉलो, दे आर वेरी क्यूरियस अबाउट देयर बॉडीज। उनकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, दे आर इन टू एडोलेसेंस एज, उनकी रिप्रोडक्टिव और सेक्शुअल लाइफ एक्टिव हो रही है, और वो बहुत गलत गलत फैंसी ट्रेंड्स गूगल और इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया से देख के फॉलो तो करते हैं एंड लैंडेड अप इन टू बिग प्रॉब्लम्स। तो एक बेसिक सी बात है कि फर्स्ट ऑफ ऑल टूडेज पेरेंट्स आर मच अवेयर, एजुकेटेड एंड नॉलेजफुल। तो हम लोगों को ना एक बात करने का जो टैबू है वो ब्रेक करना होगा। पेरेंट्स को अपने बच्चों से खुल के बात करनी होगी। आपका बच्चा 12-13 साल का हो गया है, वो अपनी बॉडी के लिए अवेयर हो चुका है, उसकी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, वो सेक्सुअली बड़ा हो रहा है, अपोजिट सेक्स के लिए अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है, मेल्स का फीमेल्स की तरफ, फीमेल्स का मेल्स की तरफ, और सोशल मीडिया की वजह से वो चैनल बहुत ओपन और ईजी एक्सेसिबल है। तो पेरेंट्स को पहले इस चीज़ से बाहर निकलना होगा कि हमारे पेरेंट्स ने हमसे बात नहीं की तो हम अपने बच्चों से नहीं करेंगे। दिस इज नॉट राइट। आज की जनरेशन में अगर आप बात नहीं करोगे तो वो आपके लिए हेट्रेड डेवलप होगा और बच्चा गलत सोर्स से जाके गलत इन्फॉर्मेशन लेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनली बात करिए, और द राइट नॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइट एज पर योर बच्चे की बॉडी। अगर आपका बच्चा लीन बॉडी है, आपका बच्चा हेल्दी बॉडी है, आपका बच्चा लिटिल फैटी बॉडी है, तो हर बच्चे की बॉडी अलग है, हर बच्चे का लाइफस्टाइल अलग है, हर बच्चे का प्रोफेशन को चूज करने का आइडिया अलग है। तो व्हाटएवर द लाइफ ही इज चूजिंग, उसके अकॉर्डिंग आपको उसको न्यूट्रिशन प्लान करके देना होगा। और उसके मन में जो भी सवाल है, एक राइट डॉक्टर की हेल्प लीजिए, एक राइट कंसल्टेंट की हेल्प लीजिए, जो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। न्यूट्रिशन, एक्टिव लाइफस्टाइल, और सबसे जरूरी बात, एक राइट एडवाइस ऑफ डीलिंग विद द बॉडी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टुडेज लाइफ। थैंक यू
0: डॉक्टर कॉलिंग।

0: तभी याद है तुम कहा करते थे कि सफर शुरू होने से पहले तुम सफर के मालिक होते हो, मगर जब सफर शुरू होता है तो सफर ही मालिक हो जाता है।
1: देखो अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ ना, ये सुनने के बाद कोई भी मुझ पे हंसेगा नहीं। 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ, सिस्टर ज्योति और सिस्टर प्रिया। अब जो अगला मेरे मन में सवाल आया है, जो क्यूरियोसिटी आई है, वो ये आई है कि फूड जो होता है वो सिर्फ न्यूट्रिशन से नहीं बनता है, वो इमोशन से भी बनता है। जो फूड बनाने वाला इंसान है या व्यक्ति है, जब वो खाना बना रहा होता है तो वो जिस इमोशंस को रख के अपने दिल में वो फूड बना रहा होता है वो भी उसमें जाते हैं। कोई नफरत के साथ बना रहा होता है तो वो नफरत जो है वो उस फूड में आती है और वो हमारी बॉडी को उसी तरह जाके लगती है या हमारी बॉडी उसके बाद उसी तरह रिएक्ट करती है। ये क्या पूरा प्रोसेस है
2: कि जैसा होगा अन्न वैसा बनेगा मन। इसके ऊपर प्रैक्टिकल एक एग्जांपल हुआ कि एक बार पहले के लोग जो है वो भोजन भिक्षा के रूप में मांगते थे। तो एक बार गुरु के शिष्य भिक्षा मांगने गए, तो जब भिक्षा मांग रहे थे तो एक लेडी बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और गालियाँ दे रही थी, लड़ाई कर रही थी, लेकिन वो दान वृत्ति की थी। उसे गुस्से में ला करके उनके पात्र में भोजन दे दिया। जब दे दिया तो वो आए घर लेकर के भिक्षुक जो शिष्य थे उन्होंने भोजन जो है वो अपने गुरुजी को सर्व कर दिया। जैसे उन्होंने भोजन किया गुरुजी को गुस्सा आ गया, वो बहुत तेज तेज गालियाँ देने लगे, गुस्सा करने लगे। उसको बड़ा फील हुआ, ये क्या बात, हम तो घूम के लेके आए, हमने तो कुछ ऐसा किया भी नहीं। नेक्स्ट डे फिर वो शिष्य गया और उसी रास्ते पर फिर वो चला गया जिस जगह वो अगले दिन गया, पहले पिछले दिन गया था। जब वो वहाँ गया तो वहाँ जा कर के उसी लेडी ने सॉरी फील किया, कहा कि आप सच में मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ कि कल आपको मैंने गुस्से में भोजन दे दिया, कल मेरी बहुत ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब था, तो बहुत ज़्यादा सॉरी फील करके फिर उन्होंने भिक्षा दी तो वहाँ से लेकर आए। सेम प्रोसेस यहाँ गुरुजी ने जब भोजन लिया तो उनका भी सेम प्रोसेस था, वो भी सॉरी फील करने लगे कि मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, कल मैंने को गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो शिष्यों को समझ नहीं आया, उस शिष्य ने पूछा गुरुजी से कि गुरुजी मुझे समझ नहीं आया कि ये ऐसा क्या हुआ, कल आपने इतना गुस्सा किया, आज आप, मैंने तो आपसे कुछ नहीं कहा था, आप सॉरी फील कर रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा अच्छा ये बताओ तुम ये भोजन कहाँ से लाए थे। तो उन्होंने बताया कि जैसा आपने किया ऐसे वो जो लेडी थी उसने भी ऐसे ही किया, कल वो बहुत गुस्से में थी और कहा इसी का प्रभाव मेरे ऊपर है, जैसा होगा अन्न वैसा बनेगा मन। तो इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है, अगर लिसनर्स में सभी अगर भोजन बनाते हैं, घर में खाना बनाते हैं, तो वो इस तरीके से बनाए कि हम भगवान का प्रसाद बना रहे हैं और जो भी घर का सदस्य खाएगा उसका मन शांत हो जाएगा, तो उसका इफेक्ट जरूर पड़ेगा।
1: इट मीन्स जब हम खाना बनाते हैं तो हमारी जो फीलिंग्स होती हैं बनाते समय वो ट्रांसफर होती हैं। और जो आपने परफेक्ट एग्जांपल दिया है कि वो गुरुजी के पास जाता था तो उनको भी खा के वो आ गया, टू गुड टू एक्सप्लेन, थैंक यू सो मच इतने अच्छी तरह से ये चीज़ हमें एक्सप्लेन करने के लिए जो हमको आगे तक याद रहे। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। तो अगर पिछले कुछ दिनों से आपको लगता है कि सिनेमा में बस एक्शन ड्रामा और क्योस ही चल रहा है, तो हनुमान अंश शायद वो फिल्म है जो थोड़ा पॉज बटन दबाती है, क्योंकि हर फिल्म आपको एंटरटेन नहीं करती, कुछ फिल्में आपको भीतर से भी टच कर जाती हैं।

0: वक्त हो गया है यहाँ पर आपको एक और प्रो टिप देने का। 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ। सिस्टर ज्योति और सिस्टर प्रिया, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर किसी को अपने पूरा दिन पॉजिटिव एनर्जी या पीसफुल चीजों के साथ शुरू करना हो तो उसे अपने मॉर्निंग रूटीन में ऐसी क्या चीजें ऐड कर लेनी चाहिए जिससे उसकी एनर्जी या स्टेट ऑफ माइंड कम्प्लीटली चार्ज रहे और वो काफी मोटिवेटेड रहे।
1: मेरे किसी एक व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई थी, बहुत अच्छे, जैसे चार्जिंग तो हम करते ही हैं। उन्होंने एक बात रखी थी, मैं आज यहाँ सामने आपके रखना चाहूंगी। उन्होंने कहा था कि जब भी मैं उठता हूँ और सबसे पहले जब धरती पर पैर रखता हूँ तो मैं हाथ झुकाकर धरती को सर पे मींस जैसे नमस्कार करता हूँ, उनका थैंक्स करता हूँ कि आज मैं पैर जो है आपके ऊपर रख रहा हूँ और पूरे दिन आप मुझे सपोर्ट करें। तो इस तरीके से अगर हम कुछ चीज़ें थैंकिंग जो एटीट्यूड अपना बना लें कि हर चीज़ का थैंक्स करना शुरू करें। हमने ये तो सीखा बचपन में कि अगर कॉपी को पैर लग जाता है तो हम टच करते हैं, बैग को लग गया तो टच करते हैं। बहुत गुड हैबिट है ये, बहुत अच्छी हैबिट है ये, कोई बेकार मैं नहीं, कई लोग इसको भी गलत मानते हैं, बट आई फील कि आप कहीं तो उसके प्रति झुकने की एक भावना तो आई, भले अंदर से शायद हम एम्प्टी होकर के झुक रहे क्योंकि आदत पड़ गई है, लेकिन इस आदत की वजह से ही सामने वाले के अंदर एक भाव जाग गया कि ये स्पिरिचुअल है। तो हम कुछ ऐसा थैंकिंग बिहेवियर करें। मैंने एक व्यक्ति से और भी सुना था कि वो अपने लैपटॉप को थैंक्स करते हैं, तो क्या आपने कभी अपने लैपटॉप को थैंक यू किया है?
2: नहीं,
1: कभी हमने अपने सिस्टम जो हम गैजेट्स यूज करते हैं कभी मोबाइल को थैंक यू किया है? हमने कभी नहीं किया है। तो अगर हम अपने नेचर में एक थैंकिंग बिहेवियर ले आए कि सुबह उस परमात्मा का थैंक्स करें कि आज क्या आपने दिन देखने का मुझे मौका दिया, अपनी बॉडी को थैंक्स करें कि आज आप बहुत अच्छे से वर्क कीजिए बिकॉज मुझे आज बहुत आपका यूज करना है।

हाँ जी, गुड मॉर्निंग फरीदाबाद। और कैसा रहा आपका वीकेंड, पहले तो ये बताइए। और आई नो जब वीकेंड खत्म होता है ना तो मन बड़ा ही दुखी होता है, क्योंकि फिर से वही ऑफिस वाला लूप स्टार्ट हो जाता है। और मंडे वाले दिन ना स्पेशली मंडे ब्लूज फील होते हैं। तो भाई डोंट वरी, अंजलि है ना। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, दिस इज आरजे अंजलि, और शो लेकर आ गई हूँ अंजलि ऑन एयर, सिर्फ और सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 FM पर। तो देखिए भाई, मंडे वाला दिन है, और अगर आज के दिन को ना ऐसे मूड चढ़ाकर काम करेंगे ना तो वैसे ही मजा नहीं आने वाला, बिकॉज वीक की स्टार्टिंग आज के दिन से होती है। तो बेटर है कि आज के दिन को आज एक प्यारे से स्माइल के साथ शुरू करते हैं, और देखिए चुटकी बजाते ही ना फिर से वीकेंड में पहुंच जाएंगे। लेकिन अभी मंडे आ गया है, वीक स्टार्ट हुआ है, तो इस वीक को ना नई एनर्जी, नई वाइब, नई मस्ती, नए एंटरटेनमेंट के साथ शुरू करेंगे। आज बहुत सारी अपडेट्स लेकर आ गई हूं मैं, बहुत कुछ है आज मेरे पास आपको बताने के लिए, लेकिन करना पड़ेगा आपको इंतजार। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए, ट्रैक मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

कभी कभी ना हम सोशल मीडिया पे इस तरह की चीजें देख लेते हैं जिससे बहुत ज्यादा रिलेट कर लेते हैं और ये लगता है कि भाई ऐसी चीजें तो हमारे साथ भी होती है। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, दिस इज आर्चेंचली इन द हाउस। और बात करने वाले हैं आज के सोशल स्यापा के बारे में। और अगर बात करूं मैं सोशल स्यापा की, तो यहाँ मैं बहुत सारी अजीब अजीब चीजें लेकर आती हूँ। कई बार वे आज का स्यापा लेकर आई है जेंजीज के बालों के बारे में। यानी कि ये स्यापा हमें ये बताने वाला है 20s में ही कई यंग मैन हेयर फॉल की प्रॉब्लम को लेकर परेशान है। और यहाँ पर डर्मेटोलॉजिस्ट भी कहती है इरेगुलर स्लीप, कॉन्स्टेंट स्ट्रेस, प्रोटीन की कमी और रैपिड वेट लॉस, ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारी हेयर ग्रोथ साइकिल बहुत जल्दी इफेक्ट होती है। मतलब कि जितने जेंजीज ये लिस्ट देख रहे हैं ना, स्लीप शेड्यूल गया, स्ट्रेस हाई है, डाइट का पता नहीं, और साथ ही बाल बोल रहे हैं हम चलते हैं टाटा बाय बाय। तो भाई देखिए, टाइम हो गया स्ट्रेस को टाटा बाय बाय बोलने का, अपने प्रोटीन इनटेक को कंप्लीट करने का और स्लीप साइकिल को थोड़ा सा इम्प्रूव करने का, वरना ये होगा ये सारी चीजें रह जाएंगी और आपके बाल चले जाएंगे। और अगर ऐसा रेगुलर हो रहा है ना, तो सेल्फ ट्रीटमेंट लेने की बजाय एक बार अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को जरूर कंसल्ट करें, बिकॉज ये जो प्रॉब्लम है ना, ये बहुत गंभीर प्रॉब्लम है। सो अब सोचिए ना, एक जेंजी बिना बालों की कैसे लगेगा। तो अगर आप चाहते हैं ना आपके साथ ऐसा ना हो, तो अभी अपनी सिचुएशन को सीरियसली लीजिए और बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: Hello everyone, myself Dr. Rajni Benival. I am a dentist and a nutritional psychologist. I'm a women health coach and a teen parenting expert. Many times parents comes to me and many times I am seeing teenagers. They are just not know about the nutrition. They do not know what to follow, what not to follow. They are very curious about their bodies. Unki body mein bahut sare hormonal changes ho rahe hain. They are into adolescence age. Unki reproductive or sexual life active ho rahi hai. Aur wo bahut galat galat fancy trends Google or Instagram or social media se dekh ke follow to karte hain and landed up into big problems. To ek basic si baat hai ki first of all today's parents are much aware, educated and knowledgeful. तो हम लोगों को ना एक बात करने का जो टैबू है वो ब्रेक करना होगा. पेरेंट्स को अपने बच्चों से खुल के बात करनी होगी. आपका बच्चा 12-13 साल का हो गया है, वो अपनी बॉडी के लिए अवेयर हो चुका है, उसकी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, वो सेक्सुअली बड़ा हो रहा है, अपोजिट सेक्स के लिए अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है, मेल्स का फीमेल्स की तरफ, फीमेल्स का मेल्स की तरफ, और सोशल मीडिया की वजह से वो चैनल बहुत ओपन और ईजी एक्सेसिबल है. तो पेरेंट्स को पहले इस चीज़ से बाहर निकलना होगा कि हमारे पेरेंट्स ने हमसे बात नहीं की तो हम अपने बच्चों से नहीं करेंगे. दिस इज नॉट राइट. आज की जनरेशन में अगर आप बात नहीं करोगे तो वो आपके लिए हेट्रेड डेवलप होगा और बच्चा गलत सोर्स से जाके गलत इन्फॉर्मेशन लेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनली बात करिए और द राइट नॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइट एज पर योर बच्चे की बॉडी. अगर आपका बच्चा लीन बॉडी है, आपका बच्चा हेल्दी बॉडी है, आपका बच्चा लिटिल फैटी बॉडी है, तो हर बच्चे की बॉडी अलग है, हर बच्चे का लाइफस्टाइल अलग है, हर बच्चे का प्रोफेशन को चूज करने का आइडिया अलग है. तो व्हाटएवर द लाइफ ही इज चूजिंग उसके अकॉर्डिंग आपको उसको न्यूट्रिशन प्लान करके देना होगा. और उसके मन में जो भी सवाल है एक राइट डॉक्टर की हेल्प लीजिए, एक राइट कंसल्टेंट की हेल्प लीजिए जो आपको बहुत हेल्पफुल होगा. न्यूट्रिशन, एक्टिव लाइफस्टाइल और सबसे जरूरी बात एक राइट एडवाइस ऑफ डीलिंग विद द बॉडी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टुडेज लाइफ. थैंक यू.
1: Doctor calling.

कभी कभी ना फिल्म का नाम देखकर लगता है कि भाई ये तो ब्लॉकबस्टर मटेरियल है, लेकिन फिल्म देखने के बाद ऑडियंस ही बोल दे कुछ तो गड़बड़ है दया। वेलकम टू सिनेमा कैप्सूल, मैं हूँ गीत और आज की पहली सिनेमा की अपडेट थोड़ी सी टॉक्सिक है। जी हाँ, बात हो रही है यश की टॉक्सिक की। यश की स्क्रीन प्रेजेंस, एक्शन और विजुअल्स की तो तारीफ हो ही रही है, लेकिन कहानी और स्क्रीन प्ले को लेकर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन काफी मिक्स्ड है। कई लोगों को लगा कि फिल्म के विजुअल पर इतना फोकस कर दिया है कि कहानी रास्ते में कहीं छूट गई है। मतलब भाई नाम टॉक्सिक, एक्सपेक्टेशन ब्लॉकबस्टर वाली, और रिव्यूज में कहीं कहीं ऑडियंस बोल रही है ये कहानी थी या पेशेंस टेस्ट। अब यश के फैंस तो शायद कहेंगे भाई बस यश दिख रहा है, हमें और क्या चाहिए। लेकिन बाकी ऑडियंस पूछ रही है स्टोरी भी दिखा दो। यानी टॉक्सिक ने रिलीज होते ही एक बात तो प्रूव कर दी है, नाम बिल्कुल सही रखा है। ओपिनियंस को लेकर पूरा माहौल ही टॉक्सिक बन गया है। आपको कैसी लगी टॉक्सिक?

क्या ही कहने इस इंटरनेट के। कभी कभी ना इंटरनेट पर इस तरह की वीडियोस वायरल हो जाती हैं, जिन्हें देखकर बस एक ही डायलॉग याद आता है, ये कोई तरीका है भीख मांगने का? या फिर इंजीनियर बनना जरूरी नहीं होता, कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। अब मैंने इतनी सारी बात किया, अब आखिर जानते हैं कि हुआ क्या। तो भाई सोशल मीडिया पर ना एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जहाँ पर एक पैसेंजर ट्रेन के चार्जिंग सॉकेट में घर से लाया हुआ फर्राटा फैन चलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ फैन चला ही नहीं, क्योंकि फैन को चलने के लिए ना 220 वोल्ट चाहिए होता है और ट्रेन का सॉकेट होता है 110 वोल्ट का। तो फिर क्या था, जब ये वीडियो वायरल हुआ ना तो कमेंट सेक्शन में मीम्स और जोक की बारिश शुरू हो गई। वैसे देखो जुगाड़ हमारी पहचान जरूर है, लेकिन हर जगह जुगाड़ काम नहीं आता, ये चीज भी याद रखनी चाहिए। थोड़ी सी टेक्निकल नॉलेज और सेफ्टी भी उतनी ही ज्यादा जरूरी होती है। और हम हमेशा क्यों भूल जाते हैं, जब हम ट्रेवल कर रहे होते हैं अपने साथ साथ हमें बाकी पैसेंजर की भी जान के बारे में सोचना चाहिए भाई, उनकी सेफ्टी के बारे में भी सोचना चाहिए, हमेशा अपने बारे में ही सोचते हैं, इतने सेल्फिश क्यों हैं? तो भाई आज का इंसिडेंट हमें ये बताता है, सिंपल सा फंडा है, हर प्लग हर सॉकेट के लिए नहीं होता, और सोशल मीडिया पर जो भी वायरल दिखे उसे सिर्फ एंटरटेनमेंट की तरह ही लीजिए, घर पर एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा। और हाँ, इसी के साथ एंजॉय कीजिए ट्रैक जो है खास आपके लिए मिलता है म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: चलिए वक्त हो गया है फरीदाबाद से निकलकर देश के एक अलग कोने में जाने का। आ ही गए हैं फरीदाबाद से निकलकर देश से बाहर, तो चलिए जान ही लेते हैं कि किस्मत कैसी होनी चाहिए। तो चलिए इटली लेकर चलती हूँ मैं आपको। इटली से एक ऐसा इंसिडेंट सामने आया जहाँ पर एक लेडी ने करीब 11 करोड़ की लॉटरी जीती। लेकिन ट्विस्ट यहाँ पर यह है कि जब लॉटरी जीती ना, उस लेडी ने कर दी एक गलती ये थी कि उन्होंने अनजाने में ना विनिंग लॉटरी टिकट को कचरे में डाल दिया, और जब उन्हें पता चला कि वही टिकट विनिंग टिकट था, अब सोचिए आखिर हुआ क्या होगा, वापस कैसे आया होगा ये लॉटरी टिकट, होना क्या था। कहते हैं ना, जब इंसान को अगर वो चीज मिल जाए जो उसने एक्सपेक्ट ना की हो, तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। यही इन्होंने भी किया। जितने भी सफाई कर्मी थे ना, उन सबकी मदद से लगभग 6 टन कचरे में जाकर टिकट ढूंढना शुरू किया। और कहते हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, यहाँ पर इनकी भी हार नहीं हुई। आखिरकार इन्होंने वो टिकट ढूंढ ही लिया, और टिकट मिलते ही ना ये जो इनकी खुशी थी ना, उसका कोई ठिकाना नहीं। तो देखा, यहाँ पर इंसिडेंट हमें एक चीज जरूर सिखा कर जाती है। तो भाई, सीख सिर्फ इतनी सी है, कभी भी अपने पुराने डॉक्यूमेंट्स या फिर कोई भी रिसिप्ट कभी भी कूड़े में ना फेंके बिना चेक किए। हमेशा चेक करें, बिकॉज यू नेवर नो कब क्या हो जाए। तो इन्हीं सारी चीजों से बचने के लिए ना थोड़ी सी अवेयरनेस बहुत जरूरी है। और इसी के साथ एंजॉय कीजिए ट्रैक मिल्टन्स म्यूजिक ब्रेक के बाद।
1: सुबह की बेल

0: हैप्पी टीचर्स डे।
1: 89.6 रेडियो महारानी पर बस एक छोटा सा ब्रेक है।
2: हर सफर में एक ऐसा साथी जरूर चाहिए जो सिर्फ सेवाएं नहीं भरोसा भी दे।
3: सालों से लाखों लोगों के विश्वास का नाम अलंकित,
2: और अब अलंकित फरीदाबाद में एक नई उपलब्धि के साथ आगे बढ़ रहा है।
3: आप सादर आमंत्रित हैं अलंकित के नए ऑफिस के इनॉगरेशन पर 7 सितंबर 2026
2: सोमवार सुबह 10 बजे से SCO 36 फर्स्ट फ्लोर मंशा वेगा स्ट्रीट सेक्टर 82 फरीदाबाद।
3: आइए इस विशेष अवसर का हिस्सा बने और हमारे साथ इस नई शुरुआत का उत्सव मनाएं।
2: चाहे बात हो निवेश की, डीमैट अकाउंट की, बीमा सेवाओं की, पैन संबंधी सुविधाओं की, GST समाधान की या वित्तीय योजना की,
3: अब आपकी हर आवश्यकता का भरोसेमंद समाधान एक ही पते पर। आइए एक नए अध्याय के शुभारंभ के साक्षी बनिए। अलंकित लिमिटेड विश्वास का नाम, विकास का साथी।
4: ब्रेक ओवर, गाना शुरू।

चलिए फिर फटाफट से आ जाइए इटली से सीधा फरीदाबाद। अभी इटली की बात की थी, अब बात करते हैं फरीदाबाद में बिजनेस बस की। बिजनेस बस में ना मैं आपके लिए कहानी लेकर आई, और कहानी हमें ये बताती है कि एक छोटा सा आइडिया ना एक बड़ा ब्रांड बन सकता है, और अगर उस ब्रांड को आप ईमानदारी से निभाए ना तो पूरे देश भर में फेमस हो सकता है। तो भाई देखिए, आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे होम ग्रोन स्टार्टअप की जिसका नाम था द होल ट्रूथ फूड्स, यानी कि एक इंडियन स्टार्टअप जिसने पैक्ड फूड की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। इस ब्रांड का फोकस है नो हिडन इंग्रेडिएंट्स, यानी प्रोडक्ट पर जो लिखा है वही अंदर है। और आज ये स्टार्टअप्स प्रोटीन बार्स, पीनट बटर और हेल्दी स्नैक्स के लिए देश भर में काफी पॉपुलर हो चुका है। तो देखा, ये कहानी हमें ये बताती है कभी कभी सबसे बड़ा बिजनेस आइडिया सिर्फ ईमानदारी और क्वालिटी पर होता है। तो भाई अगर आप भी कोई बिजनेस करने का सोच रहे हैं ना, और होम ग्रोन बिजनेस करने का सोच रहे हैं, तो ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने, और फिर देखेगा जो आपका छोटा सा आइडिया है आज एक दिन बहुत बड़ा ब्रांड बन जाएगा। इसी के साथ एंजॉय कीजिए ट्रैक, मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के।

नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव कुमार सेतिया, यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, यथार्थ हॉस्पिटल फरीदाबाद। पेन किलर और बिना डॉक्टर की सलाह के मेडिसिन लेने से किडनी पे क्या फर्क पड़ता है, उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि पेन किलर और कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो किडनी पे नेगेटिव इफेक्ट डालती हैं, किडनी को खराब करती हैं, जिनको हम नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स बोलते हैं। तो बिना डॉक्टर की सलाह के ये दवाइयां ना लें, क्योंकि ये किडनी को डैमेज करती है और किडनी फेलियर प्रेसिपिटेट कर सकती है। थैंक यू।

देखो देखो वो आ गया। कौन आ गया? आ गया सोशल स्यापा। बिजनेस तो कर लिया लेकिन आज का सोशल स्यापा का क्या? अंजलि ऑन एयर आए और सोशल स्यापा ना लाए, ये कैसे हो सकता है? और देखो अगर मैं आज के सोशल स्यापे की बात करूँ तो सीधा इंटरनेट से उठकर आप तक पहुंच ही जाए। तो देखिए अगर आज के स्यापे की मैं बात करूँ तो ग्वालियर से आया आज का स्यापा, बहुत दूर से आया। अब इतने दूर से आया तो कैसे आया होगा? बाइक पर बैठकर। देखिए अगर बाइक की बात हो ही रही है तो ये बताइए कि एक बाइक पर कितने लोग सही लगते हैं बैठना? एक या दो, हार्डली। लेकिन यहाँ हमने कितने लोगों को देखा? एक दो नहीं बल्कि पूरे के पूरे 6 लोग एक बाइक पर सवार होकर गेड़िया लगा रहे थे। अब बात गेड़ियों तक नहीं थी, धीरे धीरे खतरों के खिलाड़ी भी शुरू कर दिया, यानी कि यहाँ शुरू कर दिया स्टंट करना। और जब ये वीडियो इंटरनेट पर आया ना तो सोशल मीडिया पे बहुत ही धमाल मची, और ये धमाल मचाने के लिए ना हमारी ट्रैफिक पुलिस बेस में आ गई। और जब ट्रैफिक पुलिस ने इस बाइक का नंबर देखा ना तो फिर क्या था, फिर हो गया मोटर व्हीकल एक्ट स्टार्ट, और इस एक्ट के तहत 6,500 का चालान काट दिया गया है। तो भाई देखिए अगर आप भी वायरल होने के लिए किसी भी तरह का कोई भी स्टंट करना चाह रहे हैं ना तो इस मोटर व्हीकल एक्ट को जरूर याद रखेगा। और मैं आपको बता दूं जब ये एक्ट लगता है ना तो आपको पैसे भी देने पड़े, यहाँ पर आपकी चर्चा काम नहीं आती। यानी कि कहते हैं ना कि मेरे चाचा से बात कर लो, मेरे ताऊ जी से बात कर लो, मेरे अंकल से बात कर लो, आप जानते नहीं हो मेरे पापा कौन है। तो यहाँ पर ना वो सारी चीजें काम नहीं आती। तो अगर आपको इस चालान से बचना है ना तो भाई इस तरह का कोई भी स्टंट मत कीजिएगा। सेफ्टी पहले, सोशल मीडिया बाद में, ये हमेशा याद रखेगा। और ट्रैफिक रूल्स भी याद रखेगा। और साथ ही एंजॉय कीजिए, ट्रैक मिलता है म्यूजिक ब्रेक के बाद।

ऐसी होती हैं जिन्हें देखने के बाद आप बाहर निकलकर रिव्यू नहीं करते बल्कि थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं। वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल, मैं हूँ गीत और अब बात करेंगे उस फिल्म की जिसने लोगों को एंटरटेनमेंट के साथ स्पिरिचुअलिटी का भी डोज दिया है। नाम है हनुमान अंश। ये फिल्म नीम करोली बाबा की लाइफ और टीचिंग से इंस्पायर्ड है और ऑडियंस से इसे काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। इमोशनल डेप्थ, फेथ और सोलफुल म्यूजिक इसकी खासियत बताए जा रहे हैं और इसका म्यूजिक भी लोगों को कनेक्ट कर रहा है। खासकर डिवोशनल ट्रैक पार्वती को लेकर बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। तो अगर पिछले कुछ दिनों से आपको लगता है कि सिनेमा में बस एक्शन, ड्रामा और क्योस ही चल रहा है, तो हनुमान अंश शायद वो फिल्म है जो थोड़ा पॉज बटन दबाती है, क्योंकि हर फिल्म आपको एंटरटेन नहीं करती, कुछ फिल्में आपको भीतर से भी टच कर जाती हैं।

Sarigama Karma, the perfect gift for your loved ones.

कितनी बार समझाया है कि वर्चुअल वर्ल्ड की दुनिया में इतना मत खो जाओ कि खुद की जिंदगी से हाथ धोना पड़ जाए। आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे इंसिडेंट की वजह से जो सिर्फ और सिर्फ एक सेल्फी की वजह से हुआ है। तो भाई देखिए, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से एक ऐसा इंसिडेंट सामने आया जहाँ पर 17 साल की एक लड़की सेल्फी लेते वक्त अपना बैलेंस खो बैठी और हाइट से गिरकर सीधा झाड़ियों में जा फंसी। और जब बात करी

अच्छा क्या पता है तुम्हें सोशल मीडिया में अलर्ट रहना सबसे बड़ी सिक्योरिटी है? नहीं पता था ना, कैसे ही पता होगा? सोशल मीडिया की दुनिया में हम इतना ज्यादा खो जो रहे हैं, वर्चुअल वर्ल्ड को आजकल हकीकत समझ रहे हैं। चलिए फिर अब वक्त हो गया है आपको सोशली स्ट्रांग बनाने का, यानी कि आपको डिजिटल स्कैम के बारे में बताने का। और आज का स्कैम ये बताने वाला है कि अगर आपको कभी भी कोई कॉल करके खुद को सीबीआई, पुलिस, ईडी या फिर आईबीआई का ऑफिसर बताए तो उनकी बात पे बिल्कुल भी भरोसा मत कीजिएगा, बिकॉज ये लोग कभी भी आपको डायरेक्ट कॉल करके ये नहीं बोलते हैं कि एक ही जगह पर बैठ जाइए। जो बिल्कुल आज मैं बात कर रही हूँ डिजिटल अरेस्ट की, यानी कि एक ऐसा अरेस्ट जो सबसे पहले आपको कॉल करता है, और ये सिर्फ नॉर्मल कॉल नहीं, ये वीडियो कॉल हो सकता है। और वहां पर आपको बोला जाता है कि आपको स्पेसिफिक एक रूम के अंदर रहना है, एक ऑफिस के अंदर रहना है, यानी कि आपको डिजिटली अरेस्ट कर लिया जाता है। आप कुछ टाइम के लिए, कुछ घंटों के लिए, इवन कुछ दिनों के लिए घर से बाहर नहीं जा सकते। जो भी एक्टिविटी है आपको इस वीडियो कॉल पर ही करनी पड़ेगी। तो अगर इस तरह का कॉल आपको आया तो समझ जाएगा ये एक तरह का डिजिटल अरेस्ट है, बिकॉज कभी भी ईडी या फिर आरबीआई के ऑफिसर्स आपको कभी कोई कॉल ही नहीं करते हैं। और एक और चीज याद रखिएगा, अगर मैं डिजिटल अरेस्ट की बात करूं तो इंडिया में डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई भी लीगल प्रोसेस होता ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक स्कैम है, और स्कैमर्स का एक नया तरीका है पैसे ठगने का। हां जी, तो ये तो बता दिया कि किस तरह का स्कैम मार्केट में आ गया। अब आपको क्या करना है ये जरूर सुनते हुए जाइए। अगर कोई भी कभी भी इस तरह का कॉल आपको करे तो आपको क्या करना है, सिंपली कॉल डिस्कनेक्ट कर दीजिएगा। पर्सनल या फिर बैंकिंग इन्फॉर्मेशन कभी भी शेयर मत कीजिएगा। और एक और चीज, साइबर फ्रॉड की कंप्लेंट करने 1930 हेल्पलाइन है, इस हेल्पलाइन का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर जाकर कंप्लेंट कर दीजिएगा। बस अलर्ट रहिए, इन्फॉर्म्ड रहिए, और साइबर क्रिमिनल से एक कदम आगे रहिए। बहुत सारी बातें हो गई हैं साइबर शील्ड को लेकर, अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं सुपर हिट गानों के बारे में। लेकिन तब तक एंजॉय कीजिए ट्रैक, मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

हाँ जी, डू यू नो से अब वक्त हो गया सीधा आने का डिड यू नो पर। जब बात कर ही रहे हैं डिड यू नो की, तो क्यों ना आपको सरप्राइज कर ही दी, और सरप्राइज कम शॉकिंग थोड़ा सा ज्यादा होने वाला है। आज हम बात करने वाले एक ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में, जिसे जानने के बाद ना आपका सिर्फ और सिर्फ यही रिएक्शन हुआ, क्या सच में ऐसा था? तो देखिए, मैं पहले तो आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्या आपको पता जो हम बनाना खाते हैं वो एक्चुअल में टेक्निकली एक बेरी है? हाँ, और जो स्ट्रॉबेरी है वो बेरी नहीं है। देखा, हो गए ना कंफ्यूज? कर दिया ना मैंने ब्रेन रोट आपको। जी हाँ, यू हर्ड इट राइट। और ये सुनने में ना थोड़ा अजीब जरूर लग सकता है, लेकिन बोटैनी के हिसाब से बनाना बेरी की कैटेगरी में आता है, जबकि स्ट्रॉबेरी बेरीज की कैटेगरी में नहीं आती है। मतलब नाम पर मत जाइएगा, साइंस की डेफिनेशन कुछ और ही कहती है, और इस डेफिनेशन को जरूर याद रखिएगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज का फैक्ट मैंने आपको बता भी दिया और आपको ब्रेन रोट कर भी दिया। कल फिर से आऊंगे एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट लेकर, लेकिन तब तक के लिए बातों का सिलसिला ऐसे ही जारी है, और एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: everyone. Myself, Dr. Rajni Benivar. I am a dentist and a nutritional psychologist. I'm a women health coach and a teen parenting expert. Many times parents comes to me and many times I am seeing teenagers. They are just not know about the nutrition. They do not know what to follow, what not to follow. They are very curious about their bodies. Unki body mein bahut sare hormonal changes ho rahe hain. They are into adolescence age. Unki reproductive or sexual life active ho rahi hai. Aur wo bahut galat galat fancy trends Google or Instagram or social media se dekh ke follow to karte hain and landed up into big problems. To ek basic si baat hai ki first of all today's parents are much aware, educated and knowledgeful. तो हम लोगों को ना एक बात करने का जो टैबू है वो ब्रेक करना होगा. पेरेंट्स को अपने बच्चों से खुल के बात करनी होगी. आपका बच्चा 12-13 साल का हो गया है, वो अपनी बॉडी के लिए अवेयर हो चुका है, उसकी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, वो सेक्सुअली बड़ा हो रहा है, अपोजिट सेक्स के लिए अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है, मेल्स का फीमेल्स की तरफ, फीमेल्स का मेल्स की तरफ, और सोशल मीडिया की वजह से वो चैनल बहुत ओपन और ईजी एक्सेसिबल है. तो पेरेंट्स को पहले इस चीज़ से बाहर निकलना होगा कि हमारे पेरेंट्स ने हमसे बात नहीं की तो हम अपने बच्चों से नहीं करेंगे. दिस इज नॉट राइट. आज की जनरेशन में अगर आप बात नहीं करोगे तो वो आपके लिए हेट्रेड डेवलप होगा और बच्चा गलत सोर्स से जाके गलत इन्फॉर्मेशन लेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनली बात करिए और द राइट नॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइट एज पर योर बच्चे की बॉडी. अगर आपका बच्चा लीन बॉडी है, आपका बच्चा हेल्दी बॉडी है, आपका बच्चा लिटिल फैटी बॉडी है, तो हर बच्चे की बॉडी अलग है, हर बच्चे का लाइफ स्टाइल अलग है, हर बच्चे का प्रोफेशन को चूज करने का आइडिया अलग है. तो वट एवर द लाइफ ही इज चूजिंग उसके अकॉर्डिंग आपको उसको न्यूट्रिशन प्लान करके देना होगा. और उसके मन में जो भी सवाल है एक राइट डॉक्टर की हेल्प लीजिए, एक राइट कंसल्टेंट की हेल्प लीजिए जो आपको बहुत हेल्पफुल होगा. न्यूट्रिशन, एक्टिव लाइफस्टाइल और सबसे जरूरी बात एक राइट एडवाइस ऑफ डीलिंग विद द बॉडी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टुडेज लाइफ. थैंक यू.
1: Doctor calling.

वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, दिस इज आरजे अंशली इन द हाउस। और चलिए भाई, बातें बहुत सारी हो गई हैं और फिलहाल वक्त हो गया है दिमाग की बत्ती चलाने का। और देखिए भाई, जब अंजलि आने ये रोती है ना, तो अपने साथ अंजलि वाली वाइब जरूर लेकर आती है। और अब इस वाइब की बात करें तो इसका नाम है फरीदाबाद की पहेली। तो भाई देखते हैं आज कौन सबसे पहले सही जवाब देता है। तो पहेली के साथ आ गई हूँ। पहेली कुछ इस तरह से है, मैं फरीदाबाद की एक ऐसी जगह हूँ जहाँ हर साल लाखों लोग घूमने और शॉपिंग करने आते हैं। मेरी पहचान सिर्फ हरियाणा ही नहीं, पूरे देश और दुनिया तक है। रंग, कला, हैंडक्राफ्ट्स और कल्चर सब कुछ एक ही जगह मिलता है, बताइए मैं हूँ कौन। चलिए भाई, इतना टफ नहीं करते हैं, आपके लिए ना एक हिंट छोड़ कर जाती हूँ। और हिंट ये है कि मेरा नाम एक झील से जुड़ा हुआ है। सो माय डियर लिसनर्स, आपको पता है ना आपको जवाब कहाँ देना है। तो फटाफट से जाइए रेडियो महारानी के इंस्टाग्राम पेज पर, वहाँ पर अपना वॉइस मैसेज भेजिए और इस पहेली का जवाब मैं रिवील करूंगी आपसे कुछ ही देर में। तब तक एंजॉय कीजिए, प्यार से रख, मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

एक ऐसा घर जहाँ लोग पहले दिन बोलते हैं मैं किसी से लड़ने नहीं आया हूँ, और फिर तीसरे दिन ही आपने मेरा नाम नॉमिनेशन में क्यों लिया। वेलकम टू सिनेमा कैप्सूल, मैं हूँ गीत, और अब सिनेमा घूमने वाला है उस घर की तरफ जहाँ प्रिवेसी नहीं लेकिन ड्रामा अनलिमिटेड है। जी हाँ, बिग बॉस 20 की तैयारी पूरे रफ्तार पे है और सलमान खान एक बार फिर से होस्ट के रूप में वापस आ रहे हैं। शो का प्रीमियर 6 सितंबर को स्केड्यूल्ड है। इस बार जिन नामों की कॉन्टेस्ट लिस्ट में सबसे ज्यादा चर्चा है उनमें से है कुशल, तनवर, अकागुल्लू, खुशी दुबे, गीता बसरा, मैरी कॉम, काजी तकीर, विक्रांत सिंह राजपूत, आशिफा खान, ईशा रिखी, शोविक चक्रवर्ती और आम्रपाली दुबे जैसे नाम शामिल है। और ट्विस्ट ये भी है कि रिया अहीर और लव गिल में से एक को ऑडियंस वोटिंग के जरिए Day 1 एंट्री मिलने की बात भी सामने आई है। अब बस देखना यह है कि इस घर में पहले प्यार होता है, दोस्ती होती है या नॉमिनेशन। तो इसके लिए आप बने रहिए मेरे साथ सिनेमा का कैप्सूल में।

हम अक्सर खुशियाँ ढूंढने के लिए ना बड़ी बड़ी चीजों के पीछे भागते हैं, और अगर कुछ नहीं मिलता है ना तो ऐसे लगता है जिंदगी में कुछ अचीव ही नहीं किया। तो अगर खुशियों की असली डेफिनेशन जाननी है ना तो आज की कहानी आपके लिए है। और आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में जिसने दिल खुश कर दिया। और ये छोटी सी चीजें आपको बताएंगी कि जिंदगी में ना जो भी कुछ आपको मिलता है ना उसके लिए हमेशा थैंकफुल होना चाहिए। तो चलिए फिर चलते हैं भाई राजस्थान, राजस्थान के अजमेर।

अपने पूरे होने जितना इम्पोर्टेंट है। और ये इंसिडेंट हमें ये बताता है विकास सिर्फ सड़कों का नहीं लोगों की जिंदगी का भी होता है। और इसी के साथ इस पॉजिटिव फीलिंग के साथ एंजॉय कीजिए ट्रैक, मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: 89.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: रहना, आंखों आंखों में ही रहना, आंखों आंखों में ही रहना। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, दिस इज आरजी अंजलि और शो चल रहा है अंजलि ऑन एयर। दिमाग की बत्ती जलाने का काम मैंने किया था, यानी कि फरीदाबाद की पहेली लेकर आई थी और हिंट भी देकर गई थी और बहुत सारे जवाब हमें मिले। कुछ जवाब तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थे और कुछ नाम ऐसे थे जो मैंने कभी सुने भी नहीं थे, लेकिन हमें फरीदाबाद की पहेली का सही जवाब मिल गया है। तो चलिए पहले आपको जवाब सुना देते हैं।
1: हेलो अंजलि, जो तुमने अभी पहेली पूछी है तो इस पहेली का आंसर है सूरजकुंड। जहाँ हम सब जाना पसंद करते हैं, शॉपिंग करना, घूमना, खाना पीना और हर साल इंतजार रहता है, सिर्फ और सिर्फ सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेले का। थैंक यू।
0: बिल्कुल सही कहा, जवाब है सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला। कहना पड़ेगा बहुत ही अच्छी याददाश्त है आपकी, और इसी सही जवाब के लिए आपके लिए बनती है ये जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच मॉनिक, और रेडियो महारानी के साथ ऐसे ही जुड़े रहें, अपना प्यार देते रहें, साथ ही सुनते रहें रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: plan today.
1: Peace tomorrow!
2: 89.6 रेडियो महारानी पर बस एक छोटा सा ब्रेक है।
3: हर सफर में एक ऐसा साथी जरूर चाहिए जो सिर्फ सेवाएं नहीं भरोसा भी दे।
4: सालों से लाखों लोगों के विश्वास का नाम अलंकित,
3: और अब अलंकित फरीदाबाद में एक नई उपलब्धि के साथ आगे बढ़ रहा है।
4: आप सादर आमंत्रित हैं अलंकित के नए ऑफिस के इनॉगरेशन पर 7 सितंबर 2026
3: सोमवार सुबह 10 बजे से SCO 36 फर्स्ट फ्लोर मंशा वेगा स्ट्रीट सेक्टर 82 फरीदाबाद।
4: आइए इस विशेष अवसर का हिस्सा बने और हमारे साथ इस नई शुरुआत का उत्सव मनाएं।
3: चाहे बात हो निवेश की, डीमैट अकाउंट की, बीमा सेवाओं की, पैन संबंधी सुविधाओं की, GST समाधान की या वित्तीय योजना की,
4: अब आपकी हर आवश्यकता का भरोसेमंद समाधान एक ही पते पर। आइए एक नए अध्याय के शुभारंभ के साक्षी बनिए। अलंकित लिमिटेड, विश्वास का नाम, विकास का साथी।
0: ब्रेक ओवर, गाना शुरू।

0: राज के बारे में आप हमसे ज्यादा सोचती हैं।
1: क्योंकि सखी इस महल में नहीं अपने श्री के मन में रहती है।
2: फिट है तो हिट है, फिट बॉडी फिट माइंड और फिट फरीदाबाद। हाँ जी फरीदाबाद वालों, फिटनेस वाला फंडा लेकर आ गई हूँ, यानी कि अब वक्त हो गया आपको फिट करने का। तो चलिए भाई, पूरा फरीदाबाद मिलकर होता है फिट फरीदाबाद। तो भाई आज का हेल्थ मंत्र है ब्रेन स्ट्रोक से बचाव। यानी कि डॉक्टर्स के मुताबिक स्ट्रोक का रिस्क कम करने के लिए सिर्फ एक नहीं बल्कि कुछ हेल्दी हैबिट्स को रोज की लाइफ का हिस्सा बनाना जरूरी है। और बस ये हैबिट्स जब आप डेली अपनी लाइफ में इंक्लूड करने लग जाते हैं ना, फिर आपको खुद भी पता नहीं लगता कि आप कितने ज्यादा हेल्दी हो जाते हैं। जैसे कि अब आपको करना क्या है, आपको अपना ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल रेगुलर चेक करना है, और साथ ही थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी या फिर एक्सरसाइज करना है, स्मोकिंग से दूर रहना है, ज्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल खाने हैं, बार बार चक्कर है या फिर हार्ट बीट इरेगुलर लगे तो तुरंत जाकर अपने डॉक्टर से मिलना है, उनसे सलाह लेनी है। बिकॉज हेल्दी हैबिट्स ही हेल्दी फ्यूचर की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। और बस इस मंत्र को याद रखना है। और आज का फिटनेस वाला फंडा यही था कि खुद को किस तरह से प्रायोरिटी बनाना है। तो भाई आज ही खुद को प्रायोरिटी बनाइए और लंच बॉक्स में ना कुछ हेल्दी लेकर जाइए। साथ ही सुनते रहे रेडियो महारानी 89.6 FM, मल्टीप्लेक्स म्यूजिक ब्रेक के बाद।

कभी नोटिस किया है, बॉलीवुड में एक फिल्म आती है, फिर उसकी कहानी से ज्यादा चर्चा होती है किसने क्या कहा, किसने क्या किया और किसका क्या रिएक्शन आया। वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल, मैं हूं गीत। और अब बात करते हैं उस चीज की जो आजकल फिल्मों जितनी ही इम्पोर्टेंट हो गई है, ओटीटी और एंटरटेनमेंट की दुनिया में क्या चल रहा है। तो इस हफ्ते ओटीटी पर भी नए टाइटल्स ने एंट्री ली है, कुछ मिस्ट्री लेकर आए हैं, कुछ ड्रामा, कुछ थ्रिलर और कुछ ऐसे जिन्हें देखकर आप सोचेंगे ये मैंने कब अपनी वॉच लिस्ट में डाल दिया था। बबीता सिंह रिपोर्टिंग, चुंबक, पार्ट टाइमर्स, द विस्पर मैन, डार्क मैटर सीजन 2 और ग्रेवयार्ड सीजन 3 जैसे टाइटल्स इस हफ्ते अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए रेडी हैं। तो मंडे हो या संडे, एंटरटेनमेंट की कोई छुट्टी नहीं होती, बस आपकी वॉच लिस्ट में एक चीज की कमी होती है, वो है टाइम। तो मैं हूँ गीत, आप सुन रहे थे सिनेमा का कैप्सूल, जहाँ सिनेमा की दुनिया की हर इंटरेस्टिंग अपडेट मिलती है थोड़े से मसाले और ढेर सारी मस्ती के साथ।

हेलो हेलो जी, वेलकम बैक टू रेडियो महारानी। तो देखिए भाई, स्वागत मैंने आपका फिर से कर दिया है, और दोबारा से स्वागत इसलिए किया है क्योंकि अब मैं आ गई हूँ आपके लिए फरीदाबाद की कुछ बातें लेकर। तो चलिए इम्पोर्टेंट बातों पर अब नजर डाल ही लेते हैं। NIT फरीदाबाद की कई एरियाज में पीने के पानी की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक बड़ा प्लान सामने आ गया है। तो भाई NIT वालों, अब तक आपको पानी की प्रॉब्लम होती थी ना, ये प्रॉब्लम अब आपकी बहुत जल्दी सॉल्व होने वाली है, बिकॉज एक नया प्लान आया। और प्लान ये है, 250 करोड़ का बूस्टर प्रोजेक्ट बनाने की बात की गई है, जिसका एम है करीब 5 लाख लोगों तक पानी की सप्लाई को इम्प्रूव करना, और इसके साथ ही पाइपलाइन नेटवर्क को भी स्ट्रेंथन किया जाएगा। तो ये एक गुड न्यूज है फरीदाबाद के लिए, स्पेशली NIT एरिया में जितने भी लोग रह रहे हैं, इस डेवलपमेंट के बारे में सोचा जा रहा है आपके लिए। और बस अब देखना ये है कि कितने टाइम के बाद ये प्रोजेक्ट ग्राउंड पर नजर आता है हमें। जब तक ये प्रोजेक्ट ग्राउंड पर नहीं आता, तब तक आप हमें बता सकते हैं NIT या फिर आसपास के एरिया में किस जगह पर वाटर सप्लाई का क्या हाल है। और इसी के साथ ही एंजॉय कीजिए ड्राइव, मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

Hi, I'm Dr. Tanu. I am a MD medicine diabetologist. I've been practicing for last 10 years. And yes, I also run a supplement company. I am a fellow in regenerative medicine. And my advice today comes for women who have done their first inning and now they're in their second inning. पहली इनिंग में मेनार्की, प्रेगनेंसी, बच्चे, सिंगल लाइफ, मैरिड लाइफ, सो मेनी थिंग्स, एंड नाउ यू आर इन अ वेरी वेरी डिफरेंट फ्रजाइल फेस ऑफ योर लाइफ, वेर आपकी बॉडी में जितनी सारी चीज़ों से आप खूबसूरत लगते थे, आप इतना एक्टिवली काम करते थे, अब वो सारी चीज़ें कम होती चली जाएंगी. अब बहुत ज़रूरी है कि हम 5 चीज़ों पर ध्यान दें. पहली चीज़, हो सकता है कि आप पहले स्लीप को इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, बट टेक अ गुड मैग्नीशियम सप्लीमेंट एंड ट्राई टू स्लीप बेटर. सेकेंड, प्रोटीन, एज इन हमें बचपन सिखाया गया है कि लेना चाहिए लेना चाहिए लेना चाहिए, बट हम ऑब्वियसली एक 40 साल की ज़िंदगी में, काम में, बच्चों में, बहुत सारी चीज़ों में भूल जाते हैं वो चीज़ें. अब आपकी उस एज में हो, अब आपकी बॉडी बहुत वियर ऑफ हो चुकी है, यू नीड मोर प्रोटीन देन बिफोर. थर्ड थिंग, अब आपकी स्किन पहले जैसी नहीं रह सकती. यू हैव टू एक्सेप्ट द स्किन विल ड्राई आउट, योर वेजाइना विल ड्राई आउट, योर बॉडी नीड्स मोर एंड मोर, यू नो, आपको और अच्छी क्रीम्स और अच्छे सप्लीमेंट्स और अच्छी डाइट फुल ऑफ हाइड्रेशन यूज़ करनी है. फोर्थ, आपको अब एक ब्रेन फॉग, आपको अपना आधी चीज़ें थोड़ी कम याद रहेंगी, अब आप थोड़ा कन्फ्यूज रहोगे, ये सब पेरीमेनोपॉज में होता है, डरने की ज़रूरत नहीं है. ऑलवेज टॉक टू योर डॉक्टर्स, मीट योर गायनेकोलॉजिस्ट ऑन टाइम, टेक द मेडिकेशन एज एडवाइज, मीट ऑल योर फ्रेंड्स, कीप यू नो योर सेल्फ अराउंड विद पीपल जिनको ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ताकि आप अकेला ना फील करो. इस टाइम पे बहुत लोगों के डिवोर्स होते हैं, बहुत लोग बहुत मिसअंडरस्टूड किए जाते हैं अपने पार्टनर से, दे आर गोइंग थ्रू अ एरे ऑफ प्रॉब्लम्स, बट देयर इज अ सोल्यूशन टू एवरीथिंग व्हेन यू आर सिटिंग विद राइट पीपल. पांचवी चीज, यू विल हैव टू रियली रियली टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ, दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट, बिकॉज अब आपकी जैसा आपका पहले जैसा सुंदर दिखना, आपकी डाइट का चेंज होना, आपका वेट गेन होना, आपको बहुत वेट गेन हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें आपको इम्पैक्ट करेंगी. ये पांचवी चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है. मीटिंग अ साइकोलॉजिस्ट, अ गायनेकोलॉजिस्ट, अ न्यूट्रिशनिस्ट शुड बी इन योर लिस्ट, बिकॉज राइट नाउ यू आर अर्निंग वेल, यू हैव गुड मनी ऑल्सो, यू हैव गुड लाइफ ऑल्सो, पर ये पाँच चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. थैंक यू.

हेलो हेलो जी, वेलकम बैक है जी, वेलकम बैक है। और देखिए फिर से आ गई हूँ मैं, और अब आई हूँ तो ऐसे खाली हाथ तो नहीं जाने वाली, कुछ ना कुछ तो जरूर जान कर जाऊंगी ना। और देखिए अब टाइम हो गया है कि आज मैं टिफिन में क्या लेकर आई हूँ ये पूछने का और ये बताने का आपको। तो आज के मेरे टिफिन में है वेजिटेबल पोहा, और उसी के साथ ना मैं फ्रेश फ्रूट्स लेकर आई हूँ। जैसे कि मैंने आज आपको बताया था ना कि खुद को फिट कैसे रखना है, और फिट फरीदाबाद बनाने के लिए ना पहले मुझे खुद को फिट रखना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ मंडे स्टार्ट हो चुका है, और अगर वीकडेज में कुछ हेल्दी खाएंगे ना तभी वीकेंड तक जाकर कुछ जंक खा पाएंगे। तो भाई देखिए मेरा मंडे तो स्टार्ट हो गया है, अब आप मुझे ये जरूर बताइएगा कि आज आप अपने टिफिन में क्या लेकर आए। और अगर घर से कोई इडली सांभर या फिर सैंडविचेस लेकर आए हो ना आज, तो आपको पता है ना कहाँ जाना है। आपको जाना है रेडियो महारानी के इंस्टाग्राम पेज पर, वहाँ पर फटाफट से भेजना है कि आज आप अपने टिफिन में क्या लेकर आए। अगर कुछ हेल्दी और टेस्टी सा है ना तो प्लीज मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और इसी के साथ अब मेरा वक्त हो गया यहाँ से जाने का, सुबह 7 बजे आई थी, अब 11 बजने वाला है। बहुत सारी बातें मैंने आज आपके साथ की है, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आज आऊंगी तभी तो कल आऊंगी ना, तो मेरा इंतजार जरूर कीजिएगा। आप फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम प्लेस ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

आज का जो कोट है ना, जिससे हम शुरुआत करने वाले, वो हमारे आज गेस्ट का एक मिनी इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा। 89.6 रेडियो महारानी तुषार है यहाँ पर आपके साथ, और कोट सुनिए। एक नारी जब खुद के लिए खड़ी होती है तो अनजाने में हजारों महिलाओं के लिए रास्ता बना देती है। तो ये जो लाइन है ना कि एक नारी जब खुद के लिए तैयार हो जाती है, वो सोचती है नहीं मुझे ये करना है, तो उसे देख के पीछे 10 और महिलाएं मोटिवेट होके आती हैं उस पाथ में, उनको देख के 10 और, ऐसे एक जो ह्यूमन चेन बेसिकली वुमेन्स की बन जाती है, जो मोटिवेशनल बेस पे बस चल रही होती है और लोगों को इंस्पायर करती जाती है कि वो कर रही है तो मैं भी कर सकती हूँ, हमें भी करना चाहिए लाइफ में कुछ ऐसा। तो वो सिर्फ एक नारी शक्ति के साथ होता है, क्योंकि जब मेंस की हम बात करते हैं तो मेंस सामने वाले को देखता है तो कहता नहीं, इससे तो या तो मैं अच्छा करूंगा या तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, तो वो जेलसी आ जाती है। बट वुमेन नहीं, वुमेन हर बार वो कॉम्पिटिट लेवल पे आती है कि नहीं इसने ये किया है तो मैं इससे एक स्टेप ऊपर ही दिखाऊंगी, फिर दूसरी वाली कहती मैं इससे ऊपर। तो ये कंपैरिजन में जो ऊपर जाने की चेन है ना, ये वुमेन्स में ज्यादा स्ट्रांग होती है ये मेन के कंपैरिजन। ये एक साइंटिफिक पूरी रिसर्च के अकॉर्डिंग भी कोट लिखा गया है। बट हमारी आज की गेस्ट ने भी ऐसा ही कुछ करा था, वो अकेले चलना शुरू करी थी बट उनके साथ लाखों महिलाएं जुड़ चुकी हैं, क्योंकि 1 बजे से लेकर 2 बजे तक वो गेस्ट आज हमारे साथ होंगी महारानी स्टूडियोज में, ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके

वुमेन्स इन स्पॉटलाइट में इनके अलावा आज कोई जगह ले ही नहीं सकता। इन्होंने जो करके दिखाया है शायद इसका इंतजार पूरी इंडिया कर रही थी एक तरफ से। रेडियो महारानी तुषार है यहाँ पर आपके साथ। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया वुमेन्स एशिया कप का ये मैच, और क्या करा है पाकिस्तान वालों ने। मतलब अब हारते ये कोई बात नहीं, बट ऐसे हारोगे। इंडियन वुमेन्स टीम ने जो कमाल करके दिखा दिया है कि भाई इन्होंने पूरे पूरे 10 विकेट उनके उड़ा दिए, और वो भी बहुत कम रन दिए उनको। बहुत कम क्या, ये अभी तक का मेरे को लग रहा है एशिया कप का ये वुमेन्स का किसी भी मैच का सबसे लोवेस्ट होगा। 55 रन पे पूरी टीम को आपने आउट कर दिया। क्या था ये फीमेल्स इन ब्लू, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। ये किस तरह का मैजिक आप आज पिच में लेके आए थे, या किस तरह से आपने वहां पर जलवा जो है वो बिखेरा था। मैं बॉलिंग की बात करूंगा तो हर एक बॉलर अप लेवल पे जाके खेल रहा था। अब बैटिंग के लिए तो आपके पास इतना बड़ा ग्राउंड हो चुका था कि आप क्या ही बोलोगे जब आपने सामने वाले को 55 पे ही आउट करके रख दिया है। तो बहुत ही अमेजिंग यहाँ पर वो निकल के आया था। और जहां पर 27 रन तक तो इनकी पारी बहुत बढ़िया चल रही थी, आउट आउट नहीं हो रहे थे, बट 27 रन से लेके वो 55 रन के बीच में ऐसा क्या हुआ, वो बीच के 28 रन में आपने ऐसा क्या उलटफेर कर दिया कि पूरी टीम ही ढेर पैड आउट कर दिया आपने। तो मेरे को तो ऐसे लग रहा है जितनी भी बाकी टीमें हैं उन्हें फीमेल्स इन ब्लू से थोड़ा सा सतर्क होके खेलने की भाई तैयारी कर लेनी चाहिए। ये पूरी फॉर्म के साथ आई, और कब चुटकियों में आपका खेल खत्म कर देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। क्या बात है यार, ये होता है एक प्राउड इंडियन वाली फीलिंग जो इस टाइम हम सबको हो रही है। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

तो इस हफ्ते के सिनेमा का कैप्सूल में चलिए बात करते हैं उस फिल्म की जिसका नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहला शब्द आता है भौकाल। यस, हम बात कर रहे हैं मिर्जापुर द मूवी की। अब भाई सालों तक ओटीटी पर लोगों ने मिर्जापुर को बिंज वॉच किया है, डायलॉग्स याद किए हैं, कैरेक्टर्स पर मीम्स बनाए हैं और वही पूरा यूनिवर्स पहुंच गया है बड़े पर्दे पर। और ऑनेस्टली लोगों का एक्साइटमेंट देखकर लग रहा है कि मिर्जापुर सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है, लोगों का इमोशनल अटैचमेंट है। कालीन भैया है, गुड्डू है और सबसे बड़ी बात मुन्ना भैया भी है और ये नाम ही काफी है फैंस को थिएटर तक खींचने के लिए। लेकिन इस बार कुछ नए चेहरे भी इस गेम में एंट्री मार रहे हैं। जितेंद्र कुमार यानी हमारे अपने सचिव जी और बबलू पंडित के किरदार में नजर आ रहे हैं। मतलब पंचायत से सीधा मिर्जापुर की गलियों तक का सफर, भाई साहब करियर ग्राफ नहीं है ये तो कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन है। और रवि किशन की एंट्री ने भी फिल्म में एक अलग सा तड़का लगा दिया है। तो पूरे भौकाल के साथ इस बार नया मसाला भी भरपूर है। रिव्यूज की बात करें तो पिक्चर थोड़ी इंटरेस्टिंग है। कुछ लोग कह रहे हैं फाइनली मिर्जापुर इज बैक, पंकज त्रिपाठी यानी हमारे कालीन भैया के प्रेजेंस को लोगों ने काफी पसंद किया है। दिव्यांदु की वापसी पर फैंस ऑलरेडी क्रेजी है और थिएटर वाला एक्सपीरियंस अलग ही लेवल का बताया जा रहा है। हाँ, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि फिल्म थोड़ी लंबी है, कहीं कहीं कहानी को जरूरत से ज्यादा एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन ओवरऑल वर्डिक्ट ये है कि अगर आप मिर्जापुर फैन है तो ये सिर्फ मूवी नहीं, आपके लिए एक पूरा रीयूनियन है। पुराने लोग, नए खिलाड़ी, गद्दी की लड़ाई और वही फैमिलियर सा डायलॉग माहौल। सो बेसिकली भौकाल ओटीटी से उठकर थिएटर तक पहुंच गया है। मैं हूँ गीत, आप सुन रहे हैं सिनेमा का कैप्सूल।

लाइन तो हम अक्सर कहते हैं ना, शी हैव चेंज द वर्ल्ड, बट आज मैं जिसकी स्टोरी आपको सुनाने जा रहा हूँ ना, शी हैव मेक द वर्ल्ड. उन्होंने ये पॉसिबल करके दिखाया, वरना शायद एडुकेशन को इतना बड़ा एक जो मैं कहता हूँ ना गैप या लैप जो था इतने टाइम तक, वो हमेशा रहता, वो कभी हम कवर कर ही नहीं पाते अगर सावित्री बाई फूले ना होती. हाँ जी, मैं आज उन्हीं की कहानी के बारे में यहाँ पर बात करने वाला हूँ. और सावित्री बाई फूले, ये नाम हम लोग ने अक्सर सुना होगा, बट उनकी कहानी के पीछे का जो संघर्ष है वो हम अक्सर भूल जाते हैं. एक टाइम था जब लड़कियों का पढ़ना पाप माना जाता था, और उस टाइम पे सावित्री बाई फूले ने डिसाइड किया था कि भारत में पहला गर्ल्स स्कूल वो शुरू करेंगी 1848 में, जहां पर लोग लड़कियों को पढ़ने के लिए बिल्कुल इंस्पायर नहीं करते थे, मोटिवेट नहीं करते थे. इन्होंने कहा नहीं, मैं उन्हें पढ़ाऊंगी भी और उन्हें उनके वक्त के साथ कदम से कदम मिला के चलना भी सिखाऊंगी. जब वो स्कूल जाती थी तो उनपे पत्थर फेंके जाते थे, उनपे कीचड़ फेंका जाता था, उनको तमाम बातें बोली जाती थी, और सावित्री बाई शांति से एक एक्स्ट्रा साड़ी अपने बैग में रख के लेके जाती थी और वहां जाके चेंज करती थी, और उसके बाद हिम्मत से लोगों को मोटिवेशन देती थी, शिक्षा देती थी कि नहीं, हमें ये समाज को बदलना है, समाज की सोच को बदलना है. और आज जब लाखों लड़कियां स्कूल जा रही हैं, पढ़ रही हैं, जॉब्स कर रही हैं, अलग अलग फील्ड में सक्सीड कर रही हैं, तो हमें सावित्री बाई फूले के उस बलिदान को नहीं भूलना चाहिए जहां से उन्होंने वो पहला कदम उठाया था, जिस वजह से आज इतनी लड़कियां पढ़ पा रही हैं, अपने लिए कुछ करियर में कर पा रही हैं. तो उन सबके लिए सावित्री बाई फूले जो हैं वो एक मोटिवेशन होनी चाहिए, एक मिसाल होनी चाहिए, वहां से उनको इंस्पिरेशन लेनी चाहिए और हमेशा उनके बारे में लोगों को और ज्यादा से ज्यादा बताना चाहिए. 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके.

नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव कुमार सेतिया, यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, यथार्थ हॉस्पिटल फरीदाबाद। पेन किलर और बिना डॉक्टर की सलाह के मेडिसिन लेने से किडनी पे क्या फर्क पड़ता है, उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि पेन किलर और कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो किडनी पे नेगेटिव इफेक्ट डालती हैं, किडनी को खराब करती हैं, जिनको हम नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स बोलते हैं। तो बिना डॉक्टर की सलाह के ये दवाइयां ना लें, क्योंकि ये किडनी को डैमेज करती है और किडनी फेलियर प्रेसिपिटेट कर सकती है। थैंक यू डॉक्टर।

इस घर में जाते ही लोगों के अंदर ऐसे चेंज आ जाते हैं जो आपने कभी इमेजिन भी नहीं करो कि ये भी ऐसा कर सकता है क्या। 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ, और कल से शुरुआत हुई है बिग बॉस की। और बिग बॉस की शुरुआत होते ही घर के अंदर एंटर हुए हैं बहुत सारे गेस्ट, और आते ही कलेश शुरू। सोने के लिए कलेश हो रहा है भाई कि ये बेड मेरा है, ये बेड मेरा है, मुझे ये बेड चाहिए, वो बेड चाहिए। और भाई तुम मैरी कॉम से लड़ रहे हो भाई, वो कह रही है मैं लेजेंड हूं, मुझे ये बेड चाहिए। अरे वहां आप क्या, वहां आप कॉमन कंटेस्टेंट बन के गई, वो भी वही लेवल पे आया, वहां वो लेजेंडरी क्यों देखेगा कि आप लेजेंड है तो आपको बेड दे दे, आपको वो दे दे, सीनियर आप सीनियर सिटीजन अलग काट के ले। तो आपको नहीं जाना चाहिए था, अगर आपको ये सब लग रहा है कि नहीं लग रहा है भाई, वो कॉम्पिटिटर है, वो भी अपने लिए लड़ेगा कि मुझे ये बेड चाहिए, मेरे ये 10 रीजन है, आपके ये 10 रीजन है। तो वो कह रहा है मैं अगर किसी के साथ सोया तो वो नहीं सो पाएगा, उसके अपने अलग रीजन चल रहे हैं। बट मैरी कॉम ने जाते ही नहीं नहीं ये सिंगल वाला बेड ही लूंगी मैं, बिल्कुल भौकाल के साथ वहां पर बोलना शुरू कर दिया। लोग आ रहे हैं समझा रहे हैं उनको, कह रही नहीं मैं लेजेंड हूं। अरे आप लेजेंड हैं, हम सब मान रहे हैं, पूरा इंडिया मान रहे हैं, बट उस घर के अंदर नहीं। उस घर के अंदर आपको अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग, अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग, अपने उसके अकॉर्डिंग वहां पर चीजें जीतनी है। आप बाहर जो करके आए उसके अकॉर्डिंग आपको अंदर नहीं जीतना है, क्योंकि अंदर जाने के बाद आप सब एक लेवल पे, आप सबको कॉम्पिटिट करना है। अब वहां पर भी अगर कोई ये देखने लगे नहीं ये लेजेंड है और हम इनको ये नहीं करेंगे, इनको हम खाना बना के देंगे, तो वहां आपका जाने का फायदा क्या? वहां आपको सर्वाइवल ही तो करना है ऐसे लोगों के बीच में जो आपके इक्वल हो चुके हैं। आप तो एक ये थोड़ा सा मेंटेन करके चलना है घर के अंदर अब हमको। लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि इन सारी चीज के बीच में जितने भी व्यूअर्स हैं उन्हें बहुत मजा आने वाला है, तो उनके लिए सीजन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

0: अंजलि।
1: क्या ही कहने इस इंटरनेट के, कभी कभी ना इंटरनेट पर इस तरह की वीडियोस वायरल हो जाती हैं, जिन्हें देखकर बस एक ही डायलॉग याद आता है, ये कोई तरीका है भीख मांगने का? या फिर इंजीनियर बनना जरूरी नहीं होता, कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। अब मैंने इतनी सारी बात की है, आखिर जानते हैं कि हुआ क्या? तो भाई सोशल मीडिया पर ना एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जहां पर एक पैसेंजर ट्रेन के चार्जिंग सॉकेट में घर से लाया हुआ फर्राटा फैन चलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ फैन चला ही नहीं, क्योंकि फैन को चलने के लिए ना 220 वोल्ट चाहिए होता है और ट्रेन का सॉकेट होता है 110 वोल्ट का। तो फिर क्या था, जब ये वीडियो वायरल हुआ ना तो कमेंट सेक्शन में मीम्स और जोक की बारिश शुरू हो गई। वैसे देखो, जुगाड़ हमारी पहचान जरूर है, लेकिन हर जगह जुगाड़ काम नहीं आता, ये चीज भी याद रखनी चाहिए। थोड़ी सी टेक्निकल नॉलेज और सेफ्टी भी उतनी ही ज्यादा जरूरी होती है। और हम हमेशा क्यों भूल जाते हैं, जब हम ट्रेवल कर रहे होते हैं अपने साथ साथ हमें बाकी पैसेंजर की भी जान के बारे में सोचना चाहिए भाई, उनकी सेफ्टी के बारे में भी सोचना चाहिए, हमेशा अपने बारे में ही सोचते हैं, इतने सेल्फिश क्यों है? तो भाई आज का इंसिडेंट हमें ये बताता है, सिंपल सा फंडा है, हर प्लग हर सॉकेट के लिए नहीं होता, और सोशल मीडिया पर जो भी वायरल दिखे उसे सिर्फ एंटरटेनमेंट की तरह ही लीजिए, घर पर एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा। और हाँ, इसी के साथ एंजॉय कीजिए ट्रैक जो है खास आपके लिए।

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

वुमेन्स राइट की जो बात है ना, वो आज आर्टिकल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, कौन सा आर्टिकल क्या वुमेन राइट्स पे वर्क कर रहा है। 89.6 रेडियो महारानी, तुषार है यहाँ पर आपके साथ, और शुरुआत करते हैं आर्टिकल 14 से, इक्वालिटी बिफोर लॉ। जब भी आप किसी भी लॉफुल चीज के सामने जाएंगे तो मेन और वुमेन दोनों इक्वल हैं, दोनों को इक्वल लेवल पे सुना जाएगा, समझा जाएगा, तब कोई डिसीजन लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि एक मेल है उसे ज्यादा समझा जाएगा या सुना जाएगा, इक्वल वहां पर दोनों जन होने चाहिए लॉ के सामने, कोई भी लॉ वाली चीज के सामने आप जा रहे हैं। आर्टिकल 15 बताता है नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी जेंडर में भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी भी तरह की चीजों को लेके, कि ये सिर्फ फीमेल्स को मिलेगा, ये सिर्फ मेल को मिलेगा, हर अधिकार दोनों को मिलना चाहिए, जेंडर वाइज डिवाइडेशन नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 16 कहता है इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज, आज के टाइम में जितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज मेल के लिए है उतनी ही फीमेल्स के लिए भी होनी चाहिए, पर हो सकता है फीमेल्स के लिए थोड़ी ज्यादा हो वुमेन एम्पावरमेंट वाले ऑर्गेनाइजेशंस की वजह से, बट इक्वल राइट्स दोनों के लिए होने चाहिए, ये बोलता है आर्टिकल 16। और इसी आर्टिकल को अगर आप अंदर से देखेंगे तो इक्वल पे, इक्वल वर्क स्पेस, वहां पर इक्वल तरह से आपको ट्रीटमेंट मिले, ये भी उस आर्टिकल के अंदर आता है। इसके बाद अगर हम प्रॉपर्टी राइट्स की बात करेंगे तो वहां पर डॉटर को अपने जो घर, जो इनलॉस का घर है वहां भी, और जो उसका रियल घर है मम्मी पापा वाला, वहां भी इक्वल राइट्स हैं अपनी प्रॉपर्टी को लेके। तो ये जो पूरी तरह से एक महिला को सशक्त बनाते हैं कि नहीं, अगर वो सोचे कि मैंने, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैंने लाइफ में कुछ भी नहीं करा है, एडुकेशन अच्छी नहीं मिल रही है मुझे, तो ये उसका राइट है कि वो घर पे बोले कि अगर बेटा पढ़ने जा रहा है तो मुझे भी जाना है, उसे ये मिल रहा है तो मुझे भी मिलना चाहिए। अब आप इसमें फायदा उठाने लगे कि आपको एक मिला है तो आप कह दो नहीं मुझे दो चाहिए, मुझे तीन चाहिए, मुझे चार चाहिए, इक्वल मींस इक्वल, फिर वो इक्वल बैलेंस होना चाहिए, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, किसी भी एक को अबव या किसी भी एक को नीचे हमें नहीं रखना है। ये आर्टिकल्स हमको समझाते हैं, और वुमेन्स को भी अपनी राइट समझ के और उनके बारे में समझ के ही करना चाहिए, उन राइट का कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि मेरे पास ये पावर है लाओ मैं ये बोल देती हूँ ये कर लेती हूँ, नहीं, जहां नीड है, जहां आपको लग रहा है आपके साथ गलत हो रहा है सिर्फ वहां उन राइट्स का यूज करिए, हर जगह पे विक्टिम कार्ड वाली तरह से उन्हें प्ले करना ना शुरू करिए, वो बाकी वुमेन्स के लिए फिर आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

आखिर एक मर्द को चाहिए क्या, क्या डिमांड होती है उनकी? देखिए उनकी डिमांड बहुत बड़ी नहीं होती। 89.6 रेडियो महारानी, तुषार है यहाँ पर आपके साथ। अक्सर हमने सुना है ना, एक महिला को समाज में ये चाहिए, एक महिला को समाज में चाहिए, कभी हम बात ही नहीं करते एक पुरुष को समाज में क्या चाहिए। देखिए पुरुष को बहुत आसान चीजें चाहिए, गरम खाना चाहिए, टीवी का रिमोट चाहिए और संडे को थोड़ी देर एक्स्ट्रा सोना चाहिए, शायद वो भी थोड़ी देर। लेकिन मैं आपको एक फन फैक्ट से हटके बताता हूँ, एक इंसान को क्या चाहिए, उसे चाहिए कोई उसको सुन ले, उस पर भरोसा कर ले। जब वो मेहनत कर रहा है ना, तो उस मेहनत को कोई नोटिस करे और मुश्किल वक्त में उसका साथ दे दे। रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और थोड़ी सी एप्रिसिएशन, बस इंसान वहां पर पिघल जाएगा। वो आपके लिए कुछ भी करेगा, वो आपको मूवी नाइट भी ले जाएगा, वो आपको डेट नाइट पे भी ले जाएगा, वो आपको डिनर कराने भी ले जाएगा, वो आपके लिए शॉपिंग भी कराएगा। बट वो जो चीज कर रहा है उसे आप धीरे धीरे अप्रिशिएट करते रहिए, उसकी उस चीज में थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाइए, उसको सजेशन देना शुरू कर दीजिए। मेन से बेटर इंसान कोई आपके लिए फिर हो ही नहीं सकता, अगर आप इस तरह से उन्हें सपोर्ट करने लगेंगे। एक इंसान को हमेशा सॉल्यूशन नहीं चाहिए, कभी कभी उसको ये चाहिए कि वो जो बता रहे हैं ना, आप वो सुन लो और सुन के अपने तक रख लो, जाके आगे ना हो तो पता है आज इसने कोई, अपने तक सुनो, उसे वहीं खत्म करो। मेन से सिंपल और सॉर्टेड इंसान आपको और कोई नहीं मिल सकता। ये एज अ वुमेन का जो मसीहा होता है ना, मैं उनको ये धीरे धीरे टिप देता रहता हूँ ताकि वो अपने जो मेन हैं या अपने जो बेटर हाफ है उन्हें और बेटर तरीके से समझ सके। तो आज से ये कोशिश करिएगा, शायद आपको वो हल्की हैप्पीनेस जो है ना वो और इंक्रीज होती हुई नजर आए। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

0: कब?
1: डॉक्टर कॉलिंग।
2: नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव कुमार सेतिया, यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, यथार्थ हॉस्पिटल फरीदाबाद। पेन किलर और बिना डॉक्टर की सलाह के मेडिसिन लेने से किडनी पे क्या फर्क पड़ता है, उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि पेन किलर और कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो किडनी पे नेगेटिव इफेक्ट डालती हैं, किडनी को खराब करती हैं, जिनको हम नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स बोलते हैं। तो बिना डॉक्टर की सलाह के ये दवाइयां ना लें, क्योंकि ये किडनी को डैमेज करती है और किडनी फेलियर प्रेसिपिटेट कर सकती है। थैंक यू
1: डॉक्टर कॉलिंग।

तो जितने भी फरीदाबाद वाले हैं, ये अपनी फिटनेस के लिए दौड़ने के लिए रेडी हैं कि नहीं है? अभी तक नहीं हुए? अरे मैं आपको बताता हूँ, आपको रेडी होना पड़ेगा। 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ, क्योंकि फरीदाबाद हाफ मैराथन फिर से एक बार आ रहा है अपने 2026 के एडिशन के साथ, जहाँ देश भर के रनर जो हैं उनमें जोश और जज्बा फिर से उतना ही एंथुसियास्ट के साथ हमको देखने मिल रहा है। 27 सितंबर 2026 सूरज कुंड मेला ग्राउंड से होने वाली है ये मैराथन की शुरुआत, और अभी तक 1,00,000 से ज्यादा इसके रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। तो आप पीछे ना रह जाए, तो रजिस्टर अभी कर लीजिएगा। और इसके बारे में डीसी आयुष सिन्हा जी ने भी बताया है कि इवेंट का जो उद्देश्य है वो सिर्फ हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करना है, और नशा मुक्त हरियाणा का जो संदेश है वो पूरे हरियाणा तक पहुंचाना है, पूरे फरीदाबाद के लोगों तक पहुंचाना है। मैराथन में जो रेसेस होंगी वो होंगी 21.1 किलोमीटर की मैराथन होगी, 10 किलोमीटर की होगी, 5 किलोमीटर की होगी, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होने वाली है। आपका टाइम जो है वो सब कुछ मेजर करा जाएगा, और कुल 10,00,000 रुपए का प्राइज मनी भी रखा गया है। तो इस प्राइज मनी के लिए ही दौड़ने के लिए थोड़ा सा मोटिवेट हो जाइए। तो वेट किस बात का कर रहे हैं, अपने आप को अभी रजिस्टर करिए इनकी वेबसाइट पे जाके www.faridabadhalfmarathon.in पर। अपने आप को हेल्दी बनाने के लिए ये मैराथन में जरूर पार्टिसिपेट करिए, हो सकता है वो एक दिन आपकी रनिंग जर्नी को, आपकी हेल्थ की जर्नी को बिगिन करने में आपकी मदद जरूर करे। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

और इस हफ्ते के सिनेमा कैप्सूल में चलिए बात करते हैं उस घर की तरफ जहां लोगों को एंट्री लेने से पहले शायद अंदाजा भी नहीं होता कि बाहर निकलते निकलते उनकी जिंदगी दोस्त और दुश्मन सब बदल चुके होंगे। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट बिग बॉस 20। और भाई, इस बार कंटेस्टेंट की पूरी टोली आ चुकी है। सीजन की सबसे शॉकिंग और शायद सबसे एक्साइटिंग एंट्री है मैरी कॉम। अब सोचिए, बॉक्सिंग रिंग में सामने वाले को नॉकआउट करने वाली मैरी कॉम अब बिग बॉस के घर में आर्ग्यूमेंट्स और किचन ड्यूटीज हैंडल करेंगे। और ऑनेस्टली, ये सब देखने में बहुत मजा आने वाला है। मुझे तो भाई बहुत मजा आएगा। उनके अलावा माही विज है, कनिका मान है, पंचायत वाले आसिफ खान है और भोजपुरी सिनेमा की आम्रपाली दुबे है। सोशल मीडिया सेंसेशन आशिफा खान और कई अलग बैकग्राउंड के लोग भी इस बार एक ही छत के नीचे बंद होने वाले हैं। मतलब इस बार पूरा घर एकदम मिक्स्ड प्लेटर है। एक्टर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, सिंगर्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हैं और यही बिग बॉस की असली खूबसूरती है। आपको कभी नहीं पता कि सबसे शान दिखने वाला इंसान कब सबसे बड़ा मास्टरमाइंड निकल जाए। तो पॉपकॉर्न रेडी रखिए क्योंकि अभी तो घर में एंट्री हुई है जनाब, असली पिक्चर तो अब शुरू होगी। मैं आपके साथ गीत हूँ और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी पर सिनेमा का कैप्सूल।

ये जो आईलाइनर है ना यार, ये तुम पे कितना ही सूट कर रहा है, तुम पे कितना अच्छा लग रहा है। अक्सर हम तारीफ में बोल देते हैं, बट ये आईलाइनर आया कहाँ से, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? 89.6 रेडियो महारानी तुषार है यहाँ पर आपके साथ। कभी जब इसकी शुरुआत हुई थी ना, तब ये आईलाइनर नहीं था, तब ये सिर्फ एक कोयला था। और मैं आईलाइनर की हिस्ट्री बताऊं, उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये बहुत पुराना एक फैशन पार्ट बना हुआ है, जहां पर पहले लोग इसे सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए लगाते थे बहुत सारी चीजों से। और ये आईलाइनर की शुरुआत जो है वो एशियन इजिप्ट, मतलब 5000 साल पहले हुई थी, जहां पर कोयले का इस्तेमाल किया जाता था इसे अपनी आंखों के ऊपर लगाने के लिए, जहां पर वो तेज धूप से बचाता था, उन्हें बहुत सारी चीजों से राहत देता था, आईज इन्फेक्शन से बचाता था, क्योंकि ये डायरेक्ट आईज पे प्रभाव नहीं पड़ने देता था, तो ये बहुत सारी चीजों से बचा रहा था, तो लोग तब लगाते थे। फिर क्वींस हो गए, किंग्स हो गए, या उसके बाद की जो जनरेशन हो गई, वो मेल और फीमेल दोनों लगाते थे। बट धीरे धीरे फीमेल ब्यूटी का पार्ट बनता चला गया, इसे लगाने के तरीके बदलते चले गए, फिर ये पेंसिल के रूप में आ गया, और उसके बाद आज अलग अलग टाइप पे, जैसे आपको बोल्ड चाहिए, आपको थिन चाहिए, आप उस अकॉर्डिंग यूज करके अपने आईलाइनर्स को लगा सकते हैं और एक ब्यूटी सिंबल सामने वाले इंसान को दिखा सकते हैं। अक्सर हम कहते हैं ना, तुम्हारा वो आईलाइनर यार आज बहुत अच्छा था, वो जो एक्स्ट्रा आई के बाहर तुमने निकाला था वो तो क्या ही लुक दे रहा था। तो आपको ये हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए कि ये आज से नहीं, 5000 साल पहले से फीमेल्स लगाती हुई चली आ रही हैं। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

क्या ही कहने इस इंटरनेट के। कभी कभी ना इंटरनेट पर इस तरह की वीडियोस वायरल हो जाती हैं, जिन्हें देखकर बस एक ही डायलॉग याद आता है, ये कोई तरीका है भीख मांगने का? या फिर इंजीनियर बनना जरूरी नहीं होता, कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। अब मैंने इतनी सारी बात की, अब आखिर जानते हैं कि हुआ क्या? तो भाई सोशल मीडिया पर ना एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जहाँ पर एक पैसेंजर ट्रेन के चार्जिंग सॉकेट में घर से लाया हुआ फर्राटा फैन चलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ फैन चला ही नहीं, क्योंकि फैन को चलने के लिए ना 220 वोल्ट चाहिए होता है और ट्रेन का सॉकेट होता है 110 वोल्ट का। तो फिर क्या था, जब ये वीडियो वायरल हुआ ना तो कमेंट सेक्शन में मीम्स और जोक की बारिश शुरू हो गई। वैसे देखो जुगाड़ हमारी पहचान जरूर है, लेकिन हर जगह जुगाड़ काम नहीं आता, ये चीज भी याद रखनी चाहिए। थोड़ी सी टेक्निकल नॉलेज और सेफ्टी भी उतनी ही ज्यादा जरूरी होती है। और हम हमेशा क्यों भूल जाते हैं, जब हम ट्रेवल कर रहे होते हैं अपने साथ साथ हमें बाकी पैसेंजर की भी जान के बारे में सोचना चाहिए भाई, उनकी सेफ्टी के बारे में भी सोचना चाहिए, हमेशा अपने बारे में ही सोचते हैं, इतने सेल्फिश क्यों हैं? तो भाई आज का इंसिडेंट हमें ये बताता है, सिंपल सा फंडा है, हर प्लग हर सॉकेट के लिए नहीं होता, और सोशल मीडिया पर जो भी वायरल दिखे उसे सिर्फ एंटरटेनमेंट की तरह ही लीजिए, घर पर एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा। और हाँ, इसी के साथ एंजॉय कीजिए ट्रैक जो है खास आपके लिए। बेस्ट ऑफ अंजलि।

0: थोड़ा हटके चलते हैं क्योंकि ये वाली फिल्म ना टिपिकल बॉलीवुड वाली लग नहीं रही है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया लेकर आ
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: ये कहावत है ना, मैं अकेला ही चला था जान बे मंजर मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। और ये जो कहावत है ना, ये हमारे आज के गेस्ट पे परफेक्ट सेट होने वाला है। 89.6 रेडियो महारानी, तुषार है आपके साथ। और आज हमारी जो नारी नंबर वन है वो है निधि सिद्धार्थ खुराना। और ये मैंने लाइन जो बोली है ये इन पे परफेक्ट सिट इसलिए हो रही है क्योंकि ये चली तो अकेले थी बट लोग इनके साथ इतना जुड़ गए हैं कि अब कारवा बहुत बड़ा हो चुका है। निधि, सबसे पहले तो महारानी के स्टूडियोज में आपका स्वागत है। और ये 18 साल की जर्नी कॉरपोरेट लाइफ की और उसके बाद वो सब छोड़ गए, अपना एक नया पाथ को डिफाइन करना या एक नए पाथ को चूज करना, कितना हार्ड था या कितना इजी था?
1: थैंक यू सो मच, थैंक यू तुषार। देखिए, 18 साल कॉर्पोरेट्स में, डिफरेंट कॉर्पोरेट्स में जॉब करी। आई एम अ कंपनी सेक्रेटरी बाय क्वालिफिकेशन एंड अलग अलग फील्ड्स में काम करने के बाद ये हुआ कि अपना सोचा नहीं था कि कुछ काम स्टार्ट होगा। शुरू से था कि अच्छे पढ़ी लिखी हूँ, पेरेंट्स ने बहुत अच्छी शिक्षा दी है तो जॉब ही करते रहेंगे। बट कुछ पर्सनल ऐसी सिचुएशन हुई, जैसे यूजली मदर्स के साथ होता है, सेकेंड बेबी होने पे आई थॉट अब छोड़ना पड़ेगा, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माय किड्स एज वेल। फिर ये सिचुएशन आई कि मैं क्या करूँ, तो बैठे बैठे एक दिन आया दिमाग में, चार पांच औरतों से बात करें कि एक ग्रुप बनाते हैं और हम लोग एक दूसरे को प्रमोट करते हैं। लेट्स स्टार्ट प्रमोटिंग ईच अदर बिकॉज वी आर सुपर टैलेंटेड, व्हाई टू स्टॉप एंड व्हाई टू यू नो जस्ट होल्ड आवरसेल्व्स बैक। सो ये जर्नी एंटरप्राइजिंग दीवास कम्युनिटी की वहाँ से स्टार्ट हुई, चार औरतों को इकट्ठा करके जो शुरुआत करी, अब जो है 3 लाख से ऊपर महिलाएं जुड़ी हुई हैं।
0: मेरे को लग रहा है आज की जर्नी बहुत इंस्पायरिंग रहने वाली है क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत सारी वुमेन्स को इंस्पायर किया है उनकी लाइफ में कुछ नया करने के लिए। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

0: ये जो सवाल है ना, इसका परफेक्ट जो एक एग्जांपल बोलूं या परफेक्ट जो मैसेज है वो हमारी आज की गेस्ट ही दे सकते हैं। 89.6 रेडियो महारानी, तुषार यहाँ पर आपके साथ, और मेरे साथ आज स्टूडियो में है निधि सिद्धार्थ खुराना। ये एंटरप्राइजिंग दीवास की ओनर भी हैं, फाउंडर भी हैं। मैम, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपनी लाइफ में बिजनेस शुरू तो करना चाहती हैं, बट कई बार कॉन्फिडेंस नहीं होता, कई बार गाइडेंस नहीं होता, इन सारी चीजों की कमी की वजह से वो नहीं कर पाती। तो एक कदम अगर वो आज आगे बढ़ाना चाह रही हैं, तो उन्हें एज अ गाइडेंस पर्सन या एज अ मेंटर आप क्या बताना चाहेंगी?
1: देखिए, सबसे पहली चीज होती है, हर औरत की एक अपनी कहानी होती है। डज नॉट मैटर आपने कितनी पढ़ाई करी है, आपने क्या करा है क्या नहीं करा है। वॉट मैटर्स इज योर करंट सिचुएशन, एंड आप उस चीज से बाहर निकलना चाहते हैं कि नहीं। अगर आपके अंदर खुद विश्वास है कि मेरे को अपनी करंट सिचुएशन से आगे चल के कुछ काम करना है, वो डेफिनेटली हो जाएगा। बहुत लोग बैठे हैं आपको पुल बैक करने के लिए, बहुत लोग बैठे हैं आपको पुश करने के लिए कि आप बढ़ें या आप पीछे रहें। ये आपने डिसाइड करना है, इट्स योर लाइफ। आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे कोई काम करना है, तो चाहे छोटे स्टेप लेके करिए। कोई नहीं कह रहा लाखों की इन्वेस्टमेंट करिए, हजारों की करिए, करोड़ों की करिए, छोटी छोटी चीज़ों से आप स्टार्ट करिए। एंड इफ़ यू ट्रूली बिलीव इन योर सेल्फ, यू विल अचीव दैट। कोई आपकी एक गाइडेंस दे सकता है, आपको पुश दे सकता है कि आप काम शुरू करें। एग्जाम्पल, जैसे मैं भी अगर किसी को मोटिवेट करती हूँ, मैं उनको खाली बता सकती हूँ कि आप ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, करना उन्होंने खुद है। मैं ट्रेन की टिकट जो है किसी को पैसे दे के उनको ट्रेन की टिकट उनके हाथ में पकड़ा सकती हूँ, लेकिन वो ट्रेन का सफ़र उन्होंने खुद करना है, उनके बदले मैं नहीं कर सकती। सो आप अपने पे विश्वास रखिए एंड जो करना है करिए। सबकी सिचुएशन एंड ऑफ द डे इज सेम। ऑल ऑफ अस आर मदर्स, ऑल ऑफ अस आर वाइफ्स, ऑल ऑफ अस आर यू नो डॉटर्स, डॉटर इन लॉज। हमने सारी ड्यूटीज निभानी है, उसके साथ हमने काम भी करना है।
0: थैंक यू सो मच हमारी जितनी भी फीमेल्स हैं, उन्हें इस तरह से मोटिवेट करने के लिए, इस तरह से अपनी बात रखने के लिए, ताकि वो भी आगे बढ़ के ऐसे एंटरप्राइजिंग दीवा का पार्ट बन पाए, या फिर अपना ही कुछ ऐसा कर दिखाएं जो शायद हमने कभी सोचा ना हो। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

everyone. Myself, Dr. Rajni Beniwal. I am a dentist and a nutritional psychologist. I'm a women health coach and a teen parenting expert. Many times parents comes to me and many times I am seeing teenagers. They are just not know about the nutrition. They do not know what to follow, what not to follow. They are very curious about their bodies. Unki body mein bahut sare hormonal changes ho rahe hain. They are into adolescence age. Unki reproductive or sexual life active ho rahi hai. Aur wo bahut galat galat fancy trends Google or Instagram or social media se dekh ke follow to karte hain and landed up into big problems. To ek basic si baat hai ki first of all today's parents are much aware, educated and knowledgeful. तो हम लोगों को ना एक बात करने का जो टैबू है वो ब्रेक करना होगा. पेरेंट्स को अपने बच्चों से खुल के बात करनी होगी. आपका बच्चा 12-13 साल का हो गया है, वो अपनी बॉडी के लिए अवेयर हो चुका है, उसकी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, वो सेक्सुअली बड़ा हो रहा है, अपोजिट सेक्स के लिए अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है, मेल्स का फीमेल्स की तरफ, फीमेल्स का मेल्स की तरफ, और सोशल मीडिया की वजह से वो चैनल बहुत ओपन और ईजी एक्सेसिबल है. तो पेरेंट्स को पहले इस चीज़ से बाहर निकलना होगा कि हमारे पेरेंट्स ने हमसे बात नहीं की तो हम अपने बच्चों से नहीं करेंगे. दिस इज नॉट राइट. आज की जनरेशन में अगर आप बात नहीं करोगे तो वो आपके लिए हेट्रेड डेवलप होगा और बच्चा गलत सोर्स से जाके गलत इन्फॉर्मेशन लेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनली बात करिए और द राइट नॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइट एज पर योर बच्चे की बॉडी. अगर आपका बच्चा लीन बॉडी है, आपका बच्चा हेल्दी बॉडी है, आपका बच्चा लिटिल फैटी बॉडी है, तो हर बच्चे की बॉडी अलग है, हर बच्चे का लाइफस्टाइल अलग है, हर बच्चे का प्रोफेशन को चूज करने का आइडिया अलग है. तो व्हाटएवर द लाइफ ही इज चूजिंग उसके अकॉर्डिंग आपको उसको न्यूट्रिशन प्लान करके देना होगा. और उसके मन में जो भी सवाल है एक राइट डॉक्टर की हेल्प लीजिए, एक राइट कंसल्टेंट की हेल्प लीजिए जो आपको बहुत हेल्पफुल होगा. न्यूट्रिशन, एक्टिव लाइफस्टाइल और सबसे जरूरी बात एक राइट एडवाइस ऑफ डीलिंग विद द बॉडी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टुडेज लाइफ. थैंक यू डॉक्टर.

0: 200 से ज्यादा इवेंट, 5000 से ज्यादा ऑनलाइन सेशन। भाई साहब, हैट्स ऑफ वाली चीज है हमारी आज की गेस्ट के लिए। 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ। और निधि, मैं आपसे अब ये जानना चाह रहा हूँ, एंटरप्राइजिंग दीवा ने अपने 200 से ज्यादा फिजिकल इवेंट्स जो हैं वो कवर कर लिए, ऑनलाइन सेशन्स आप ले चुके हो, तो ये एक सक्सेस स्टोरी अगर आप मेरे को बताओगे कौन से वो बड़े इवेंट्स हैं या हम इसे कैसे मैनेज कर रहे हैं।
1: मेरे दोस्त भी मुझे बोलते हैं, मेरे मुंह से कभी ये शब्द नहीं निकलते, मैं थक गई। 24 घंटे सबके पास है, Everybody has 24 hours. You need to make the best out of it. वो 24 घंटे के किसी के पास 22 घंटे या 26 घंटे नहीं हो सकते। आपने देखना है कि वो 24 घंटे आप कैसे डिवाइड कर रहे हैं। मैं पूरे 7 से 8 घंटे सोती भी हूँ, मैं रेगुलर 1.5 घंटा वर्कआउट्स के लिए भी जाती हूँ, बच्चों का होमवर्क, ट्यूशन, काम, सब कुछ एक ही उसमें मैनेज होता है। तो ये आपके ऊपर है कि आप अपना टाइम कैसे मैनेज कर रहे हैं। यू योरसेल्फ नीड टू प्रिपेयर योर ओन कैलेंडर। हमारे स्कूल्स में नहीं होता था, टाइम टेबल मिलता था हर पीरियड का,
0: हर पीरियड
1: कि 40 मिनट्स का ये है, 20 मिनट्स का ब्रेक है। यही हमने अपने लाइफ में करना है, चाहे हम लिख के करें, अपने दिमाग में बिठा के करें।
0: मैम, एंटरप्राइजिंग दीवास के बारे में हम बात करेंगे, और मैं ऐसे ही जब क्रॉस चेक कर रहा था 200 प्लस इवेंट्स, प्लस उसके बाद 50,000 से ज्यादा ऑनलाइन जो हम लोग ने सेशंस करे, कैसे मैनेज हुआ इतना? ये एक 200 भी अच्छा खासा फिगर है इवेंट्स करने के लिए।
1: सो देखिए, आई वुड से कोविड हैज बीन अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर एंटरप्राइजिंग दीवास कम्युनिटी मेंबर्स इन टर्म्स ऑफ, पहले याद है कि कोविड से पहले कल्चर था कि ऑफिसेज में वर्क फ्रॉम होम होगा, स्कूल्स में ऑनलाइन क्लासेस होंगी, हम ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे। ये सारा कॉन्सेप्ट आया कोविड टाइम से। तो ये शुरुआत इस चीज की ऐसे हुई, फिजिकल इवेंट्स एंटरप्राइजिंग दीवास हम लोग करते थे कि बिकॉज इतने सारे वेंडर्स जुड़े हुए हैं, तो हम एग्जीबिशंस कर रहे हैं, राखी की, कभी तीज की, कभी दिवाली की। ऑनलाइन काम स्टार्ट हुआ कोविड से, जब क्या हुआ सारे दरवाजे सबके लिए बंद हो गए। एंटरप्राइजिंग दीवास वॉज वन ऑफ द फर्स्ट कम्युनिटीज जिसने ऑनलाइन सेशन स्टार्ट करे। हुआ कि फेसबुक पे फीचर है लाइव, जो हम लोगों ने कभी एक्सप्लोर ही नहीं करा था इतना
0: उससे पहले।
1: Exactly, क्योंकि लाइफ का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, ऑनलाइन शॉपिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। हमने स्टार्ट करा, जब तक कोई कुरियर कुछ शुरू नहीं हुआ, मैंने सेशंस कराने अपने मेंबर्स के स्टार्ट करे। कोई अगर टैरो रीडिंग में था तो हम आधे घंटे का उनका फ्री टैरो रीडिंग सेशन कराते थे। कोई बच्चों की आर्ट क्लासेस लेता था, हमने ऑनलाइन आर्ट क्लासेस शुरू करी। करते करते करते जब थोड़ा सा कुरियर्स खुले और पार्शियल लॉकडाउन हटा, तब हमने लाइव सेशंस करे। जो लेडीज अपना प्रोडक्ट्स बेचते हैं, हमने उनके लाइव सेशंस कराए। सो बायर्स उनसे कनेक्ट करके शॉपिंग करना ऑनलाइन स्टार्ट करा। ये वहां से जर्नी सारी स्टार्ट हुई।
0: ये मेरे लिए प्राउड फीलिंग और एक थोड़ा सा वो इमोशनल फीलिंग वाला है ना, कि एक फीमेल जो है वो इतनी अपने आप को एनहेंस कर ले रही है, इतने सारी चीजें मैनेज कर ले रही है, और उसके बाद भी वो कितना रिलैक्स होकर आज मेरे साथ यहाँ पर बैठ के वो चीजें बता रही है, ताकि बाकी जो फीमेल्स हैं वो उस चीज के लिए थोड़ी सी मोटिवेट हो पाए या थोड़ा सा उस चीज से कुछ सीख पाए या गाइडेंस ले पाए। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

थोड़ा हटके चलते हैं क्योंकि ये वाली फिल्म ना टिपिकल बॉलीवुड वाली लग नहीं रही है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया लेकर आ रहे हैं द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट, और इसका कंसेप्ट सुनते ही क्यूरियोसिटी हो जाती है। मतलब एक रहस्य है, फोकलोर है, माइथोलॉजी वाली वाइब है, और एक ऐसी दुनिया है जहाँ शायद हर चीज वैसी नहीं है जैसी दिखाई देती है। और ऑनेस्टली बॉलीवुड में हम अक्सर एक्शन, रोमांस और फैमिली ड्रामा देखते हैं, लेकिन ये फिल्म थोड़ा सा अलग रास्ता पकड़ती हुई नजर आ रही है। सिद्धार्थ और तमन्ना की पेयरिंग भी काफी फ्रेश है। फिल्म का पूरा सेटअप मिस्ट्री है और फैंटेसी के आसपास घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। और बात ये भी है कि मैं

एक्टर्स ने फिल्म के क्लाइमेक्स पर एक्स्ट्रा काम किया है ताकि एंड बिल्कुल सॉलिड और इम्पैक्टफुल लगे। तो अगर आपको वो वाली मूवीज पसंद है जहां जंगल सिर्फ जंगल नहीं होता, उसके पीछे कोई कहानी छुपी होती है, तो द वन फोर्थ ऑफ द फॉरेस्ट डेफिनेटली एक इंटरेस्टिंग वॉच हो सकती है। वैसे नाम भी कितना इंटरेस्टिंग है ना। तो मैं आपके साथ गीत हूँ, आप सुन रहे हैं सनम का कैप्सूल रेडियो महारानी पर।

0: देख रहे हैं।
1: तो देखने दो।
0: जल भी रहे हैं।
1: अरे तो जलने दो।
0: खुली सड़क है बाबा।
1: तो क्या हुआ भाई?
0: हाँ तो हो जाए
1: हो जाए।

0: टाइम फॉर अ ट्रिक क्वेश्चन फॉर आवर गेस्ट टुडे. 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ. और निधि, ये थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहा हूँ. आपके हिसाब से एक सक्सेसफुल वुमेन या एंटरप्रेन्योर की मैं बात करूँ तो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए? एडुकेशन, नेटवर्किंग, लीडरशिप या फिर सेल्फ बिलीव कि मैं कर लूंगी.
1: देखिए, हमने बहुत सारे केसेस तुषार ये भी सुने हुए हैं कि एक किसी अनपढ़ ने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया. अगर मैं अपने खुद नाना जी की बात करूं, मेरे नाना जी जिसे बोलते हैं अंगूठा छाप, उन्होंने कोई बेसिक पढ़ाई नहीं थी बट उन्होंने उर्दू की किताबें लिखी हुई है. मेरे नाना जी को प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिला हुआ है, प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन से. तो मैं अपने नाना जी का ही अगर एग्जाम्पल लूँ, एक आदमी जिसने बेसिक एजुकेशन भी ली, वो कहाँ तक पहुँच गए. तो मैं यही बोलती हूँ, एजुकेशन बाद में आती है. उनको विश्वास था अपने ऊपर कि मुझे काम करना है, मुझे ये करना है. अगर आपके अंदर वो जज्बा है तब आप चाहे जितनी भी हाई एजुकेशन ले लें या बेसिक एजुकेशन भी ले लें, आप वहां तक पहुंच जाएंगे. एजुकेशन डेफिनेटली इन टुडेज वर्ल्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बट वो आपके अंदर पहले होना चाहिए. आपको खुद के अंदर बिलीव होना चाहिए कि मेरे को ये आगे करना है. एंड लीडरशिप और नेटवर्किंग, इट ऑल फॉल्स इन टू द प्लेस. ये धीरे धीरे सब कुछ आप सीख लेते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. एग्जाम्पल, जैसे हम तभी बोलते हैं सीनियर सिटीजन को, हम सीनियर क्यों बोल रहे हैं? उन्होंने इतने साल का एक्सपीरियंस ले लिया. हम यंग बच्चों को यंग अडल्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि अभी वो बच्चे हैं, यंग हैं. तो सीनियर सिटीजन को हम इसीलिए अहमियत देते हैं बिकॉज उन्होंने इतने टाइम में अपनी चीजें सीख ली. सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इफ यू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, आपको सब कुछ पता चल जाता है कि आपने क्या करना है, प्रोवाइडेड यू बिलीव इन योर सेल्फ. एंड मैं एक चीज जरूर बोलने चाहती हूँ यहाँ पे, आई विल ऐड ऑन मोटिवेशन. आपको कोई एक बार मोटिवेट कर सकता है, आपकी चाहे वो फैमिली हो, बच्चे हो, हस्बैंड हो, आपके पेरेंट्स हो, आपके सिबलिंग्स हो, एक दो तीन बार. उसके बाद इट इज सेल्फ मोटिवेशन. रोज की लड़ाई आपने अपनी खुद लड़नी है. यू नीड टू चूज योर बैटल्स वाइजली. हर चीज में अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है, सेल्फ मोटिवेटेड रहना है, तभी आगे बढ़ पाएंगे.
0: क्या बेहतरीन और सुंदर तरीके से आपने इसको एक्सप्लेन किया है कि क्या एक नारी के अंदर वो चीज होनी चाहिए जो उसके बिजनेस को या उसके जो ड्रीम्स हैं उन्हें पूरा करने में उनकी हेल्प करें. 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके.

0: देखो एक मोटिवेशनल मैसेज अगर हमारे लिसनर्स को और मिल जाएगा ना, तो उनका दिन थोड़ा सा ऐसा बन सा जाएगा। 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ, निधि सिद्धार्थ खुराना यहाँ पर इस टाइम मेरे साथ हैं। और निधि, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने तो एक सक्सेसफुल ब्रांड यानी कि एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन बना लिया है जिसका नाम है एंटरप्राइजिंग दीवा, जिसमें लाखों लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, बट अगर कोई एक पावरफुल मैसेज आप आज हमारे लिसनर्स को देना चाहें उनकी लाइफ जर्नी को बेटर बनाने के लिए, उनकी लर्निंग को बेटर बनाने के लिए, अपने सपनों को अचीव करने के लिए, या वो हिम्मत ही देने के लिए, तो वो क्या होगा?
1: देखिए, कल तो किसी ने नहीं देखा, अब ये तो वही वाली बात होती है। बहुत बार हम अपने फ्रेंड्स का भी सुनते हैं कि मैं मोटा हो गया हूँ, जिम ज्वाइन करना है, कल से करूंगा। कब तक जिम ज्वाइन कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे। तो यही चीज सेम आपकी लाइफ में भी वैलिड होती है। आपने जो शुरू करना है आपने अभी शुरू करना है। देर इज नो टुमोरो, नोबडी हैज सीन कि कल क्या होना है। जो करना है वो आज ही आपने करना है। यू रियली नीड टू थिंक व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू डू। जैसे मेरे साथ अगर आप मुझे बोले मैं कोई पेंटर हूँ, नहीं, मैं कोई मैं किसी और प्रोफेशन में हूँ, एक्सपर्ट हूँ, नहीं, बट मेरे लिए मेरी क्वालिटी थी लीडरशिप, मैनेजमेंट, जो मैंने इतने साल अपने कॉर्पोरेट्स में सीखा, अपनी पढ़ाई से सीखा, मैंने उसी को चैनलाइज करके एंटरप्राइजिंग दीवास कम्युनिटी क्रिएट करी, जिससे मैं मैनेज करके, नेटवर्किंग करके लोगों को साथ में लाई। अदरवाइज मेरा अपना कोई प्रोडक्ट नहीं है, आई एम नॉट सेलिंग, बट आई एम सेलिंग, आई हैव ब्रॉट फॉरवर्ड माई ओन स्किल्स। तो आपको अपनी जो है वो रिकोगनाइज करना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप क्या कर सकते हैं, उस अकॉर्डिंगली आपने डिसाइड करना है। और जहाँ तक बात रही गाइडेंस कैसे शुरू करें, एंटरप्राइजिंग दीवास में हम लोग बहुत सारे सेशंस करते रहते हैं, वेरिन वी टेल देम कि किस तरीके से आप कंपनी फॉर्म कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं, छोटे तरीके से आप ऑनलाइन अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। वही बात है, टिकट हम दे देंगे, जर्नी तो आपने अपनी खुद ही करनी है। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी, आई ऑलवेज टेल एवरीबडी, चूज योर बैटल्स वाइजली। जिंदगी में डे टू डे बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, हर चीज़ में टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो आपके लिए क्या ज़रूरी है वो आइडेंटिफाई करिए, ठीक है। सारी 100 की 100 लड़ाइयाँ आप दिन की नहीं लड़ सकते, वो जो उसमें से टॉप 10 आपकी प्रायोरिटी उस दिन के लिए है, आप वो लेके चलिए, एंड यू विल मेक द फुल यूज ऑफ दोस 24 आवर्स दैट गॉड हैज गिवन यू।
0: थैंक यू सो मच निधि हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए, ये सारी बातें हमारे लिसनर्स के साथ शेयर करने के लिए, उन्हें चेयर करने के लिए, उन्हें मोटिवेट करने के लिए। और वही कहते हैं ना कि कई बार कोई ऐसी बात हो जाती है जो शायद आपके माइंड में क्लिक हो जाए और आपकी पूरी लाइफ पलट जाए, तो शायद आपकी टॉक से किसी की लाइफ आज चेंज हो सकती है। थैंक यू सो मच हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। और बाकी हमारे जितने भी लिसनर्स हैं, आपको ये टॉक कैसी लगी, ये इट्स आरजे तुषार के नाम से मैं आपको मिल जाऊंगा, या फिर रेडियो महारानी के इंस्टाग्राम पे आके भी आप बता सकते हैं। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: फिल्मी फ्लेवर वे बॉलीवुड नेवर स्टॉप्स
5: वे बॉलीवुड नेवर स्टॉप्स
6: पिक्चर परफेक्ट म्यूजिक लोडेड

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: हाँ जी फरीदाबाद वालों, क्या हाल चाल है। अच्छा, कभी कभी ना वीकेंड के बाद मंडे को बस एक चीज चाहिए होती है ना, कि थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो जाए, ताकि मंडे वाली वाइब मंडे जैसी ना लगे। तो चलिए आपकी ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर देती हूँ। मैं हूँ आरजे पलक और वेलकम है आपका फिल्मी फ्लेवर में, जहाँ अगले दो घंटे हम करेंगे मूवीज की बातें, ओटीटी की बातें, नए ट्रेलर्स, ट्रेंडिंग सॉन्ग्स और एंटरटेनमेंट की दुनिया के वो सारे अपडेट्स जिनसे आपका फिल्मी कीड़ा थोड़ा और जाग सकता है। हाँ हाँ, मैं समझ सकती हूँ अब आप कहोगे कि हम पे काम बहुत है, लेकिन काम के साथ साथ बीच में थोड़ी फिल्मी गॉसिप तो बनती है ना यार। तो वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा दीजिए और अपना मूड सेट कर लीजिए, क्योंकि 2 से 4 बजे तक आपको पता ही है बोरिंग होने की परमिशन बिल्कुल नहीं है। लेकिन बात को आगे बढ़ाने से पहले एक गाना हो जाए। स्टे ट्यून्ड टू 89.6 रेडियो महारानी।

0: watch more, log on to www.erosnow.com.
1: फिल्मी फ्लेवर।
2: अच्छा, वीकेंड पे अगर आपने मिर्जापुर द मूवी देख ली है तो एक बात तो क्लियर है कि मिर्जापुर की गद्दी अभी भी खाली नहीं है। जी हाँ, 4 सितंबर को रिलीज हुई ये मूवी ने बड़े पर्दे पर वही पुराना भौकाल एक्शन ह्यूमर कियोस वापस ला दिया है। हाँ हाँ, रेंट टाइम है पूरे 3 घंटे 28 मिनट का, लेकिन पहला हाफ इतना इंगेजिंग है ना कि टाइम इतनी जल्दी बीतेगा आपको लगेगा कि यार अभी तो मूवी शुरू हुई थी। पंकज त्रिपाठी एस कालीन भैया, कमाल भाई कमाल, कमाल का रोल प्ले किया है इन्होंने। ऊपर से नई किरदार कहानी में और ड्रामा ऐड करते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं मूवी की बात करूं तो एक्चुअल में भौकाल मूवी है, और अगर आप मिर्जापुर के फैन है ना तो ये बिल्कुल पैसा वसूल वॉच है, जरूर देखिएगा। चलिए, वक्त हो गया है गाने का, गाने के बाद फिर मिलेंगे। शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी।

0: watch more, log on to www.erosnow.com.
1: Doctor calling.
2: Hello everyone, myself Dr. Rajni Beniwal. I am a dentist and a nutritional psychologist. I'm a women health coach and a teen parenting expert. Many times parents comes to me and many times I am seeing teenagers. They are just not know about the nutrition. They do not know what to follow, what not to follow. They are very curious about their bodies. Unki body mein bahut sare hormonal changes ho rahe hain. They are into adolescence age. Unki reproductive or sexual life active ho rahi hai. Aur wo bahut galat galat fancy trends Google or Instagram or social media se dekh ke follow to karte hain and landed up into big problems. To ek basic si baat hai ki first of all today's parents are much aware, educated and knowledgeful. तो हम लोगों को ना एक बात करने का जो टैबू है वो ब्रेक करना होगा. पेरेंट्स को अपने बच्चों से खुल के बात करनी होगी. आपका बच्चा 12-13 साल का हो गया है, वो अपनी बॉडी के लिए अवेयर हो चुका है, उसकी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, वो सेक्सुअली बड़ा हो रहा है, अपोजिट सेक्स के लिए अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है, मेल्स का फीमेल्स की तरफ, फीमेल्स का मेल्स की तरफ, और सोशल मीडिया की वजह से वो चैनल बहुत ओपन और ईजी एक्सेसिबल है. तो पेरेंट्स को पहले इस चीज से बाहर निकलना होगा कि हमारे पेरेंट्स ने हमसे बात नहीं की तो हम अपने बच्चों से नहीं करेंगे. दिस इज नॉट राइट. आज की जनरेशन में अगर आप बात नहीं करोगे तो वो आपके लिए हेट्रेड डेवलप होगा और बच्चा गलत सोर्स से जाके गलत इन्फॉर्मेशन लेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनली बात करिए और द राइट नॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइट एज पर योर बच्चे की बॉडी. अगर आपका बच्चा लीन बॉडी है, आपका बच्चा हेल्दी बॉडी है, आपका बच्चा लिटिल फैटी बॉडी है, तो हर बच्चे की बॉडी अलग है, हर बच्चे का लाइफस्टाइल अलग है, हर बच्चे का प्रोफेशन को चूज करने का आइडिया अलग है. तो व्हाटएवर द लाइफ ही इज चूजिंग, उसके अकॉर्डिंग आपको उसको न्यूट्रिशन प्लान करके देना होगा. और उसके मन में जो भी सवाल है, एक राइट डॉक्टर की हेल्प लीजिए, एक राइट कंसल्टेंट की हेल्प लीजिए, जो आपको बहुत हेल्पफुल होगा. न्यूट्रिशन, एक्टिव लाइफस्टाइल और सबसे जरूरी बात, एक राइट एडवाइस ऑफ डीलिंग विद द बॉडी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टुडेज लाइफ. थैंक यू.
1: डॉक्टर कॉलिंग.

0: हटके।
1: Dammi un grr.
2: Un che?
1: Un grr.
2: Un che?
1: Dammi un tu.

0: बॉस के घर का दरवाजा खुल गया है, मतलब अगले 3 महीनों तक एंटरटेनमेंट की गारंटी समझ लीजिए। और जिसको कलेश पसंद हो और वो बिग बॉस ना देखे, ऐसा हो सकता है क्या? 6 सितंबर को बिग बॉस 20 का ग्रैंड प्रीमियर हो चुका है और एक बार फिर सलमान वापस आ गए हैं होस्ट की कुर्सी पर। और अगर इस बार घर की थीम की बात करें तो नाम दिया गया है वरदान, और हाउस भी काफी अलग रखा गया है, थोड़ा अनयूजुअल सा अब्स्ट्रैक्ट थीम रखी गई है थोड़ी। और कंटेस्टेंट्स की अगर बात करें तो एमसी मैरी कॉम, कनिका मान जैसे कई नोन फेसेस घर में एंट्री ले चुके हैं। अब देखना यह है कि कौन बनेगा ऑडियंस का फेवरेट और कौन बनाएगा सबसे ज्यादा कनेक्शंस और कौन पहले ही हफ्ते में घर में बवाल मचा देगा। तो बिग बॉस लवर्स, आपकी नजर किस कंटेस्टेंट पर है, मेरे को कॉल या व्हाट्सएप कर जरूर बताइएगा। नंबर है 9654896896। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, नंबर है 9654896896। और इसी के साथ वक्त हो चुका है एक गाने का, गाने के बाद फिर यही लौटूंगी। शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी।
1: बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर अवेलेबल ऑनलाइन ओनली ऑन Eros Now।

0: इंसान का कर्तव्य होता है कोशिश कर।
1: लास्ट ट्राई और कर।
2: कोशिश करूंगी।
3: एवरीथिंग इज पॉसिबल।
2: ओके
4: सिनेमा का कैप्सूल।
2: तो इस हफ्ते के सिनेमा का कैप्सूल में चलिए बात करते हैं उस फिल्म की जिसका नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहला शब्द आता है भौकाल। यस, हम बात कर रहे हैं मिर्जापुर द मूवी की। अब भाई सालों तक ओटीटी पर लोगों ने मिर्जापुर को बिंज वॉच किया है, डायलॉग्स याद किए हैं, कैरेक्टर्स पर मीम्स बनाए हैं और वही पूरा यूनिवर्स पहुंच गया है बड़े पर्दे पर। और ऑनेस्टली लोगों का एक्साइटमेंट देखकर लग रहा है कि मिर्जापुर सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है, लोगों का इमोशनल अटैचमेंट है। कालीन भैया है, गुड्डू है और सबसे बड़ी बात मुन्ना भैया भी है और ये नाम ही काफी है फैंस को थिएटर तक खींचने के लिए। लेकिन इस बार कुछ नए चेहरे भी इस गेम में एंट्री मार रहे हैं। जितेंद्र कुमार यानी हमारे अपने सचिव जी और बबलू पंडित के किरदार में नजर आ रहे हैं। मतलब पंचायत से सीधा मिर्जापुर की गलियों तक का सफर भाई साहब, करियर ग्राफ नहीं है ये तो कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन है। और रवि किशन की एंट्री ने भी फिल्म में एक अलग सा तड़का लगा दिया है। तो पूरे भौकाल के साथ इस बार नया मसाला भी भरपूर है। रिव्यूज की बात करें तो पिक्चर थोड़ी इंटरेस्टिंग है। कुछ लोग कह रहे हैं फाइनली मिर्जापुर इज बैक, पंकज त्रिपाठी यानी हमारे कालीन भैया के प्रेजेंस को लोगों ने काफी पसंद किया है। दिव्यांदु की वापसी पर फैंस ऑलरेडी क्रेजी है और थिएटर वाला एक्सपीरियंस अलग ही लेवल का बताया जा रहा है। हाँ, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि फिल्म थोड़ी लंबी है, कहीं कहीं कहानी को जरूरत से ज्यादा एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन ओवरऑल वर्डिक्ट ये है कि अगर आप मिर्जापुर फैन है तो ये सिर्फ मूवी नहीं, आपके लिए एक पूरा रीयूनियन है। पुराने लोग, नए खिलाड़ी, गद्दी की लड़ाई और वही फैमिलियर सा डायलॉग माहौल। सो बेसिकली भौकाल ओटीटी से उठकर थिएटर तक पहुंच गया है। मैं हूँ गीत, आप सुन रहे हैं सिनेमा का कैप्सूल।

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: फरीदाबाद वासियों, रनिंग शूज रेडी हैं क्या? क्योंकि 27 सितंबर को सिर्फ एक रेस नहीं, पूरा फिटनेस फेस्टिवल होने वाला है। जी हाँ, फरीदाबाद हाफ मैराथन 2026 होने जा रही है सूरज कुंड मेला ग्राउंड्स में, और अब तक 1,00,000 से ज्यादा लोग रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं इसमें। और आप भी 21 किलोमीटर हाफ मैराथन, 10 किलोमीटर टाइम रन या 5 किलोमीटर वाली फन रन का हिस्सा बन सकते हैं। और इसमें प्राइज मनी भी काफी एक्साइटिंग रखे गए हैं। कुल करीब 10,00,000 रुपए के प्राइज मनी रखी जा रही है यार। और 21 किलोमीटर के ओवरऑल मेल और फीमेल विनर को मिलेंगे 1,00,000 रुपए, जबकि 10 किलोमीटर वाली रनिंग में जो भी जीतेगा उसको मिलेंगे पूरे 50,000 रुपए। और इसमें अलग अलग एज कैटेगरीज और स्पेशली एबल्ड रनर्स के लिए भी खास रिवॉर्ड रखे गए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये सिर्फ फिटनेस की बात नहीं है, बल्कि नशा मुक्त हरियाणा का मैसेज भी लेकर आ रही है। और इस मैराथन का फ्लैग ऑफ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी द्वारा किया जाएगा। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो अगर आपको रनिंग पसंद है या बस खुद को चैलेंज करने का मन है ना, तो ये मौका अपने हाथ से मत जाने दीजिएगा। और अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवानी है तो आप फरीदाबाद हाफ मैराथन .in पर जाके साइट विजिट कर सकते हैं। तो रन फॉर फिटनेस, रन फॉर फरीदाबाद और रन फॉर अ नशा मुक्त हरियाणा। और इसी के साथ वक्त हो चुका है एक गाने का। गाने के बाद फिर यहीं लौटूंगी। शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी।

क्या ही कहने इस इंटरनेट के। कभी कभी ना इंटरनेट पर इस तरह की वीडियोस वायरल हो जाती हैं, जिन्हें देखकर बस एक ही डायलॉग याद आता है, ये कोई तरीका है भीख मांगने का? या फिर इंजीनियर बनना जरूरी नहीं होता, कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। अब मैंने इतनी सारी बात की है, आखिर जानते हैं कि हुआ क्या? तो भाई सोशल मीडिया पर ना एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जहाँ पर एक पैसेंजर ट्रेन के चार्जिंग सॉकेट में घर से लाया हुआ फर्राटा फैन चलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ फैन चला ही नहीं, क्योंकि फैन को चलने के लिए ना 220 वोल्ट चाहिए होता है और ट्रेन का सॉकेट होता है 110 वोल्ट का। तो फिर क्या था, जब ये वीडियो वायरल हुआ ना तो कमेंट सेक्शन में मीम्स और जोक की बारिश शुरू हो गई। वैसे देखो, जुगाड़ हमारी पहचान जरूर है, लेकिन हर जगह जुगाड़ काम नहीं आता, ये चीज भी याद रखनी चाहिए। थोड़ी सी टेक्निकल नॉलेज और सेफ्टी भी उतनी ही ज्यादा जरूरी होती है। और हम हमेशा क्यों भूल जाते हैं, जब हम ट्रेवल कर रहे होते हैं अपने साथ साथ हमें बाकी पैसेंजर की भी जान के बारे में सोचना चाहिए भाई, उनकी सेफ्टी के बारे में भी सोचना चाहिए, हमेशा अपने बारे में ही सोचते हैं, इतने सेल्फिश क्यों है? तो भाई आज का इंसिडेंट हमें ये बताता है, सिंपल सा फंडा है, हर प्लग हर सॉकेट के लिए नहीं होता, और सोशल मीडिया पर जो भी वायरल दिखे उसे सिर्फ एंटरटेनमेंट की तरह ही लीजिए, घर पर एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा। और हाँ, इसी के साथ एंजॉय कीजिए ट्रैक जो है खास आपके लिए।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके
4: फिल्मी फ्लेवर वे बॉलीवुड नेवर स्टॉप्स
5: वे बॉलीवुड नेवर स्टॉप्स
6: पिक्चर परफेक्ट म्यूजिक लोडेड

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: कुछ गाने ना पुराने नहीं होते, बस दोबारा ट्रेंड में आने का इंतजार करते हैं। और ऐसा ही एक गाना इन दिनों इंस्टाग्राम पर फिर से खूब धमाल मचा रहा है, और गाने का नाम है सोनिया। करीब 9 साल पुराना ये ट्रैक आज फिर से रील्स में सुनाई दे रहा है। मिस पूजा और मिलिंड गाबा का ये गाना ना उस रिलेशनशिप की बात करता है जहाँ प्यार तो है लेकिन अटेंशन और एफर्ट्स की थोड़ी कमी खटकने लगती है। मतलब वही वाली फीलिंग है कि प्यार तो आप करते हो लेकिन दिखा नहीं रहे हो। और लड़कियों को तो वैसे भी चाहिए होता है ना कि अगर आप प्यार कर रहे हो थोड़ी अटेंशन भी दीजिए, पैम्पर भी कीजिए, हमसे पूछिए भी कि हम कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं, है ना, है ना। और शायद यही वजह है कि इतने साल बाद भी ये सॉन्ग रिलेटेबल लग रहा है। पुराना गाना है और वही पुराने इमोशंस के साथ रिक्रिएट करी जा रही है इंस्टाग्राम पे रील्स। तो चलिए, मैंने इस गाने की बात कर ही दी है तो सुनाती हूँ आपको यही गाना। स्टे ट्यून्ड टू 89.6 रेडियो महारानी।

0: सुनो।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आग मेरी लड़ी है।

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: अगर आपने कभी स्ट्रीट फाइटर खेला है ना, तो ढलसिम को तो भूल ही नहीं सकते, है ना। और अब वही कैरेक्टर बड़े पर्दे पर आ रहा है, वो भी विद्युत जामवाल के अंदाज में। स्ट्रीट फाइटर का ट्रेलर आउट हो चुका है और इसमें विद्युत जामवाल ढलसिम के लुक में नजर आ रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि विद्युत अपने कलारी पेयट्टू स्किल्स को इस आइकॉनिक फाइटर के कैरेक्टर में ब्रिंग किया है। मतलब एक्शन तो होना ही था, लेकिन विद्युत हैं तो उम्मीदें भी थोड़ी सी ज्यादा हैं। और ये सिर्फ बॉलीवुड तक लिमिटेड नहीं है, स्ट्रीट फाइटर विद्युत का ग्लोबल डेब्यूट होने वाला है। और ये फिल्म 16 अक्टूबर यानी कि 16th ऑफ अक्टूबर को इंग्लिश, तमिल, हिंदी और तेलुगु में सिनेमाज में रिलीज होगी। अब देखना यह है कि विद्युत का ढलसिम वाला अवतार ऑडियंस को कितना इम्प्रेस करता है। चलिए इसी एक्शन पैक्ड वाइब को थोड़ा पॉज करते हैं और सुनते हैं एक गाना। गाने के बाद फिर यहीं लौटूंगी। स्टे ट्यून्ड टू 89.6 रेडियो महारानी।

0: नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव कुमार सेतिया, यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, यथार्थ हॉस्पिटल फरीदाबाद। पेन किलर और बिना डॉक्टर की सलाह के मेडिसिन लेने से किडनी पे क्या फर्क पड़ता है, उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि पेन किलर और कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो किडनी पे नेगेटिव इफेक्ट डालती हैं, किडनी को खराब करती हैं, जिनको हम नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स बोलते हैं। तो बिना डॉक्टर की सलाह के ये दवाइयां ना लें, क्योंकि ये किडनी को डैमेज करती है और किडनी फेलियर प्रेसिपिटेट कर सकती है। थैंक यू
1: डॉक्टर। Calling.

पंजाबी सिनेमा के लवर जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगर आपको कॉमेडी, रोमांस और फैमिली के साथ बैठ के मूवी देखने वाली वाइब पसंद है ना, तो ये वाली फिल्म आपके लिस्ट में आ सकती है। गिप्पी गिरवाल और शहनाज गिल एक बार फिर साथ नजर आने वाले हैं सिंह वर्सेस कौर पार्ट 2 में। अब नाम से ही समझ आ रहा है ना कि प्यार तो हो गई होगा, लेकिन इतनी आसानी से कहा, इसमें बहुत सारे ट्विस्ट हैं। फिल्म में लव, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, फैमिली ड्रामा और काफी सारी कॉमेडी देखने को मिलेगी। मतलब वो टिपिकल पंजाबी एंटरटेनर वाला फ्लेवर, थोड़ा रोमांस, थोड़ी नोकझोंक, थोड़ा फैमिली का प्रेशर और बीच बीच में फुल ऑन मस्ती। और इस फिल्म को नवनीत सिंह डायरेक्ट कर रहे हैं और गिप्पी गिरवाल और शहनाज गिल की पेयरिंग को लेकर फैंस ऑलरेडी एक्साइटेड हैं। और ये मूवी आपको थिएटर्स में देखने को मिलेगी 11th of September को। तो अगर आपको ऐसी मूवी चाहिए जिसे फैमिली के साथ बैठकर देख सको, थोड़ा हंसी मजाक हो, थोड़ा रोमांस देखने को मिले, और थिएटर से जब आप बाहर निकलो ना तो एकदम हल्के मूड के साथ निकलो, तो आप ये मूवी जरूर देखने जा सकते हैं। चलिए अब वक्त हो गया है गाने का, और गाने के बाद पूरे शो की फिल्मी जर्नी को एक बार रिवाइंड करेंगे। स्टे ट्यून्ड टू 89.6 रेडियो महारानी।

और इस हफ्ते के सिनेमा कैप्सूल में चलिए बात करते हैं उस घर की तरफ जहां लोगों को एंट्री लेने से पहले शायद अंदाजा भी नहीं होता कि बाहर निकलते निकलते उनकी जिंदगी दोस्त और दुश्मन सब बदल चुके होंगे। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट बिग बॉस 20। और भाई, इस बार कंटेस्टेंट की पूरी टोली आ चुकी है। सीजन की सबसे शॉकिंग और शायद सबसे एक्साइटिंग एंट्री है मैरी कॉम। अब सोचिए, बॉक्सिंग रिंग में सामने वाले को नॉकआउट करने वाली मैरी कॉम अब बिग बॉस के घर में आर्ग्यूमेंट्स और किचन ड्यूटीज हैंडल करेंगी। और ऑनेस्टली, ये सब देखने में बहुत मजा आने वाला है। मुझे तो भाई बहुत मजा आएगा। उनके अलावा माही विज है, कनिका मान है, पंचायत वाले आसिफ खान है और भोजपुरी सिनेमा की आम्रपाली दुबे है। सोशल मीडिया सेंसेशन आशिफा खान और कई अलग बैकग्राउंड के लोग भी इस बार एक ही छत के नीचे बंद होने वाले हैं। मतलब इस बार पूरा घर एकदम मिक्स्ड प्लेटर है। एक्टर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, सिंगर्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हैं और यही बिग बॉस की असली खूबसूरती है। आपको कभी नहीं पता कि सबसे शान दिखने वाला इंसान कब सबसे बड़ा मास्टरमाइंड निकल जाए। तो पॉपकॉर्न रेडी रखिए क्योंकि अभी तो घर में एंट्री हुई है जनाब, असली पिक्चर तो अब शुरू होगी। मैं आपके साथ गीत हूँ और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी पर सिनेमा का कैप्सूल।

अब टाइम हो गया है आज के फिल्मी फ्लेवर को शटर डाउन करने का। और देखो 2 घंटे में कितना कुछ कवर कर लिया, मतलब एंटरटेनमेंट की आज की फुल डोज मैंने आपको दे दी। मैं हूँ अजय पलक और अब वक्त हो गया है मेरे जाने का, क्योंकि आज जाऊंगी तभी तो कल फिर आऊंगी। कल फिर मिलूंगी नए फिल्मी फ्लेवर्स के साथ, तब तक ये गाना एंजॉय कीजिए और बने रहिए 89.6 रेडियो महारानी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।

क्या ही कहने इस इंटरनेट के। कभी कभी ना इंटरनेट पर इस तरह की वीडियोस वायरल हो जाती हैं, जिन्हें देखकर बस एक ही डायलॉग याद आता है, ये कोई तरीका है भीख मांगने का? या फिर इंजीनियर बनना जरूरी नहीं होता, कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। अब मैंने इतनी सारी बात की है, आखिर जानते हैं कि हुआ क्या? तो भाई सोशल मीडिया पर ना एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जहाँ पर एक पैसेंजर ट्रेन के चार्जिंग सॉकेट में घर से लाया हुआ फर्राटा फैन चलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ फैन चला ही नहीं, क्योंकि फैन को चलने के लिए ना 220 वोल्ट चाहिए होता है और ट्रेन का सॉकेट होता है 110 वोल्ट का। तो फिर क्या था, जब ये वीडियो वायरल हुआ ना तो कमेंट सेक्शन में मीम्स और जोक की बारिश शुरू हो गई। वैसे देखो जुगाड़ हमारी पहचान जरूर है, लेकिन हर जगह जुगाड़ काम नहीं आता, ये चीज भी याद रखनी चाहिए। थोड़ी सी टेक्निकल नॉलेज और सेफ्टी भी उतनी ही ज्यादा जरूरी होती है। और हम हमेशा क्यों भूल जाते हैं जब हम ट्रेवल कर रहे होते हैं, अपने साथ साथ हमें बाकी पैसेंजर की भी जान के बारे में सोचना चाहिए भाई, उनकी सेफ्टी के बारे में भी सोचना चाहिए, हमेशा अपने बारे में ही सोचते हैं, इतने सेल्फिश क्यों हैं? तो भाई आज का इंसिडेंट हमें ये बताता है, सिंपल सा फंडा है, हर प्लग हर सॉकेट के लिए नहीं होता, और सोशल मीडिया पर जो भी वायरल दिखे उसे सिर्फ एंटरटेनमेंट की तरह ही लीजिए, घर पर एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा। और हाँ, इसी के साथ एंजॉय कीजिए ट्रैक जो है खास आपके लिए।

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: जिनके कंधों पर बचपन बीता, अब छह बूढ़े कंधों को छुपी न मत छोड़ो।
2: उम्र के साथ चले, इंडियन के चादर।
1: उनका साथ हमारा सुकून है।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हैं। लोग ये कुछ भी कह देंगे कि खुद को कमजोर मत समझ लेना, क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो बी कॉन्फिडेंट।

जिंदगी हर दिन कुछ नया सिखाती है और हम हर दिन थोड़ी बेहतर बनते जाते हैं। 2025 को थैंक्स और 2026 को वेलकम। चलिए नए गोल, नई एनर्जी और फ्रेश माइंडसेट के साथ 2026 में कदम रखे। रेडियो महारानी 89.6 FM, योर ब्राइट पॉजिटिव एंड ब्यूटीफुल न्यू ईयर 2026।

0: सोचने वाली बात और कहानियों में है जिंदगी का हिस्सा। कभी जो भी सुने यही बोले। ये हुई ना बात। हम है आपका अपना रेडियो केंद्र महारानी 89.6 FM। कुछ
1: आज कल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर।
2: सुनने चला करता था उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस अच्छा भाषा देकर मुझे भी निकाल लिया। उसे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई स्मार्ट होने के साथ साथ अभय भी बन और आप कहीं भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
3: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरी मैसेज के साथ आई लिंक पर क्लिक न करें। बैंक कभी भी OTP नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर चाहे कॉल पर भरोसा न करें। मजबूत पासवर्ड बनाए और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचे। हर वीडियो और ऑडियो सच्ची ही होगी, इसलिए पहले टेक्स्ट को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें। और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। 10 से 20 से बी अवेयर।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कदर करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी। सदा सुरक्षित रहो। अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो मधुरानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: अर्जुन सूरजा
1: होके शुरू तो अर्ज किया है।
0: अर्ज
1: कर रहा हूँ, तुम सुन लिया करो। अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल करिए, सारी भीड़ अंदर बुला
0: लेते
1: हैं। रोने वाले भैया सीट पर चार सवारी, अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बैठा लेते।
0: अरे आया उसको तो रोड़ी का चला भी रहे थे।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लक्ष्य बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते
0: हैं। दिमाग पर दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चलिए, तू बोल रहा है।
1: सुनो
0: बाय।

0: शुरू हो जाओ।
1: हाँ तो अर्ज क्या है? अभी करते हैं
0: सर।
1: स्पैम कॉल करके आजकल जमा
0: बाबा
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें जान देते हैं।
0: तुम अभी इसे लाए?
1: चलो आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स OTP सब दे दूंगा।
2: अच्छा बस मेरी शायद सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो शांत होते हैं।
3: ये है रेडियो महानी का क्विक रिमाइंडर।
4: ज्यादा चिल्लाने से समझाई नहीं जाता फिर दूर हो जाते
5: हैं।
4: आज से ही आवाज़ सुनी और बात सुनी फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: उनकी स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: दृश्य होते हैं जो डायरी में लिखे जाते हैं और कुछ फोन के ड्राफ्ट मैसेज में सेव हो जाते हैं जो ना कभी भेजे जाते हैं और ना ही कभी फोन से डिलीट हो पाते हैं।
1: कभी फ्रेंडशिप अंतर रह जाती है तो कभी मोहब्बत कंप्लीट, क्योंकि हर रिश्ते की है अपनी एक कहानी जिसे समझने के लिए चाहिए थोड़ी सी प्यार वाली नादानी। जगीत के साथ रिश्तों का पॉडकास्ट, जहाँ हर रिश्ते का होगा रियल इवेल्यूएशन, मंडे टू फ्राइडे 10 to 11 PM ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके।

0: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।
1: 22 हो या हो 20, हर मित्रों सुनने का आप रेडियो महारानी के साथ आप सभी सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: बच्चों से बच्चों का नाम याद रखना, अगर वो खो गया कहीं तो तुम भी इश्क सलामत रखना।
1: रात है यादों के अफसाने सुनाने की, दिल के छुपे जज्बात जगाने की, उन जज्बातों को महसूस करने के लिए रहिए हमारे साथ रात बाकी बात बाकी में सपना के साथ।
2: मेरी जान की चाह तुम नहीं,
3: धीरे चलोगे तो बार बार मिलोगे, धीरे चलोगे तो बार बार मिलोगे।
4: अरे आगे भी बोलना।
3: हाई स्पीड में चलोगे तो फोटो में धार मिलोगे।
0: इस 9.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जन हित में कार्यक्रम।

0: जॉनी जॉनी
1: पापा
0: बाइक चलाना है?
1: किस पापा?
0: हेलमेट पहनना है।
1: ओके पापा,
0: भाई सीट में गाड़ी चलाओगे?
1: नो पापा,
0: यू आर वेरी गुड बच्चा।
1: भाई सीट में गाड़ी चलाने से बड़ा है दूरी,
0: आपकी सेफ्टी के लिए हेलमेट है बेहद जरूरी।
2: 89.6 एफएम है जो महारानी द्वारा जल्द निकले जा रहे हैं।
3: न्यू ईयर है, पुरानी मुस्कान स्वाद रखिए, नए सपनों के लिए जगह छोड़िए। वेलकम न्यू ईयर 2020।

0: छोड़ने का मन नहीं, लेकिन लाइन भी तो देनी है।
1: उठने का दिल नहीं करता, पर घुमट की आँखें भी तो आँखें आँखें घूटती हैं।
0: पर टेंशन नहीं, क्योंकि यहाँ द मॉर्निंग एक्सप्रेस है जो आपकी सुबह का लोडिंग बार 100% पहुँचाएगा।
1: तो बिस्तर की सुविधाओं का चेक करो, वीडियो का वॉल्यूम बढ़ाओ और एनर्जी का गियर बदल कर दिन की शुरुआत करो, क्योंकि एक परफेक्ट सुबह का स्टेशन एक ही है, रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: सुरक्षित रहो। अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, जैसे कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: जब शाम को चाहिए एंटरटेनमेंट।

0: पंजाबी पॉप कल्चर।
1: आज ऑफिस आते वक्त तो आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि कितने महीनों बाद ऑफिस जा रहे हैं, क्योंकि देखो मन तो बिल्कुल भी नहीं था सुबह सुबह उठने का, और फिर ऐसा लग रहा था कि कितने दिनों से छुट्टियां ही पड़ी हुई थी हम लोगों की, है कि नहीं आप लोगों के साथ।
2: रेडियो का गौरव, आरजे गौरव,
1: आरजे गौरव इन द हाउस, स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। कैसे हैं आप सब? इसलिए पूछता हूं मैं ये बार बार क्योंकि देखो पूछना पड़ता है, पूछना जरूरी भी है। लंबी छुट्टी थी, फ्राइडे सैटरडे संडे, बहुत सारे लोगों की छुट्टी थी, खैर हमारी तो नहीं होती, हम सैटरडे भी आते हैं, कभी कभी संडे को भी आना पड़ जाता है। और अभी मंडे की शाम को आप सभी का स्वागत करता हूँ, 5:06 मेरी स्टूडियो क्लॉक में। और इसी के साथ साथ अब अगले 4 घंटों के लिए मैं आप सभी के साथ हूँ। देखो फरीदाबाद में बारिश हुई सैटरडे संडे, और फिर इसके अलावा एक और चीज़ हुई वो ये कि सफाई शुरू हो गई है। सफाई कैसे, मतलब जितनी भी गंदगी इकट्ठी हो रखी थी ना वहाँ पर सफाई शुरू हो चुकी है, सफाई अभियान शुरू हो चुका है। और ऐसे ही एक सफाई अभियान का वीडियो वायरल हो रहा है इंस्टाग्राम पर, जिसको कहते हैं बिट्टू तबाही। और ये लड़का अकेले ही तबाही है सच में, क्योंकि इसने बहुत सारी जगहों की सफाई कर डाली है, और इसको विदेशी एक कंपनी है डच की, उसके CEO ने जॉब ऑफर कर डाली है। क्या करते हैं वो, सब कुछ करेंगे बात। और इसी के साथ साथ फरीदाबाद के बारे में अगर आप लोगों को मुझसे कोई भी बातें शेयर करनी है, या फिर आप लोगों की अगर आसपास घर के आसपास कोई प्रॉब्लम है जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि फरीदाबाद में इस चीज़ के बारे में आवाज़ उठे, तो आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। कैसे, एक सिंपल सा नंबर है 9654896896, इस पे कॉल या मैसेज कीजिए आप लोग, बहुत इजीली आपको ये नंबर मिल जाएगा कहीं पर भी। और मतलब मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 9654896896, बहुत इजीली आप मैसेज कर सकते हो। मैं कहना चाहता था कि बहुत इजीली याद हो जाएगा आपको, बट मुंह से ये निकल गया। खैर छोड़िए, अभी आप सभी के लिए ना गाना चलाता हूँ फरीदाबाद के लड़के की आवाज़ में, MC Square की आवाज़ में। ये गाना सुनिए, इस गाने को रेडियो महारानी 89.6 पर, गाने का नाम है लाडो।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है?
2: अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो।
0: इंस्टार्ट।
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं। चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स OTP सब दे दूंगा।
0: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: हेलो, सुन के जाओ।
0: लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर नॉट

0: शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

क्या आपको पता है आपके आधार कार्ड पर कितने नंबर्स रजिस्टर्ड हैं? नहीं, मुझे तो पता नहीं था, मगर अब ज़रूर पता चल गया है, और वो सिर्फ और सिर्फ दो नंबर है, वो भी मेरे ही दो नंबर हैं। और मुझे कैसे पता लगा कि मेरे आधार कार्ड पे नंबर कितने चल रहे हैं? रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव इन द हाउस। स्वागत है सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। कैसे हैं आप सब? देखो, पता है आप लोगों के फ़ोन नंबर जो है वो आधार कार्ड से आप लोगों के लिंक्ड होंगे, और आधार कार्ड से ही नंबर खरीदे होंगे आपने। और एक इंसान एक टाइम पे मैक्सिमम 9 सिम कार्ड खरीद सकता है, और अब नए टेलीकॉम रूल्स है, वैसे ये 9 सिम कार्ड्स एक्टिव रह सकते हैं, मगर आपके आधार कार्ड पर किसी और ने तो नंबर नहीं ले रखा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये चेक कैसे कर सकते हो आप लोग? संचार साथी एक ऐप है, या फिर इसके अलावा TAFCOP ये पोर्टल है, ठीक है। अब फिर से रिपीट कर देता हूँ, संचार साथी ऐप या फिर TAFCOP। अब इस पे जाइए आप लोग, और यहाँ पर जाके आपको सिर्फ और सिर्फ अपना मोबाइल नंबर डालना है। अब मोबाइल नंबर जैसे ही आप डालेंगे तो एक कैप्चा आएगा, कैप्चा पता है ना, वो जो कंफर्म करता है कि आप ह्यूमन हो या नहीं, डिफरेंट डिफरेंट लेटर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, वो डालेंगे आप। फिर उसके बाद OTP भी आएगा, और OTP के जरिए आधार से जुड़े मोबाइल नंबर चेक किए जा सकते हैं। तो फिर उसके बाद आपको वेरीफाई करना है कि आपका आधार कार्ड जो है, अगर आपके आधार कार्ड पर आपके नंबर के अलावा कोई और नंबर भी चल रहा है तो आप उसकी शिकायत भी कर सकते हैं। अब शिकायत करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा वो मैं इजीली बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले तो फिर से रिपीट करता हूँ मैं, संचार साथी ऐप या फिर TAFCOP पोर्टल पर जाइए, TAFCOP इसको समझ लीजिए, इस पोर्टल पर जाइए, वहाँ अपना मोबाइल नंबर डालिए, कैप्चा डालिए, OTP के थ्रू आप आधार कार्ड से जुड़े जितने भी मोबाइल नंबर है वो चेक कर सकते हो। अब अगर आपको पता चला कि कोई और भी आपका आधार कार्ड पे नंबर यूज कर रहा है तो उसकी शिकायत भी आप इसी पोर्टल के जरिए कर सकते हैं बहुत इजीली। वहां पर कंप्लेंट का एक कॉलम होता है, उस पे जाइए, कंप्लेंट कर दीजिए। और अगर आपको अभी भी नहीं समझ आया तो आप अपने नियरेस्ट साइबर कैफे पे जाइए, वो लोग आपकी हेल्प जरूर कर देंगे, नहीं तो फिर AI से पूछ लीजिए, बहुत इजीली बता देता सब कुछ। खैर, ऐसे ही और भी इन्फॉर्मेशन लेकर आते रहूंगा, और अभी फिलहाल रेडियो महारानी पर गाना चलाऊंगा आप लोगों के लिए। ये गाना रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूँ आरजे गौरव आप सभी के साथ।

कोरोना के मरीजों के लिए धूल और धुआं जीने का हक छीन सकता है। आइए मिलकर एक कदम उठाएं, AQI का लेवल कम करें, गाड़ी को पूल करें और पेड़ लगाएं। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ बी अवेयर।

बारिश एक दिन होती है, पानी दो चार दिन तक रुक जाता है। ऐसा ही तो होता है अपने फरीदाबाद में, क्योंकि फ्राइडे को जो बारिश हुई थी, फिर उसके बाद सैटरडे को भी जो बारिश हुई थी, सैटरडे वाला मौसम तो बड़ा ही औसम था। मतलब लाइक सुबह से ही जो मौसम था वो बड़ा औसम था। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव इन द हाउस। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। और बात कर रहा हूँ मैं बारिश की, जो हुई थी फ्राइडे को, फिर हुई थी सैटरडे को, संडे को भी बहुत सारी जगहों पर छींटे पड़े थे। और बता दूँ आप सभी को, इसकी वजह से क्या होता है, बारिश होती है, जल भराव ज़्यादा हो जाता है। फरीदाबाद में बहुत सारी ऐसी ऐसी जगह हैं, आप सभी को पता है, जहाँ पर पानी कंसिस्टेंट है, बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रहता है उधर। मतलब बारिश होगी एक दिन, फिर पाँच दिन तक वहाँ पर पानी जमा रहेगा, फिर उसके बाद सूख जाएगा, फिर उसके बाद फिर से बारिश हो जाती है इतने दिनों में। तो वैसे ये जो जल भराव वाली प्रॉब्लम है ना, ये फरीदाबाद में कुछ जगहों पर बहुत ज़्यादा है। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है? देखो, पानी की निकासी की जगह ना होना, और दूसरी चीज़, जहाँ पर पानी की निकासी की जगह है भी ना, तो वहाँ पर जो वो होल होता है जहाँ से पानी जाता है, उसके ऊपर ही इतनी मिट्टी जमा हो रखी है, उसके ऊपर ही इतनी गंदगी जमा हो जाती है कि वहाँ से पानी को जाने की जगह ही नहीं मिलती। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सफाई कर्मचारी है उनको इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। और इसी के साथ साथ अगर मेरे घर के आसपास कोई ऐसी जगह है जहाँ से पानी निकलता है, तो मुझे भी वो चीज़ चेक करनी चाहिए रेगुलर बेसिस पे। मतलब खुद से साफ ना करो भले ही, बट साफ करवा दो और कंप्लेंट कर दो कि हाँ यहाँ पर पानी जमा होता है, तो फिर उसकी निकासी भी हो ही जाएगी। अभी रिसेंटली एक वीडियो भी तो वायरल हो रहा है, जहाँ पर एक पुलिसकर्मी, गुड़गांव की वीडियो है आई गेस, गुड़गांव के पुलिसकर्मी, वो पूरा फ्लाईओवर के नीचे पानी जमा हो रखा था, तो उन्होंने वहाँ पर जाके एक नाली को खोला, तो उसमें बड़ा वीडियो में कमेंट्स आए कि हाँ ट्रैफिक संभालने के साथ साथ पुलिसकर्मी ने जो ये पानी निकालने वाला काम किया है बहुत ही सराहनीय है। ऑल्दो लोग, कुछ लोग कह रहे हैं कि वीडियो के लिए किया है, अरे वीडियो के लिए भी किया है तो एटलीस्ट किया तो है ना, जो चीज़ हो रही है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, नाराज़ फूफा की तरह नहीं होना चाहिए। चलिए खैर, रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, आप सभी के लिए खूब सारे गाने बजेंगे, उन्हीं में से ये गाना डीनो जेम्स की आवाज़ में।

0: इंतजार कर।
1: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
2: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है, इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
3: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: फरीदाबाद में हम लोगों ने बहुत दिनों से कुछ चीजें नोटिस करी थी और उसमें एक चीज तो कॉमन थी, सबने नोटिस करी, और वो था फरीदाबाद में जगह जगह पर इकट्ठा हुआ कचरा।
1: रेडियो का गौरव, आरजे गौरव,
0: आरजे गौरव इन द हाउस। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर 6:50। और इसी के साथ साथ जो मैं अभी बात कर रहा हूँ वो यही है कि देखो, कचरा तो जमा हो रहा है बट इसके ना सोल्यूशन भी चाहिए थे, और अभी सफाई शुरू हो चुकी है। जहाँ पर बहुत सारा कचरा जमा था वहाँ पर JCB के थ्रू सफाई हुई, और फिर उसके बाद सफाई कर्मचारी, आप सभी को पता है, हड़ताल पर हैं, तो JCB से सफाई हुई। और फिर उसके बाद मैंने देखा कुछ लोग फिर से आए वहाँ पर, आके बड़े बड़े बोरी में आके गंदगी फेंक के चले गए। क्यों भाई क्यों? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? या तो ये रेस्टोरेंट ओनर हो सकते हैं या फिर ये कोई और दुकानदार हो सकते हैं, क्योंकि देखो किसी के घर से इतना सारा कूड़ा तो एक बार में नहीं निकल सकता, लाइक दो दो कट्टे भर के कूड़ा फेंके गए हैं। और इसके अलावा एक चीज़ जो मेरे घर के पास हुई वो ये हुआ कि सैटरडे को किसी ने घर के पास भंडारा करवाया, भंडारा या फिर लंगर जो भी कह लीजिए आप, वो सड़क पर खिला रहे थे लोगों को, एंड जितने भी लोगों ने खाना खाया ना, उन्होंने वहाँ पर डस्टबिन नहीं रखा हुआ था, तो सब लोग इधर उधर फेंक के चले गए। इवन घर के सामने पार्क है, उधर भी पार्क के अंदर तक फेंक के चले गए। तो इन सब चीजों को कौन उठाने आएगा? कोई भी नहीं। तो इसकी सफाई भी हमने ही करवाई है फिर बाद में। खैर, मैं एक बात बोलना चाहूंगा, मैं इधर अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, बट हाँ, हम लोगों को, जितने भी हम लोग हैं, आप हैं, हम हैं, नागरिक की मैं बात कर रहा हूं, कॉमन मैन, हम सबको ही ये सारी चीज़ें इनिशिएटिव लेनी पड़ेगी कि घर के आसपास हमारे कूड़ा जमा ना हो। मैं आपसे बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग कूड़ा उठाइए, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि गंदगी जमा मत होने दीजिए। जैसे ही गंदगी जमा होती है किसी सफाई कर्मचारी से बोलिए, वो सफाई ज़रूर कर देगा। हाँ, सरकारी वाले अभी हड़ताल पर है, बट प्राइवेट भी बहुत सारे होते हैं जो साफ करने के लिए रेडी होते हैं। चलिए, अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, आप सभी के लिए ये प्यारा वाला गाना इस प्यारे से मौसम में, रेडियो महारानी 89.6 पर।

0: बात कर रहे हो?
1: हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
2: अच्छा,
1: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
0: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
1: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
0: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
1: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
0: बाय।
1: सुनो तो, कहाँ चली?

0: कुछ हटके।
1: सुनना सुनना,
2: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
1: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आग मेरी लड़ी।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

सोशल मीडिया पर एक लड़के की वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है और उस वीडियो में जो भी दिखा और जिसने भी वो वीडियो देखी सब ने उस वीडियो को बहुत ज्यादा सराहा। वो वीडियो कहाँ की थी? रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव इन द हाउस। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। और मैं जिस वीडियो की बात कर रहा हूँ वो है अजनार नदी की वीडियो, बिट्टू तबाही। हर जगह इसका नाम चल रहा है, बिट्टू तबाही। नाम इस लड़के का कुछ और है, सुरेंद्र सिंह चौधरी नाम है। 21 साल का लड़का है, बीएससी की पढ़ाई कर रहा है, मध्य प्रदेश में रहता है, राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। और अपना जो सोशल मीडिया का हैंडल है उसमें है बिट्टू तबाही। अजनार नदी जिसमें बहुत सारा प्लास्टिक कचरा और दलदल बन चुकी थी एक तरह से नदी, वहां पर इसने सोचा जनवरी 26, 2026 को ये गया और बोला कुछ तो करके दिखाऊंगा मैं, आज अब भी ठीक कर देता हूँ। और इसने अब भी ठीक कर ही दिया। मतलब इसने बहुत तेजी से उस नदी की सफाई करनी शुरू करी, रोज वीडियो डालता था। और फिर उसके बाद लोगों ने से सजेस्ट करा कि तू एक काम कर, जेसीबी बुला ले। अब जेसीबी वाले भी आए और लोगों से फंडिंग ली, इसने क्राउड फंडिंग करी और उस नदी को साफ कर डाला। अब जैसे ही ये मिशन सक्सेसफुल हुआ तो इसने बताया कि मैंने 30,000 रुपये से भी ज़्यादा अपनी जेब से खर्चा किया है और उसके अलावा फिर लोगों की मदद मिली तो मैंने और भी काम किया। और फिर इसके बाद एमपी की सरकार ने भी इसके इस काम को सराहा है और उसके बाद अब इसको डच की तरफ से, एक कंपनी है, उन्होंने, डच सीईओ है, उन्होंने इसको अपनी कंपनी में जॉब ऑफर कर डाला है। अब उनकी कंपनी क्या करती है? ओशन साफ करती है। हाँ, ओशन में जितने भी प्लास्टिक है ना सब कुछ साफ करती है। तो उन्होंने इसको ऑफर कर डाला है कि आ जाओ हमारे साथ जॉब करते हैं। तो देखते हैं कि आगे क्या होगा। अब ये आगे किस चीज़ की सफाई करने वाले, वो तो वक्त बता

0: सर आपका KYC अपडेट करना है, मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड।
2: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है?
2: अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो।
0: इरशाद,
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह,
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं। चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स, ओटीपी सब दे दूंगा।
2: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे, बाय। हेलो, सुन के

क्या आप लोगों ने सपने में कभी छिपकली देखी है? असली में भी दिखती है तब भी डर लगता है। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव इन द हाउस। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, और वक्त हो चुका है सपनों को डिकोड करने का। दीवार पर छिपकली देखी है, मतलब सपने में ऐसा होता है काफी बार, जिसको हमें डर लगता है, जिससे हमें डर लगता है वो चीज हमें दिखती है। दीवार पर अगर आपको छिपकली देखी है सपने के अंदर, तो ये नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन हो सकता है। हो सकता है आपका कोई दुश्मन है, वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। और अगर छिपकली कीड़े खा रही है, फिर कुछ भी खा रही है, तो इसका भी मतलब यही है कि आपके पैसे डूब सकते हैं। मतलब कहीं इन्वेस्टमेंट करी हो, वो भी डूबने का खतरा है। और अगर ऐसा नहीं है हर बार कि छिपकली दिखी है तो वो नेगेटिव साइन ही होंगे, पॉजिटिव साइन भी होते हैं। हाँ, अगर आपने छिपकली को मार दिया है ना सपने में, तो हो सकता है कि आप अपनी परेशानी और दुश्मनों पर जीत हासिल करने वाले हैं। ये है पॉजिटिव साइन। और इसके अलावा एक और पॉजिटिव साइन होता है, वो है छिपकली का भाग जाना। जैसे आपने सपने में छिपकली देखी और वो छिपकली भाग गई, AI वीडियो की तरह दो पैर पर उठ के भागने लग गई। नहीं, माफ कीजिए, छिपकली अगर भागना शुरू हो गई तो इसका मतलब ये है कि वो डर गई है। एक्चुअली में मतलब ये है कि आपके आने वाले समय में किसी पुरानी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है, और हो सकता है जो भी आपके मन में हो चीज़ें, वो सब चीज़ें सॉल्व हो सकती है। अब देखो, सपनों को डिकोड करने का मतलब ये नहीं कि ऐसा ही होगा पक्का, बट डिकोड इसलिए करते हैं ताकि थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटीज जो है ना वो आपको पता लग जाए। और इसी के साथ साथ रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाए, क्योंकि आप सभी के लिए ऐसी ही और भी बातें और गाने चलते रहेंगे मेरे दोस्त।

0: पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

क्या 55 रन बहुत ज्यादा माने जाते हैं? सच सच बताना। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव इन द हाउस। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ गौरव आपके साथ। एंड 55 रन ज्यादा होते हैं क्या, यही तो पूछ रहा था मैं। अब मैं ऐसा क्यों पूछ रहा हूँ, देखो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हुआ सैटरडे की शाम को। मुझे तो लगा था बहुत इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है और इंडिया को कड़ी टक्कर मिलेगी क्योंकि पाकिस्तान के प्लेयर्स बहुत तगड़े थे। उनके ने एक भी विकेट नहीं गिरी थी 27 रन तक, और 55 पे ऑल आउट भी हो गए। सोचो डबल में बिल्कुल एग्जैक्ट डबल, 27 पे पहली विकेट गिरी और 55 पे 10 की 10 गिर गई उनकी विकेटें। अब चलिए बात करते हैं, मैं ऐसा क्यों पूछ रहा हूँ 55 रन ज्यादा होते हैं, क्योंकि एटीट्यूड तो ऐसा ही था। फातिमा सना नाम की इनकी बॉलर है, शिफाली वर्मा को आउट किया था अपनी स्लोअर बॉल पे, कॉटन बोल्ड कहते हैं उसे। तो उसके बाद ना इशारा कर रहे हैं कि जाओ वो रहा पवेलियन या फिर वो रहा स्टैंड्स की तरफ जाओ। क्यों 55 रन बनाए आपकी टीम ने और ऐसे ऐसे इशारे करो? ये बात मैंने नहीं, ये बात कमेंटेटर साहब ने भी बोल दी थी। और फिर कमेंट सेक्शन में जो पाकिस्तान के लोग हैं ना, वो खुद आके कह रहे थे कि हम लोग सॉरी मांगते हैं फातिमा सना की तरफ से। एक्चुअली मैं देखो, बॉलर बहुत अच्छी है क्योंकि इसने 3 विकेट ले ली, बट स्टिल टीम इंडिया बहुत इजीली जीत गई ये मैच। कितने ओवर में पता आप लोगों को? 8.4 ओवर्स में। और यहीं पाकिस्तान की टीम ने 18 ओवर लगाए थे 55 रन बनाने में। तो चलिए ये तो था जी क्रिकेट का हाल, और भी हाल चाल चलते रहेंगे मगर इस गाने के बाद। रेडियो महारानी 89.6 FM सुनते रहिए। मैं हूं गौरव।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है।
0: अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो।
0: इंस्टार्ट।
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं।
0: तुम अभी इसी लायक।
1: चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स ओटीपी सब दे दूंगा।
0: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे, बाय। हेलो।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही बढ़ता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

क्या आप लोगों को पता है मिर्जापुर द मूवी भी आ चुकी है और ये स्ट्रिक्टली किसके लिए है? अडल्ट लोगों के लिए, क्योंकि देखो शब्दों का इस्तेमाल इस मूवी में कुछ ज्यादा ही किया गया है। 4 सितंबर को ये मूवी रिलीज हो चुकी है और आ जाएगी कुछ टाइम बाद OTT पे। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ कौन। देखो मैं हूँ आरजे गौरव और जो बात कर रहे थे मिर्जापुर की, तो गुरमीत सिंह की रिटन एंड डायरेक्टेड बाय गुरमीत सिंह ओनली, रिटन बाय पुनीत कृष्णा। तो ये एक प्रीक्वल है मूवी, मतलब ये फिल्म नहीं है, प्रीक्वल समझ लो इसे। और इसमें कुछ तो ट्विस्ट है, इसमें ट्विस्ट ये है कि इसमें नए लोग भी आ गए हैं। इसमें विक्रांत मैसी की जगह जितेंद्र कुमार दिखाई दे रहे हैं, तो उनके अलावा रवि किशन भी है, मोहित मलिक भी है, सोनल चौहान भी इस मूवी में दिखाई दे रही हैं। तो ये तो हो गई मूवी की बात। अब मूवी आ गई है और लोग देखने ना जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? लोगों को बड़ा मन था कि हाँ देखेंगे हम लोग, देखेंगे। और बता दूं आपको, वैसे तो यूपी का पूरा सेटअप दिखा रखा है, बट रियलिटी में जो शूट हुआ है वो मुंबई बनारस साइड का शूट है और कुछ हिस्सा राजस्थान में भी शूट किया गया है। अब इसमें दो गाने लिए गए हैं, दो नंबरी और एक वरुण फॉरएवर। इसके अलावा आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं कि मुन्ना भैया की भी वापसी हो गई है और लोग कह रहे हैं एक्टिंग भी अच्छी है, भौकाल भी अच्छा है, क्योंकि पंकज त्रिपाठी यानी कि कालीन भैया का रोल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और फिर गुड्डू पंडित का गुस्सा और मुन्ना भैया की जो वन लाइनर्स या फिर पंचेस जो होते हैं, स्क्रीन प्रेजेंस है उनकी, वो भी अमेजिंग है। सिनेमैटिक एक्सपीरियंस भी बहुत अमेजिंग है, डायलॉग्स अमेजिंग है, ह्यूमर अच्छा है, बट कुछ तो कमी रह गई क्योंकि फिल्म 3 घंटे से ज़्यादा बड़ी है। और फिर इस वजह से कुछ लोगों के कहना है कि इतनी लंबी मूवी नहीं देखी जाती, बट रियलिटी में पुरानी मूवीज तो इतनी लंबी होती थी ना, हम लोग देखने भी तो जाते थे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मूवी लोगों को पसंद आएगी। अब देखते हैं एक हफ्ता कैसा निकालती है मूवी, फिर उसके बारे में बात कर लेंगे। मगर अभी फिलहाल रेडियो महारानी पर आप सभी के लिए गाना चला रहा हूँ, खंड लग दी। सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी पर। ये था पूरा रिव्यू मिर्जापुर द मूवी का।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा

0: मस्कत।
1: सिनेमा का कैप्सूल। अब थोड़ा हटके चलते हैं क्योंकि ये वाली फिल्म ना टिपिकल बॉलीवुड वाली लग नहीं रही है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया लेकर आ रहे हैं द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट, और इसका कंसेप्ट सुनते ही क्यूरियोसिटी हो जाती है। मतलब एक रहस्य है, फोकलोर है, माइथोलॉजी वाली वाइब है, और एक ऐसी दुनिया है जहां शायद हर चीज वैसी नहीं है जैसी दिखाई देती है। और ऑनेस्टली बॉलीवुड में हम अक्सर एक्शन, रोमांस और फैमिली ड्रामा देखते हैं, लेकिन ये फिल्म थोड़ा सा अलग रास्ता।
2: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

आजकल के जो नए नए नौजवान है, जो छोटे छोटे से हैं 16-17 साल के, वो वेप करते हुए बड़े दिखाई दे रहे हैं। एंड अपने फरीदाबाद में बहुत सारे बच्चे मैंने खुद से देखे हैं जो वेप करना कूल समझते हैं। ब्रो, ये तो हेल्थ के लिए तो खराब है ही है, मगर अब आपकी जेब के लिए भी हानिकारक होने वाला है। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव आप सभी के साथ है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। और जो मैं बात कर रहा हूँ वो है वेप की। वेप तो पता है ना आप लोगों को, जो लोग कहते हैं कि बड़ा कूल सा लगता है, सिगरेट से बहुत अच्छा है, नहीं है अच्छा, आपकी हेल्थ के लिए खराब है, उसमें क्या क्या चीज़ें डाली गई है, फ्लेवर्स डाले गए हैं उसमें, और सारे के सारे आर्टिफिशियल फ्लेवर्स होते हैं। दूसरी चीज़, उसमें निकोटिन भी बहुत ज़्यादा हाई होता है, एंड वो भी अल्टीमेटली आपके लंग्स को अफेक्ट कर रहे हैं। अब आप बोलेंगे ये तो स्टीम है, हमारे लंग्स को कैसे अफेक्ट कर सकती? करती है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए, मैं केमिस्ट्री में ज़्यादा जाना नहीं चाहूँगा, मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि वेपिंग इज़ एन ऑफेंस इन इंडिया। तो जितने भी अगर यंगस्टर्स मुझे सुन रहे हैं, अगर आप लोग वेप करते हैं या फिर आपके पास वेप है तो आप पकड़े भी जा सकते हैं। जिनको नहीं समझ आ रहा वेप क्या होता है, मैं बता देता हूँ। ई सिगरेट जिसे कहते हैं, हाँ, जिसे कहते हैं कि इसमें धुआं नहीं होता, तो वो सब इज एन ऑफेंस। 3 साल की जेल हो सकती है या फिर उसके अलावा जेब पर भी भारी पड़ सकता है वो आपके। कैसे? देखो, एक तो पहले आपको हिरासत में ले लिया जाएगा, फिर उसके बाद आपसे 75 लाख रुपए भी मांगे जा सकते हैं। 75 लाख रुपए अगर आपसे मांगे जाएंगे, और हो सकता है आपसे दोनों चीज़ें करवा ली जाए, 3 साल की जेल प्लस 75 लाख रुपए जुर्माना आपके ऊपर लगा दिया जाएगा। और इसी के साथ साथ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि वेप अगर कर रहे हैं तो उसको आज ही छोड़ दीजिए, क्योंकि मैंने कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं जो वेप करने के शौकीन हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं, एडिक्ट हो जाते हैं, फिर भी वो ना एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हम लोगों को आदत हो चुकी। नहीं नहीं नहीं, वो एक्सेप्ट करने ही नहीं वाले। नहीं नहीं, सालों के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तो प्लीज़ आप सभी से यही बोलना चाहूँगा मैं कि वेप आज ही छोड़िए। और हाँ, स्मोकिंग इज़ ऑल्सो नॉट कूल। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए, आप सभी के लिए रेडियो महारानी 89.6 पर ये गाना।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, ये आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

एक बात सच सच बताना, क्या हम लोगों को मौसम विभाग के अनुसार चलना चाहिए या फिर हम लोगों को अपना ही दिमाग लगा के चलना चाहिए कि दबक गीला हो गया। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव इन द हाउस। मैंने नमक गीला हो गया ऐसा क्यों बोला, क्योंकि नमक पसीज जाता है, ह्यूमिडिटी आ जाती है उसमें, मॉइस्चर आ जाता है उसमें, और फिर उसके बाद कहते हैं कि बारिश आने वाली है। तो अब मौसम विभाग की बात मैं इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 4 दिन आप लोगों को बिल्कुल भी बारिश क्या बादल भी दिखाई नहीं देंगे। अब ये तो मौसम विभाग का कहना है, बट डू यू थिंक सो कि ऐसा होने वाला है, मेरा सवाल है ये सच में। और जब फ्राइडे को बारिश हुई थी ना, तब उस टाइम मैं एक दुकान पर गया था और दुकानदार ने जाके मुझसे बोला कि भैया आप आए और बारिश ले आए। मैंने कहा हाँ ये तो हुआ है, बट दुकानदार से मैं जब बात कर रहा था तो उसका यही कहना था कि बहुत दिन हो गए थे बारिश नहीं आ रही थी, बारिश तो आनी चाहिए थी। चलो बारिश आ गई, बट अब आने वाले दिन में फिर से गर्मी हो जाएगी और फिर उमस वाली गर्मी हम लोगों को झेलनी पड़ेगी। और मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिन थोड़े से गर्मी भरे हो सकते हैं, 36 डिग्री तक टेम्परेचर पहुँच जाएगा। दैट विल फील लाइक 42 to 44 डिग्री सेल्सियस। तो वो उमस वाली गर्मी फिर से आ जाएगी जो हम लोगों को परेशान करेगी। सो व्हाट डू यू थिंक, आप लोगों को कैसा मौसम पसंद है, बारिश वाला? क्योंकि बारिश जब होती है फिर परेशान भी हम लोग होते हैं, हम बोलते हैं जल भराव हो गया, हम बोलते हैं कीचड़ कीचड़ हो गया, तो उससे भी हम लोग परेशान हैं, और बारिश नहीं होती तब भी हम लोग परेशान रहते हैं। तो परेशान रहना तो इंसान की फितरत है। खैर अभी बस यही कहना चाहूंगा कि आप लोग गाने सुनिए, रेडियो महारानी 89.6 पर चला रहा हूं आप लोगों के लिए डीनो जेम्स की आवाज में ये गाना। थैंक्स अ लॉट।

पता नहीं है मुझको, पर दिल के राज कहना है आज बस ये लगता है यू शुड नो। है मनोदास का पे आवाज, फिर भी मैं जोड़ के हाथ, जो भी है पास है उस पे नाज, बस कहना है थैंक्स लॉट।

0: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वैसे ही अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो प्रदूषण को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, पौधे लगाएं और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, वरना इस डॉन को पकड़ना सच में नामुमकिन हो जाएगा।
1: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
2: अरे होश दिल चैन वैन सब उसी के पास है।

0: पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाए और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

हाल है जी? नहीं, मैं वैसे नहीं पूछ रहा हूँ, क्योंकि सेगमेंट का नाम है क्या हाल है, और इसमें हम लोग बात करते हैं किसी न किसी एक टॉपिक पे और यही पूछते हैं कि क्या हाल है। जैसे मैंने आपसे पूछा क्या हाल है, आपके मन में भी एक बार कुछ जवाब आया होगा, बस सब बढ़िया। तो हर इंसान यही बोलता है क्या हाल है। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, और आरजे गौरव स्वागत करता है रेडियो महारानी 89.6 पर। किसी से पूछो क्या हाल है। आज हम लोग बात करें घर के फीके खाने के बारे में। पूछ ले वो क्या हाल है, बोलेगा भाई घर का खाना खा रहा हूँ। नमक ढूंढने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए, क्योंकि नमक कभी कभार मम्मी डालना भूल जाती है। सब बढ़िया है, बस दाल और पानी में आज कॉम्पिटिशन चल रहा है कि ज़्यादा फीका कौन है। घर का खाना काफ़ी बार फीका हो जाता है। मम्मी बोलती है हेल्दी है, मैं बोलता हूँ मम्मी टेस्ट भी कोई चीज़ होती है। और ये रियलिटी है, मतलब जब मैंने बाहर का खाना खाया ना, तब पता चला कि घर का खाना इतना टेस्टी भी नहीं होता। खैर ये तो जोक था, बट हाँ काफ़ी बार ऐसा होता है घर का फीका खाना हो जाता है, और वो बोलते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर, तो वही चीज़ है। घर का खाना इतना फीका है कि मिर्च भी साइड में बैठ के मोटिवेशन दे रही है। और आज सब्जी खाई, टेस्ट नहीं आया, बस विटामिंस का अटेंडेंस लग गया। क्योंकि देखो घर का खाना हेल्दी तो होता है, टेस्टी हो या फिर ना हो। बट हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि हमारी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है। नो डाउट सबकी मम्मियाँ खाना अच्छा बनाती हैं, बट काफ़ी बार ऐसा होता है कि रेगुलर बेसिस पे हम जब खाते हैं ना, तो फिर वो भी फीका लगने लगता है। अच्छा किसी से पूछो क्या हाल है, वो बोलेगा प्लेट में सब कुछ है, नमक मसाला और स्वाद, बस वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। नमक भी नहीं है, मसाला भी नहीं है, स्वाद तो है ही नहीं, टेस्ट कहाँ है। घर का खाना खा के ऐसा लग रहा है कि डाइट नहीं सजा चल रही है, क्योंकि डाइट का खाना भी ना अब टेस्टी लगने लगा है मुझे। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि घर के खाने में नमक मसाला और मिर्च ये सब चीज़ें कम लगती है। मम्मी ने पूछा कैसा बना है, मैं बोल देता हूँ बढ़िया, क्योंकि सच बोलने की मेरी हिम्मत तो नहीं है, और मेरी जो हिम्मत थी वो भी फीकी पड़ चुकी है। और अचार इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि घर के खाने का असली हीरो वही है, क्योंकि मम्मी सोचती है कि मैं अचार ऐसे ही साइड में खा दूँ। नहीं नहीं नहीं नहीं, अचार से मुझे टेस्ट आता है, इसलिए मैं अचार रख के खाता हूँ। चलिए ये तो था आज का क्या हाल है, और आपको ये कैसा लगा। नंबर है जी हमारा 9654896896, उस पर व्हाट्सएप करके बता सकते हैं। अभी फिलहाल आप सभी के लिए रेडियो महारानी पर ये गाना।

0: कबीर ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
2: अर्जुन नहीं होता अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ।
0: इरशाद
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
2: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा।
1: सबका ये सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
2: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
2: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता हूँ।
2: अरे यार वो तो मैं कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो मैं तो चली को मेरी बस आ गई।
1: सुनो सुनो हेलो।

0: वक्त हो चुका है सॉन्ग्स को डीकोड करने का, क्योंकि हम लोगों के बॉलीवुड में कुछ गाने कॉपीड भी हैं।
1: जब शाम को चाहिए एंड बिग

आप सभी के साथ रेडियो का गौरव भी कहते हैं मुझे। टाइम बहुत हो चुका है आप लोगों के साथ बात करते करते, और वक्त हो चुका है म्यूजिक डिकोड करने का। बट मैंने सोचा क्यों ना ऐसे गाने को ढूंढा जाए जो साउथ इंडिया में पहले बने थे, फिर उसके बाद बॉलीवुड में ले लिए गए। सबसे फेमस गाना है रेडी का डिंका चिक्का, सुना है ना आप लोगों ने। उस गाने को भी रीमेक किया गया था, रिंगा रिंगा रिंगा रिंगा, आर्या नाम की मूवी थी अल्लू अर्जुन की, उस मूवी से रिक्रिएट किया गया था। और एक गाना जो साल 2002 में फिल्म साथिया में आया था, ओ हम दम सुनियो रे, सुना ना ये गाना। तो ये भी साउथ इंडियन गाना है, साउथ इंडियन ट्रैक था। और बता दूं आपको, ये कॉपी नहीं किया गया था एक्चुअली में, दोनों गाने AR रहमान ने तैयार किए थे, तो इसीलिए आपको लग रहा होगा कि कॉपी है, कॉपी नहीं है। और इसके अलावा पुकार नाम की फिल्म आई थी साल 2000 में, उसमें था एक गाना है के सरा सरा सरा जो भी हो सो हो, और के सरा सरा का मतलब यही होता है जो भी हो सो हो। और ये भी कॉपीड था फ्रॉम द मूवी वड़क्कन, और गाने का नाम था

0: डॉक्टर कॉलिंग।
1: हाय, आई एम डॉक्टर तनु। आई एम एम डी मेडिसिन डायबिटोलॉजिस्ट। आई बीन प्रैक्टिसिंग फॉर लास्ट 10 ईयर्स एंड यस, आई ऑल्सो रन अ सप्लीमेंट कंपनी। आई एम अ फेलो इन रीजनरेटिव मेडिसिन एंड माई एडवाइस टूडे कम्स फॉर वुमेन हु हैव डन देयर फर्स्ट इनिंग एंड नाउ देयर इन देयर सेकेंड इनिंग। पहली इनिंग में मेनार्की, प्रेगनेंसी, बच्चे, सिंगल लाइफ, मैरिड लाइफ, सो मेनी थिंग्स एंड नाउ यू आर इन अ वेरी वेरी डिफरेंट फ्रजाइल फेज ऑफ योर लाइफ वेर आपकी बॉडी में जितनी सारी चीज़ों से आप खूबसूरत लगते थे, आप इतना एक्टिवली काम करते थे, अब वो सारी चीज़ें कम होती चली जाएंगी। अब बहुत ज़रूरी है कि हम 5 चीज़ों पर ध्यान दें। पहली चीज़, हो सकता है कि आप पहले स्लीप को इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, बट टेक अ गुड मैग्नीशियम सप्लीमेंट एंड ट्राई टू स्लीप बेटर। सेकेंड, प्रोटीन, एज इन हमें बचपन सिखाया गया है कि लेना चाहिए लेना चाहिए लेना चाहिए, बट हम ऑब्वियसली एक 40 साल की ज़िंदगी में, काम में, बच्चों में, बहुत सारी चीज़ों में भूल जाते हैं वो चीज़ें। अब आपकी उस एज में हो, अब आपकी बॉडी बहुत वियर ऑफ हो चुकी है, यू नीड मोर प्रोटीन देन बिफोर। थर्ड थिंग, अब आपकी स्किन पहले जैसी नहीं रह सकती। यू हैव टू एक्सेप्ट द स्किन विल ड्राई आउट, योर वेजाइना विल ड्राई आउट, योर बॉडी नीड्स मोर एंड मोर, यू नो, आपको और अच्छी क्रीम्स और अच्छे सप्लीमेंट्स और अच्छी डाइट फुल ऑफ हाइड्रेशन यूज़ करनी है। फोर्थ, आपको अब एक ब्रेन फॉग, आपको अपना आधी चीज़ें थोड़ी कम याद रहेंगी, अब आप थोड़ा कन्फ्यूज रहोगे, ये सब पेरीमेनोपॉज में होता है, डरने की ज़रूरत नहीं है। ऑलवेज टॉक टू योर डॉक्टर्स, मीट योर गायनेकोलॉजिस्ट ऑन टाइम, टेक द मेडिकेशन।

0: ये सारी चीजें आपको इम्पैक्ट करेंगी। ये पांचवी चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है, मीटिंग अ साइकोलॉजिस्ट, अ गायनेकोलॉजिस्ट, अ न्यूट्रिशनिस्ट शुड बी इन योर लिस्ट, बिकॉज राइट नाउ यू आर अर्निंग वेल, यू हैव गुड मनी ऑल्सो, यू हैव गुड लाइफ ऑल्सो, पर ये पांच चीजें बहुत जरूरी है। थैंक यू
1: डॉक्टर कॉलिंग। रेडियो महारानी

0: जान बचाएगा ये शहर।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: जब शाम को चाहिए एंटरटेन

0: दिक्कत हो कभी भी तो आप बोलना, आपको बताइएगा।
1: आपने ये बता दिया था?
2: सोचेगी क्या तू मिट्टी का बंदा मैं तो प्यार।

बारिश एक दिन होती है, पानी दो चार दिन तक रुक जाता है। ऐसा ही तो होता है अपने फरीदाबाद में, क्योंकि फ्राइडे को जो बारिश हुई थी, फिर उसके बाद सैटरडे को भी जो बारिश हुई थी, सैटरडे वाला मौसम तो बड़ा ही औसम था। मतलब लाइक सुबह से ही जो मौसम था वो बड़ा औसम था। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव इन द हाउस। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। और बात कर रहा हूँ मैं बारिश की, जो हुई थी फ्राइडे को, फिर हुई थी सैटरडे को, संडे को भी बहुत सारी जगहों पर छींटे पड़े थे। और बता दूँ आप सभी को, इसकी वजह से क्या होता है, बारिश होती है, जल भराव ज़्यादा हो जाता है। फरीदाबाद में बहुत सारी ऐसी ऐसी जगह हैं, आप सभी को पता है, जहाँ पर पानी कंसिस्टेंट है, बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रहता है उधर। मतलब बारिश होएगी एक दिन, फिर पाँच दिन तक वहाँ पर पानी जमा रहेगा, फिर उसके बाद सूख जाएगा, फिर उसके बाद फिर से बारिश हो जाती है इतने दिनों में। तो वैसे ये जो जल भराव वाली प्रॉब्लम है ना, ये फरीदाबाद में कुछ जगहों पर बहुत ज़्यादा है। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है? देखो, पानी की निकासी की जगह ना होना, और दूसरी चीज़, जहाँ पर पानी की निकासी की जगह है भी ना, तो वहाँ पर जो वो होल होता है जहाँ से पानी जाता है, उसके ऊपर ही इतनी मिट्टी जमा हो रखी है, उसके ऊपर ही इतनी गंदगी जमा हो जाती है कि वहाँ से पानी को जाने की जगह ही नहीं मिलती। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सफाई कर्मचारी है उनको इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। और इसी के साथ साथ अगर मेरे घर के आसपास कोई ऐसी जगह है जहाँ से पानी निकलता है, तो मुझे भी वो चीज़ चेक करनी चाहिए रेगुलर बेसिस पे। मतलब खुद से साफ ना करो भले ही, बट साफ करवा दो और कंप्लेन कर दो कि हाँ यहाँ पर पानी जमा होता है, तो फिर उसकी निकासी भी हो ही जाएगी। अभी रिसेंटली एक वीडियो भी तो वायरल हो रहा है, जहाँ पर एक पुलिसकर्मी, गुड़गांव की वीडियो है, गुड़गांव के पुलिसकर्मी, वो पूरा फ्लाईओवर के नीचे पानी जमा हो रखा था, तो उन्होंने वहाँ पर जाके एक नाली को खोला, तो उसमें बड़ा वीडियो में कमेंट्स आए कि हाँ, ट्रैफिक संभालने के साथ साथ पुलिसकर्मी ने जो ये पानी निकालने वाला काम किया है ना, बहुत ही सराहनीय है। ऑल्दो लोग, कुछ लोग कह रहे हैं कि वीडियो के लिए किया है। अरे वीडियो के लिए भी किया है तो एटलीस्ट किया तो है ना, जो चीज़ हो रही है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, नाराज़ फूफा की तरह नहीं होना चाहिए। चलिए खैर, रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, आप सभी के लिए खूब सारे गाने बजेंगे, उन्हीं में से ये गाना है। मैं हूँ गौरव।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद।
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार, उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली, तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुन।

0: पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

क्या आप लोगों ने सपने में कभी छिपकली देखी है? असली में भी दिखती है तब भी डर लगता है। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव इन द हाउस। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। और वक्त हो चुका है सपनों को डीकोड

जाना, जैसे आपने सपने में छिपकली देखी और वो छिपकली भाग गई एआई वीडियो की तरह, दो पैर पर उठ के भागने लग गई। नहीं माफ कीजिए, छिपकली अगर भागना शुरू हो गई तो इसका मतलब ये है कि वो डर गई है। एक्चुअली में मतलब ये है कि आपके आने वाले समय में किसी पुरानी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है, और हो सकता है जो भी आपके मन में हो चीज़ें वो सब चीज़ें सॉल्व हो सकती है। अब देखो, सपनों को डिकोड करने का मतलब ये नहीं कि ऐसा ही होगा पक्का, बट डिकोड इसलिए करते हैं ताकि थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटीज जो है ना वो आपको पता लग जाए। और इसी के साथ साथ रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाएं, क्योंकि आप सभी के लिए ऐसी ही और भी बातें और गाने चलते रहेंगे मेरे दोस्त।

0: का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी की 9.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुना भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा सुन।

जिम ब्रो है आप सभी के साथ। जिम ब्रो जिम ब्रो जिम ब्रो मतलब वक्त हो चुका है आप सभी के लिए जिम की हेल्दी हेल्दी टिप्स लेकर आने का। देखो मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई फिजिशियन नहीं हूँ, मैं कोई मतलब न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई ऐसी एडवाइस नहीं दूंगा आपको जो आपके लिए गलत होगी। रेडियो का गौरव आरजे गौरव, रेडियो का गौरव आप सभी का स्वागत करता है। सेगमेंट का नाम है जिम ब्रो। तो आज आप सभी के लिए टिप्स लेकर आया हूँ। देखो आजकल ना दो तीन चीजें हैं जो कि कॉमन हो रखी है इंडिया में। इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत सुन रहे होंगे आप लोग, डायबिटीज बहुत सुन रहे होंगे आप लोग, और इसके अलावा फैटी लिवर। अब देखो जो ये फैटी लिवर है ना, ये बहुत कारणों से होता है, और एक नया टर्म आया है NAFLD, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, और ये बढ़ती जा रही है। तो इसका भी एक समाधान है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि आप लोग जिम जाइए, आप लोग वर्कआउट कीजिए। और जो फैटी लिवर है उसका मतलब ये नहीं कि लिवर पे फैट जमा हो गया है, इसका मतलब ये है कि लिवर इन्फ्लेम्ड हो चुका है, लिवर में सूजन आ चुकी है। और एक NAFLD बोल दिया मैंने, ये ज़्यादा खतरनाक है। अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ जो होती है उसमें क्या होगा, उसमें इंसान ड्रिंक करना छोड़ देगा। बट जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ है वो फैल रहा है। ज़्यादा मीठा खाने से, ज़्यादा तला हुआ खाने से आप लिवर पर इतना लोड डाल देते हो कि उसकी वजह से दिक्कत होती है। तो देखो जिम जाओ और बॉडी मत बनाओ भली, बट हाँ वर्कआउट करो। और डाइट ना एक बार लेना शुरू कर दोगे ना, उसके बाद आप लोगों को भी लगेगा कि यार मैं इतने सालों से क्या खा रहा था। सच बोल रहा हूँ मैं, बिल्कुल मतलब लाइक मुझे खुद को पता है। और अभी जैसे फेस्टिव सीजन चल चुका है, शुरू हो चुका है, रक्षाबंधन पे घेवर आए थे, घेवर लपेट लपेट के नहीं खाने थे, थोड़े बहुत खाने थे। और अभी आने वाले टाइम में दिवाली के आसपास भी बहुत मीठा आने वाला है, तो उसको भी मतलब सोच समझ के ही खाना प्लीज, मतलब लिमिट में खाएंगे तो ही सही रहेगा। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। और जिम जाओ, जिम जाके थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करो, थोड़ी बहुत रनिंग करो, थोड़ी बहुत कार्डियो करो, और फिर घर वापस आ जाओ। अगर जिम नहीं जा सकते तो घर के पास वाले पार्क में चले जाइए, वहाँ पर रनिंग कीजिए, वहाँ पर जॉगिंग कीजिए, वहाँ पर पुशअप्स कीजिए, बट वर्कआउट जरूर कीजिए। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए, क्योंकि आप सभी के लिए ऐसे ही टिप्स मैं लेकर आता रहूँगा।

0: अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा सुन।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुना भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे
0: हो? हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक गिलास तो पीती जा। सुन

0: संडे का मौसम मंडे का मौसम बहुत जमीन आसमान का फर्क है ब्रो, क्योंकि संडे का पूरा दिन मेरे लिए तो बहुत ज्यादा अमेजिंग था।
1: रेडियो का गौरव आरजे गौरव,
0: आरजे गौरव इन द हाउस, स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मंडे की शाम खत्म हो चुकी है, रात हो गई है और वक्त हो चुका है ऐसा जब भूख चरमों पर है, अपने चरम पर है, पीक पर। पर लोग कहते हैं रात का खाना नहीं खाना चाहिए, क्यों नहीं खाना चाहिए वैसे? मतलब देखो, कुछ लोग जो फैट लॉस करने चाह रहे हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, उन लोगों के लिए तो ठीक है, बट मैं आपसे बोलना चाहूंगा, देखो रात को सोने में और खाने में कम से कम 2 से 3 घंटे का फर्क होना चाहिए, टाइम गैप होना चाहिए। और इसी के साथ साथ मेरे को भी भूख लग रही है, मैं क्या खाऊं मुझे ये समझ नहीं आ रहा, तो मेरा हो चुका है वक्त यहाँ से जाने का। बट जाते जाते एक बात बोलना चाहूंगा आप सभी से कि आप लोग अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, आज से ही रखना शुरू कर दीजिए, किसी ब्लड रिपोर्ट का वेट मत कीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। देखो मेरे को आप लोगों की हेल्थ से मुझे क्या हो जाएगा, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं आप लोगों की हेल्थ इसलिए चाहता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं फरीदाबाद स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे, और स्वस्थ रहेगा फरीदाबाद तभी तो स्वच्छ रहेगा फरीदाबाद, तभी तो आगे बढ़ पाएगा फरीदाबाद। और पता है आप लोगों को फरीदाबाद से इन्फ्लुएंसर्स निकल निकल के कहां कहां तक पहुंच चुके हैं, तो फरीदाबाद का नाम रोशन आप लोग भी कर सकते हो, बस कुछ ही टाइम की बात है, कॉन्टेंट बनाओ या फिर कुछ भी करो, बट हाँ मेहनत करते रहो। और इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाजत, आज के प्रवचन होते हैं यहीं पर समाप्त, मिलेंगे आप सभी से कल शाम 5 से 9, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, रेडियो महारानी 89.6 पर, दिस इज आरजे गौरव विद यू। देखो अपना प्यार भरी बातें करने के लिए गीत आ रही है, वो आके बहुत ही प्यार मोहब्बत वाली बातें करेगी, देखो मेरी भी आवाज अच्छी है ना। चलिए मैं निकलता हूँ, बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा, दिस इज आरजे गौरव साइनिंग ऑफ फ्रॉम रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।

0: दिक्कत हो कभी भी तो आप आपको बताइएगा।
1: आप नहीं रुला गया तो?
2: सोचेगी क्या तू मिट्टी का बंदा मैं तो फिर हम

इस हफ्ते के सिनेमा का कैप्सूल में चलिए बात करते हैं उस फिल्म की जिसका नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहला शब्द आता है भौकाल। यस, हम बात कर रहे हैं मिर्जापुर द मूवी की। अब भाई सालों तक ओटीटी पर लोगों ने मिर्जापुर को बिंज वॉच किया है, डायलॉग्स याद किए हैं, कैरेक्टर्स पर मीम्स बनाए हैं और वही पूरा यूनिवर्स पहुंच गया है बड़े पर्दे पर। और ऑनेस्टली लोगों का एक्साइटमेंट देखकर लग रहा है कि मिर्जापुर सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है, लोगों का इमोशनल अटैचमेंट है। कालीन भैया है, गुड्डू है और सबसे बड़ी बात मुन्ना भैया भी है और ये नाम ही काफी है फैंस को थिएटर तक खींचने के लिए। लेकिन इस बार कुछ नए चेहरे भी इस गेम में एंट्री मार रहे हैं। जितेंद्र कुमार यानी हमारे अपने सचिव जी और बबलू पंडित के किरदार में नजर आ रहे हैं। मतलब पंचायत से सीधा मिर्जापुर की गलियों तक का सफर भाई साहब, करियर ग्राफ नहीं है ये तो कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन है। और रवि किशन की एंट्री ने भी फिल्म में एक अलग सा तड़का लगा दिया है। तो पूरे भौकाल के साथ इस बार नया मसाला भी भरपूर है। रिव्यूज की बात करें तो पिक्चर थोड़ी इंटरेस्टिंग है। कुछ लोग कह रहे हैं फाइनली मिर्जापुर इस बैक पंकज त्रिपाठी यानी हमारे कालीन भैया के प्रेजेंस को लोगों ने काफी पसंद किया है। दिव्यांदु की वापसी पर फैंस ऑलरेडी क्रेजी है और थिएटर वाला एक्सपीरियंस अलग ही लेवल का बताया जा रहा है। हाँ, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि फिल्म थोड़ी लंबी है, कहीं कहीं कहानी को जरूरत से ज्यादा एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन ओवरऑल वर्डिक्ट ये है कि अगर आप मिर्जापुर फैन है तो ये सिर्फ मूवी नहीं, आपके लिए एक पूरा रीयूनियन है। पुराने लोग, नए खिलाड़ी, गद्दी की लड़ाई और वही फैमिलियर सा डायलॉग माहौल। सो बेसिकली भौकाल ओटीटी से उठकर थिएटर तक पहुंच गया है। मैं हूँ गीत, आप सुन रहे हैं सिनेमा का कैप्सूल।

0: 89.6 FM।
1: कुछ हट के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हट के।

शेर है, एक समंदर है जो मेरे काबू में है, और एक कतरा है जो मुझसे संभाला नहीं जाता। एक उम्र जो बितानी है उसके बगैर, और एक लम्हा है जो मुझसे गुजारा नहीं जाता। कितनी अजीब बात है ना, कभी कभी इंसान पूरी जिंदगी किसी के बिना जीने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसके बिना एक शाम बिताना मुश्किल हो जाता है। हम फ्यूचर के बड़े बड़े फैसले लेते हैं, लेकिन प्रेजेंट का एक छोटा सा खालीपन हमसे सहा नहीं जाता। शायद इसीलिए मोहब्बत मुश्किल नहीं होती, मोहब्बत के बाद बची हुई जिंदगी मुश्किल होती है। मैं हूँ आपके साथ इश्क वाली गीत। तो आज की रात बात करेंगे उसी खाली जगह की, जो किसी के जाने के बाद सिर्फ दिल में नहीं पूरी जिंदगी में बन जाती है। स्टे ट्यून्ड, अभी वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटेंगे।

आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां और मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत। और आज का शेर कहता है, एक उम्र जो बितानी है उसके बगैर और एक लम्हा है जो मुझसे गुजारा नहीं जाता। कितनी आसानी से कह देते हैं टाइम हील्स एवरीथिंग, लेकिन कुछ लोग वक्त के साथ कम नहीं होते, वो बस हमारी आदतों में शामिल हो जाते हैं। उनके बिना जीना पॉसिबल तो होता है लेकिन नेचुरल नहीं लगता। और यही फर्क है किसी की कमी और किसी की जगह में। कमी पूरी हो सकती है लेकिन जगह नहीं। कुछ लोग चले जाने के बाद भी हमारी जिंदगी में मौजूद रहते हैं, बस उस पल में जहां हम सोचते हैं अगर वो होता तो शायद ऐसा होता। और शायद यही प्यार है, किसी को अपने पास रखने की जिद नहीं बल्कि उनके बिना भी उसकी मौजूदगी का महसूस होना। स्टे विद मी, अब ये गाना और उसके बाद बात उस खतरे की, जैसे संभालना सबसे मुश्किल होता है। मैं आपके साथ गीत हूँ।

Namaste, myself Dr. Rajni Beniwal. I am a dentist and a nutritional psychologist. Over 13 years of experience, I'm a women health coach and a teen parenting expert. So, हमारी daily diet में nutrition balance maintain करना क्यों जरूरी है? Nutrition और food हमारी life का basic fuel है. अगर हम सही amount of food नहीं खाएंगे, सही quality of food नहीं खाएंगे, तो हमारी body का balance definitely बिगड़ जाएगा. हम लोग गो की बॉडी में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है अलग अलग वर्क काम करने के लिए. हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा थोड़े अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत है, प्रोटीन्स की थोड़ी ज्यादा जरूरत है, मिनरल्स और विटामिंस की बहुत ज्यादा जरूरत है, और कुछ हेल्दी फैट्स की बहुत जरूरत है. एंड द बेसिक थिंग इज हाइड्रेशन, एक कंप्लीट अमाउंट में वाटर इनटेक मस्ट. तो ये कुछ चीजें हैं जो हमारी न्यूट्रिशन को कंप्लीट करते हैं. अब कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड प्रोटीन्स, इन सबके सोर्सेस का हमें पता होना बहुत जरूरी है. और कार्बोहाइड्रेट्स हमें अनाज से मिलता है, विटामिन्स एंड मिनरल्स हमें अलग अलग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स से मिलते हैं, गुड फैट्स हमें मिल्क प्रोडक्ट से मिलते हैं, गुड फैट्स हमें नट्स से मिलते हैं, सीड्स से मिलते हैं, एक अच्छा गाय का देसी घी से हमें बहुत अच्छा गुड फैट मिलता है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजरली पार्ट इज प्रोटीन्स. प्रोटीन्स हमें दाल और बहुत सारे चीज, पनीर और मीट, एग, इन सब से हमें प्रोटीन्स मिलता है. और अच्छा अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक बहुत ज़रूरी है. ये सब चीज़ें जब बैलेंस्ड रहेंगी तभी हमारी बॉडी में हर एक चीज़ बैलेंस तरीके से काम कर पाएगी, सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम कर पाएंगे. तो न्यूट्रिशन का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और न्यूट्रिशन को समझ के खाना खाना ही आज की बेसिक रिक्वायरमेंट है.

वेलकम बैक टू इश्क बाजिया, मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत। और कहते हैं ना कि एक कतरा है जो मुझसे संभाला नहीं जाता, और शायद यही लाइन सबसे ज्यादा सच है, क्योंकि जिंदगी का पूरा समंदर हम पार कर लेते हैं लेकिन किसी एक इंसान की याद का एक छोटा सा कतरा हमें डुबो देता है। हम मुश्किल वक्त से निकल आते हैं, लोगों के बदल जाने को एक्सेप्ट कर लेते हैं, यहाँ तक कि खुद को भी बदल लेते हैं, लेकिन एक छोटी सी बात, एक नाम, एक एहसास, और हम वहीं लौट जाते हैं जहाँ से निकलने में हमें साल लग गए थे। शायद इंसान मजबूत होता है लेकिन दिल हमेशा नहीं, और शायद यही हमारी सबसे खूबसूरत कमजोरी है कि हम पूरी दुनिया संभाल सकते हैं लेकिन जिस इंसान को दिल ने अपना मान लिया हो उसकी कमी का एक खतरा भी नहीं। और यही तो है शायरी, लेकिन उनके पीछे एक पूरी उम्र खड़ी होती है। गाना सुनते हैं क्योंकि कुछ एहसासों को समझाने के लिए शब्द नहीं बल्कि म्यूजिक चाहिए, क्यों है ना।

और इस हफ्ते के सिनेमा कैप्सूल में चलिए बात करते हैं उस घर की तरफ जहां लोगों को एंट्री लेने से पहले शायद अंदाजा भी नहीं होता कि बाहर निकलते निकलते उनकी जिंदगी दोस्त और दुश्मन सब बदल चुके होंगे। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट बिग बॉस 20। और भाई, इस बार कंटेस्टेंट की पूरी टोली आ चुकी है। सीजन की सबसे शॉकिंग और शायद सबसे एक्साइटिंग एंट्री है मैरीकॉम। अब सोचिए, बॉक्सिंग रिंग में सामने वाले को नॉक आउट करने वाली मैरीकॉम अब बिग बॉस के घर में आर्ग्यूमेंट्स और किचन ड्यूटीज हैंडल करेंगी। और ऑनेस्टली, ये सब देखने में बहुत मजा आने वाला है। मुझे तो भाई बहुत मजा आएगा। उनके अलावा माही विज है, कनिका मान है, पंचायत वाले आसिफ खान है और भोजपुरी सिनेमा की आम्रपाली दुबे है। सोशल मीडिया सेंसेशन आशिफा खान और कई अलग बैकग्राउंड के लोग भी इस बार एक ही छत के नीचे बंद होने वाले हैं। मतलब इस बार पूरा घर एकदम मिक्स्ड प्लेटर है। एक्टर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, सिंगर्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हैं और यही बिग बॉस की असली खूबसूरती है। आपको कभी नहीं पता कि सबसे शान दिखने वाला इंसान कब सबसे बड़ा मास्टरमाइंड निकल जाए। तो पॉपकॉर्न रेडी रखिए क्योंकि अभी तो घर में एंट्री हुई है जनाब। असली पिक्चर तो अब शुरू होगी। मैं आपके साथ गीत हूँ और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी पर सिनेमा का कैप्सूल।

तो आज की रात जाते जाते बस इतना कहना, हम सबकी जिंदगी में शायद कोई ना कोई ऐसा होता है जिसके बिना पूरी उम्र बिताई जा सकती है, लेकिन कुछ लम्हे नहीं। और शायद यही मोहब्बत की सबसे बड़ी सच्चाई है। प्यार हमेशा साथ मिल जाने का नाम नहीं है। कभी कभी प्यार ये भी है कि इंसान आपके साथ नहीं है, फिर भी आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसी के नाम है। हाँ, वक्त गुजर जाता है, उम्र भी गुजर जाती है, लोग भी आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कुछ लम्हे वक्त के साथ पुराने नहीं होते, वो बस हमारे अंदर कहीं स्थायी हो जाते हैं। इसीलिए कहा है ना शायर ने, एक उम्र जो बितानी है उसके बगैर, और एक लम्हा है जो मुझसे गुजारा नहीं जाता। कितनी बड़ी बात है। कभी कभी हमें पूरी जिंदगी से डर नहीं लगता, बस उस एक पल से डर लगता है जिसमें हमें उसके बिना होना पड़ता है। मैं हूँ आपके साथ इश्क वाली गीत, और आज का ये था इश्क शायराना सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 FM पर। रात बाकी है, एहसास बाकी है, और इश्क बाजिया भी बाकी है। रेट्रो इश्क लेकर आऊंगी, तो आप मेरे साथ बने रहिए।

कभी कभी ना सबसे खूबसूरत लव स्टोरी वो होती है जिसके बारे में दुनिया को कम पता होता है। ना कोई फिल्मी डायलॉग, ना कोई ग्रैंड प्रपोजल, बस एक इंसान दूसरे इंसान को याद करता है और अपनी वो याद एक कागज पर लिख देता है। वेलकम टू इश्क बाजियां, मैं हूँ आपके साथ आपकी इश्क वाली गीत, और ये है हमारा बहुत ही खूबसूरत सा सेकंड सेगमेंट रेट्रो इश्क, सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। आज की कहानी किसी सुपरस्टार की नहीं, आज की कहानी है धीरू मिस्ट्री और कुसुम की। 1966 में धीरू की सगाई कुसुम से हुई। कुसुम अहमदाबाद में थी और धीरू वडोदरा में। उस टाइम ना व्हाट्सएप था ना वीडियो कॉल, और रेगुलर फोन कॉल भी कोई आसान चीज नहीं थी। तो दोनों ने कुछ ऐसा रास्ता चुना जो शायद आज बहुत पुराना लगता है, और वो रास्ता था चिट्ठियां, यानी कि खत। एक लेटर गया, फिर उसका इंतजार, फिर जवाब आया, फिर अगले जवाब का इंतजार, और धीरे धीरे ये लेटर्स सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं रहे, ये दोनों की जिंदगी का हिस्सा बन गए। 1967 में दोनों की शादी हो गई, लेकिन मोहब्बत की वो चिट्ठियां बंद नहीं हुई, क्योंकि कुछ रिश्तों में बात करना जरूरत नहीं होता, एक दूसरे की जिंदगी में बने रहना जरूरी होता है। तो आज की रात हम इसी छोटी सी मगर बहुत गहरी सी मोहब्बत की कहानी सुनेंगे रेट्रो इश्क पर। मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि अगली कड़ी में मिलते हैं उन चिट्ठियों के साथ जिन्होंने दो लोगों के बीच की दूरी को छोटा कर दिया। आप बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर।

0: स्वागत है उस मोहब्बत की कहानी में जहां आई मिस यू लिखने के लिए कोई टाइपिंग बॉक्स नहीं था, पूरा एक कागज हुआ करता था। धीरू और कुसुम की शादी हो चुकी थी, लेकिन उनकी लव स्टोरी का सबसे खूबसूरत हिस्सा शायद शादी के बाद भी चलता रहा। धीरू काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहा करते थे और जब दूरी बढ़ती थी तो एक चिट्ठी दोनों के बीच का ब्रिज बन जाती थी। धीरू बताते हैं कि जब कुसुम की चिट्ठी आती थी तो उन्हें ऐसा लगता था जैसे वो उनके सामने बैठकर बात कर रही हो। सोचिए, आज हमारे पास किसी को याद करने के लिए बस एक सेकंड लगता है, एक मैसेज, एक कॉल, एक वीडियो कॉल, लेकिन उस दौर में किसी की आवाज सुनने से पहले शायद कई दिन इंतजार करना पड़ता था और फिर भी लोग रिश्ते निभाते थे। कुसुम चिट्ठियां भेजती, धीरू उन्हें पाने का इंतजार करते, कभी उन्हें लेने के लिए मुंबई तक जाना पड़ता। आज हम कहते हैं रिप्लाई नहीं किया, मतलब इंटरेस्ट नहीं है। उस दौर में रिप्लाई आने में दिन लग जाते थे और फिर भी प्यार कम नहीं था। शायद फर्क टेक्नोलॉजी में नहीं था, फर्क पेशेंस में था। उन दोनों ने 58 साल साथ बिताए और धीरू के पास आज भी उन दोनों के बीच के एक्सचेंज्ड 1000 से ज्यादा हैंड रिटन लेटर्स हैं। कुछ लोग मेमोरीज को फोटोग्राफ्स में रखते हैं। उन्होंने अपनी मोहब्बत को कागज पर संभाल कर रखा और अब इस खूबसूरत एहसास के साथ एक खूबसूरत गाना हो जाए। स्टे ट्यून रेडियो महारानी 89.6 FM पर। रेट्रो इश्क में कहानियां भी बाकी है।
1: शेखर, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है?
2: हाँ, एक लड़की बिल्कुल तुम्हारे जैसी, बहुत सुंदर, बहुत भोली और थोड़ी पागल भी, लेकिन मेरे प्यार की खबर सिर्फ मेरे दिल को है।
1: उसे बताया क्यों नहीं?
2: यह प्यार भी अजीब चीज है संजना, जहां इकरार की पूरी उम्मीद हो वहां भी दिल कहने से डरता है, और मुझे तो इनकार का पूरा यकीन है। तुम ही कहो, उसे कैसे बताऊं? वो किसी और को चाहती है, बहुत चाहती है।

0: डॉक्टर कॉलिंग।
1: नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर गीतांजलि केसरी है। मैं सीनियर कंसल्टेंट यथार्थ हॉस्पिटल सेक्टर 20 में हूँ और आज मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम ऐसी कौन सी चीजें कर सकते हैं जिससे हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा हो, जो हम कर सकते हैं रोज, इजी बेसिक चीजें ऐसी। सबसे पहले हम बेसिक मेडिटेशन वगैरह करेंगे तो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा होगा। दूसरी चीजें जो हम कर सकते हैं वो है बेसिक मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज। मेरे पास कई मरीज आते हैं जो बोलते हैं कि हम मॉर्निंग में नहीं कर सकते, मॉर्निंग में बिजी होते हैं। तो मैंने नहीं बोला कि आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज करिए, मैंने कहा मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज करिए, चाहे कभी भी करिए।
0: डॉक्टर कॉलिंग।

फंसिया। मैं कभी कभी सोचती हूँ, अगर किसी रिश्ते की असली कीमत जाननी हो तो उसके ग्रैंड मोमेंट्स मत देखिए, उसकी छोटी छोटी आदतें देखिए। कौन किसकी चिट्ठी का इंतजार करता था, कौन किसकी पसंद याद रखता था, कौन दूर होकर भी दूसरों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाए रखता था। धीरू और कुसुम की कहानी में रोमांस कुछ ऐसा ही था। उनकी मोहब्बत कोई एक बहुत बड़ी घटना नहीं थी, वो सैकड़ों हजारों बातों से बनी थी। एक लेटर में शायद दिन भर का हाल था, कहीं कोई छोटी शिकायत, कहीं कोई याद, और शायद कहीं बस इतना ही, आज तुम्हारी बहुत याद आई। और यही तो प्यार है ना, हर बार आई लव यू बोलना जरूरी नहीं, कभी कभी बस ये पूछ लेना, खाना खा लिया, दूर रहकर भी दूसरों की जिंदगी में मौजूद रहना। और सबसे खूबसूरत बात कि ये शादी के बाद भी उन्होंने लेटर्स लिखना छोड़ा नहीं था। 58 साल साथ रहने के बाद कुसुम चली गई, लेकिन उनकी आवाज उन कागजों में रह गई। आज धीरू उन लेटर्स को अपने पास संभाल कर रखते हैं, क्योंकि कुछ चीजें पुरानी नहीं होती, स्याही फीकी पड़ सकती है, कागज पीला हो सकता है, लेकिन जिस इंसान ने वो शब्द लिखे थे उसकी याद कभी पुरानी नहीं होती। और शायद इसी को कहते हैं मोहब्बत का बचे रह जाना। और अब कुछ देर के लिए इन शब्दों को खामोश करते हैं और म्यूजिक को बोलने देते हैं। आप जुड़े रहिए मेरे साथ इश्क बाजिया में।

और अब सिनेमा का कैप्सूल की एक ऐसी बात जिसको सुनकर बॉलीवुड फैंस कहेंगे ओहो ये कॉम्बिनेशन तो इंटरेस्टिंग है। हम बात कर रहे हैं हैवान की। इस फिल्म की सबसे बड़ी बात पता है क्या है, एक तरफ अक्षय कुमार दूसरी तरफ सैफ और दोनों को एक साथ लेकर आ रहे हैं डायरेक्टर प्रियदर्शन। मतलब नाम सुनते ही क्यूरियोसिटी लेवल बढ़ जाता है। अक्षय और सैफ को साथ देखना अपने आप में काफी ज्यादा एक्साइटिंग है क्योंकि दोनों ही अपनी अलग अलग स्क्रीन पर्सनैलिटीज है। एक तरफ अक्षय की एनर्जी और दूसरी तरफ सैफ का बिल्कुल अलग एक्टिंग स्टाइल और ऊपर से प्रियदर्शन। तो उम्मीद तो यही है कि फिल्म में कुछ अलग देखने को मिलने वाला है। फिल्म को लेकर अभी से बज़ बनना शुरू हो गया है और फैंस खास तौर पर इस बात को लेकर एक्साइटेड हैं कि इतने सालों बाद ये कॉम्बिनेशन स्क्रीन पर कैसा जादू करेगा। तो जब बॉलीवुड में अनएक्सपेक्टेड कॉम्बिनेशन बनते हैं ना तब ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती हैं। अब हैवान कितनी बड़ी धमाल मचाती है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि इस फिल्म पर नजर रखनी तो पड़ेगी। बॉस मैं हूं गीत और आप सुन रहे हैं सिनेमा का कैप्सूल सिर्फ रेडियो महारानी पर।

तो ये थी आज की रेट्रो इश्क की कहानी, एक ऐसी मोहब्बत जिसमें कोई क्लाइमेक्स नहीं था, बस दो लोग थे, दो शहर थे, कुछ दूरियां थी, उन दूरियों के बीच आती जाती चिट्ठियां थी, धीरू और कुसुम। रेट्रो इश्क में कहानी थी धीरू और कुसुम की। आज कुसुम इस दुनिया में नहीं है, लेकिन धीरू के पास उनकी लिखी हुई पूरी एक दुनिया है, हजार से ज्यादा लेटर्स की दुनिया, और शायद यही बात इस कहानी को इतना ज्यादा खूबसूरत बनाती है। हम अक्सर कहते हैं काश वो वक्त वापस आ जाए, लेकिन वक्त वापस नहीं आता। हाँ, उसकी कुछ निशानियां रह जाती हैं।

वेलकम बैक, मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां। और आज मैं बात कर रही हूं एक ऐसे वर्ड की जो सुनने में बड़ा मॉडर्न सा लगता है, लेकिन इसने बहुत सारे दिल जो है वो कंफ्यूज किए हैं। नाम है सिचुएशनशिप। आपने सुना भी होगा, वैसे बहुत लोग जानते हैं सिचुएशनशिप के बारे में। अब सवाल ये है, आखिर सिचुएशनशिप होती ही क्यों है? क्योंकि क्या होती है ये हमें मालूम है, लेकिन होती क्यों है? देखिए, कई बार वजह बहुत बुरी नहीं होती है। कभी किसी को कमिटमेंट का डर होता है, कभी कोई अपने करियर पर फोकस कर रहा होता है, कभी किसी का दिल पहले ही टूट चुका होता है, और कभी लोग बस किसी को खोना नहीं चाहते हैं और पाना भी नहीं चाहते हैं, है ना।

लेकिन जैसे ही कोई पूछ ले हम दोनों का रिश्ता क्या है, बस वहीं साइलेंस आ जाता है। और याद रखिए, क्लैरिटी को डिले करना भी कभी कभी एक आंसर होता है। इसीलिए अगर कोई रिश्ता आपको बार बार कंफ्यूज कर रहा है तो सिर्फ ये मत देखिए कि सामने वाला क्या बोल रहा है, ये भी देखिए कि वो कंसिस्टेंटली कर क्या रहा है। क्योंकि हेल्दी रिलेशनशिप में बटरफ्लाइज हो सकती है लेकिन रोज रोज कंफ्यूजन नहीं। मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत और थोड़ी देर में मैं बात करूंगी, अगर आप सिचुएशनशिप में है तो उसे पहचानना और हैंडल करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है। लेकिन वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां।

गाने के साथ स्वागत है, शो है इश्कबाजियां। मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत और आज हम बात कर रहे हैं सिचुएशनशिप की। और अगर अभी तक आपको लग रहा है कि यार शायद मेरे वाला केस भी थोड़ा सा ऐसा ही है, तो जरा ध्यान से सुनिए। देखिए, हर रिश्ता लेबल मांगे ये जरूरी तो नहीं, लेकिन हर रिश्ता क्लैरिटी जरूर मांगता है। अगर आप हमेशा उसके अकॉर्डिंग अवेलेबल हैं, लेकिन वो आपके अकॉर्डिंग कभी भी नहीं है, थोड़ा सोचिए। अगर हर वीकेंड प्लान तो आपके साथ है, लेकिन फ्यूचर का एक भी प्लान आपके साथ नहीं है, थोड़ा सा सोचिए। और अगर आप दोनों कपल वाली सारी चीजें कर रहे हैं, बस हम रिलेशनशिप में हैं ये कहने से एलर्जी है, तो बॉस रिपोर्ट कार्ड कुछ और ही कह रहा है। वैसे आजकल लोग आई नीड स्पेस इतनी बार बोलते हैं कि लगता है डायरेक्ट नासा से रिक्रूटमेंट चल रही है। स्पेस दीजिए, बिल्कुल दीजिए, लेकिन किसी को इतना भी स्पेस मत दीजिए कि वो आपकी जिंदगी से ही आउट ऑफ ऑर्बिट हो जाए। और एक बात याद रखिए, जहाँ आपको अपनी वैल्यू बार बार एक्सप्लेन करनी पड़े, वहाँ रुककर सिर्फ उम्मीद पड़ती है, रिश्ता नहीं। रिश्ते वो होते हैं जहाँ बातें गैस नहीं समझी जाती हैं। मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत और ये चल रहा है रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड। वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे।

0: डॉक्टर कॉलिंग।
1: नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर गीतांजलि केसरी है। मैं सीनियर कंसल्टेंट यथार्थ हॉस्पिटल सेक्टर 20 में हूँ और आज मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम ऐसी कौन सी चीजें कर सकते हैं जिससे हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा हो, जो हम कर सकते हैं रोज, इजी बेसिक चीजें ऐसी। सबसे पहले हम बेसिक मेडिटेशन वगैरह करेंगे तो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा होगा। दूसरी चीजें जो हम कर सकते हैं वो है बेसिक मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज। मेरे पास कई मरीज आते हैं जो बोलते हैं कि हम मॉर्निंग में नहीं कर सकते, मॉर्निंग में बिजी होते हैं। तो मैंने नहीं बोला कि आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज करिए, मैंने कहा मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज करिए, चाहे कभी भी करिए।

इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजिया, मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत। तो आज का रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड का वक्त यहीं खत्म होता है। देखिए, सिचुएशनशिप बुरी है या अच्छी ये मैं डिसाइड नहीं करने वाली। हो सकता है दो लोगों के लिए वो फेज बिल्कुल ठीक हो, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है दोनों एक ही पेज पर होने चाहिए। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब एक इंसान फ्यूचर देख रहा है और दूसरा सिर्फ फ्राइडे इवनिंग। और वैसे भी आजकल सीन का रिप्लाई 3 दिन बाद आता है, लेकिन इंस्टाग्राम स्टोरी 2 सेकंड में देख ली जाती है। टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस हो गई है बॉस, बस फीलिंग का नेटवर्क कभी कभी वीक हो जाता है। अगर कोई बार बार बोले देखते हैं, सोचेंगे, अभी टाइम है, तो कभी कभी दिल से

पूछ लीजिएगा और कितना टाइम है, क्योंकि मोहब्बत में पेशेंस बहुत खूबसूरत होता है लेकिन कंफ्यूजन बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। और एक बात, अपनी वैल्यू कभी किसी के मिक्स्ड सिग्नल से मत मापिए। जो इंसान आपको अपनी जिंदगी में चाहता है उसके मैसेजेस से पहले उसकी नीयत क्लियर होती है, और जो सिर्फ ऑप्शन बनाकर रखना चाहता है उसके पास एक्सक्यूजेस हमेशा अनलिमिटेड होते हैं। तो दोस्तों, प्यार कीजिए, दिल खोल कर कीजिए, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का पासवर्ड कभी भी किसी के हाथ में मत दीजिएगा। और हाँ, रेड फ्लैग्स को क्यूट हैबिट बोलकर इग्नोर मत करिएगा, वरना बाद में ये मत कहना यार मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था। इसी के साथ मैं हूँ आपके इश्क वाली गीत, तो मैं मिलूंगी फिर से आपको रिश्तों की रिपोर्ट कार्ड में एक और जेन जी रिलेशनशिप ट्रेंड का एक रिपोर्ट लेकर। तब तक अपने दिल को थोड़ा सा वक्त दीजिए, अपनों को थोड़ा सा वक्त दीजिए, और याद रखिए जो रिश्ता बार बार एक्सप्लेन करना पड़े शायद उससे निभाने से पहले समझना ज्यादा जरूरी होता है। तो मैं चलती हूँ, आप मुझे इजाजत दीजिए, आप मुस्कुराते रहिए, प्यार बांटते रहिए, और हाँ, दिल से ऑनलाइन रहिए पर हर किसी के लिए अवेलेबल मत रहिए। साइनिंग ऑफ, गुड नाइट, रब रखा।

इस हफ्ते के सिनेमा का कैप्सूल में चलिए बात करते हैं उस फिल्म की जिसका नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहला शब्द आता है भौकाल। यस, हम बात कर रहे हैं मिर्जापुर द मूवी की। अब भाई सालों तक ओटीटी पर लोगों ने मिर्जापुर को बिंज वॉच किया है, डायलॉग्स याद किए हैं, कैरेक्टर्स पर मीम्स बनाए हैं और वही पूरा यूनिवर्स पहुंच गया है बड़े पर्दे पर। और ऑनेस्टली लोगों का एक्साइटमेंट देखकर लग रहा है कि मिर्जापुर सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है, लोगों का इमोशनल अटैचमेंट है। कालीन भैया है, गुड्डू है और सबसे बड़ी बात मुन्ना भैया भी है और ये नाम ही काफी है फैंस को थिएटर तक खींचने के लिए। लेकिन इस बार कुछ नए चेहरे भी इस गेम में एंट्री मार रहे हैं। जितेंद्र कुमार यानी हमारे अपने सचिव जी और बबलू पंडित के किरदार में नजर आ रहे हैं। मतलब पंचायत से सीधा मिर्जापुर की गलियों तक का सफर भाई साहब, करियर ग्राफ नहीं है ये तो कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन है। और रवि किशन की एंट्री ने भी फिल्म में एक अलग सा तड़का लगा दिया है। तो पूरे भौकाल के साथ इस बार नया मसाला भी भरपूर है। रिव्यूज की बात करें तो पिक्चर थोड़ी इंटरेस्टिंग है। कुछ लोग कह रहे हैं फाइनली मिर्जापुर इस बैक पंकज त्रिपाठी यानी हमारे कालीन भैया के प्रेजेंस को लोगों ने काफी पसंद किया है। दिव्यांदु की वापसी पर फैंस ऑलरेडी क्रेजी है और थिएटर वाला एक्सपीरियंस अलग ही लेवल का बताया जा रहा है। हाँ, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि फिल्म थोड़ी लंबी है, कहीं कहीं कहानी को जरूरत से ज्यादा एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन ओवरऑल वर्डिक्ट ये है कि अगर आप मिर्जापुर फैन है तो ये सिर्फ मूवी नहीं, आपके लिए एक पूरा रीयूनियन है। पुराने लोग, नए खिलाड़ी, गद्दी की लड़ाई और वही फैमिलियर सा डायलॉग माहौल। सो बेसिकली भौकाल ओटीटी से उठकर थिएटर तक पहुंच गया है। मैं हूँ गीत, आप सुन रहे हैं सिनेमा का कैप्सूल।

बदला है, रिश्ते बदले हैं और उनके साथ बदल गई है उनकी डिक्शनरी भी। मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां। अब वक्त हो गया है हमारे तीसरे सेगमेंट का, रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड। यहाँ ना किसी को पास करना है ना किसी को फेल, यहाँ हम सिर्फ समझाने की कोशिश करते हैं और समझने की भी कि आखिर आज के रिश्तों में चल क्या रहा है। क्योंकि आजकल रिलेशनशिप से ज्यादा जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो ट्रेंडिंग है, कभी होस्टिंग, कभी ब्रेड क्रमिंग, कभी लव बॉम्बिंग और कभी एक ऐसा वर्ड जिसे सुनकर लगता है यार ये क्या है एग्जैक्टली, लेकिन असल में होता कुछ और है। इट्स नॉट अ रिलेशनशिप, इट्स जस्ट अ सिचुएशनशिप। और आपने सिर्फ मुस्कुरा कर हाँ हाँ बोल दिया हो तो टेंशन मत लीजिए, आज के बाद आप सिर्फ इस वर्ड का मतलब ही नहीं बल्कि इसके पीछे की साइकोलॉजी भी समझ जाएंगे। तो चलिए खुलते हैं आज के रिश्तों के रिपोर्ट कार्ड के नए पन्ने और देखते हैं कि आखिर ये सिचुएशनशिप आखिर है क्या। लेकिन वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां।

सुन रहे हैं कृष्ण वाणी। काम, क्रोध और लोभ नरक के तीन द्वार हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, जब मनुष्य अपने कर्मों के फल की इच्छा रखता है तो उसके मन में काम की उत्पत्ति होती है, और जब कामनाओं की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध पैदा होता है। काम की उत्पत्ति का एक कारण लोभ भी है। इसीलिए श्री कृष्ण बताते हैं कि इंद्रियां और मन ही काम का जन्मस्थल है। इसीलिए अगर काम रूपी इस दुश्मन को हराना है तो अपनी इंद्रियों को वश में करना सीखो।

0: जाता है, ज्ञान भूल जाता है। भक्ति का पथ ही है बस ऐसा पथ, जो चले तो भव सिंधु पार उतर जाता है। रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं स्पिरिचुअल लीडर श्री हितामृत जी के विचार।
1: समस्त भागवत धर्मन ऊपर निकुंज माधुरी श्री युगल चंद जो विलास करत हैं, जिन्हें समझो नाही तासो रस की बात कर।